नमस्कार, हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 10 जुलाई 2026।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: सुबह के 6 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉ. जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

आज का चिंतन। साथियों, जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आप अकेले ही होंगे और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार और निडर बनाएगा, इसीलिए डटे रहें। ये था आज का चिंतन। अब भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दे देते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में। आपको सुनवाते हैं झरोखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जाएगा। आज भाग 245 आप सुनेंगे।

सुबह 8 बजे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे आप समाचार प्रभात। 8:15 पर सुबह और पुनः दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे वंदे मातरम एक जय घोष कार्यक्रम। लेखक मिलिंद सबनिस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इसका भाग 36 आज प्रसारित होगा। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा हेलो फरमाइश सुबह 10 बजे और 11 बजे रंग तरंग। बारह बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे सुरीला सफर। पर सुनेंगे आप सदा बहार नगमे और 3 बजे हेलो सहेली संवादक मंजरी वर्मा। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा गीतों भरी कहानी। कहानी है वो पुरानी बेंच, लेखिका सौम्या शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। शाम 5 बजे सुनिएगा छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा और 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी साथियों का कार्यक्रम जय माला शाम 7 बजे। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत आज गुलदस्ता। रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा प्रहसन फोकट चंद। लेखन अनिल निगम का है, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का। आठ बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे समाचार। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। छाया गीत सुनिएगा रात 10 बजे। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज के कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा।

अत्रि ऋषि को अपने दर्शनों से कृतार्थ करके श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता गहन वन की ओर बढ़ रहे हैं। मार्ग में विराट राक्षस का वध करके प्रभु ने उसे मोक्ष प्रदान किया और शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषिवर ब्रह्मलोक जा रहे थे कि तभी उन्होंने श्री राम के वन आगमन का समाचार सुना। तब से ही वे उनके दर्शनों के लिए प्रतीक्षा में दिन बिता रहे थे।

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत

0: कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, पंडित जी विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी, आप बताइए लोक संगीत में बांसुरी का क्या योगदान रहा है? बहुत सारे जो गायन के प्रकार हैं, ठुमरी है, झूला, कजरी, चैती, तो आप इन गायन के प्रकार में बारीकियां बताइए और कैसे आया लोक संगीत में बांसुरी?
2: देखिए, बांसुरी तो लोक संगीत का ही वाद्य है।
1: जी
2: शास्त्रीय संगीत में तो था ही नहीं है।
1: बाद में आया।
2: पन्नालाल घोष जी नहीं होते तो आज भी नहीं होता।
1: जी जी
2: तो जैसे चैती, झूला, सोहर, ठुमरी,
1: वाह,
2: कजरी, क्या नहीं बसता। अब आप बताइए, दो अंग के ठुमरी, खास करके पूरब अंग जिसमें गया की ठुमरी, बनारस की ठुमरी,
1: जी
2: दोनों कमाल है। गया भी कोई पीछे नहीं है। और पंजाब में आप चले जाएं तो थोड़ा नाक से नेजल होके गाते हैं। इन सब अंगों को मैंने बहुत करीब से देखा है ममता जी,
1: जी और बांसुरी में लाया उस,
2: लाया उसको।
1: बिल्कुल।
2: यहां तक कि अनूप जलोटा जी बोले कि सबसे अच्छा, मैं कुमार बोस जी के साथ एक कार्यक्रम नेहरू सेंटर में बजा रहा था,
1: जी
2: अजीत भाई भी वो प्रोग्राम सुनने आए थे, और ऐसा धमार पंडित कुमार बोस जी बजाए थे कि क्या कहूं आपसे,
1: जी जी
2: मैं भावुक हो गया हूं उनका तबला याद करके। ऐसे लोग कहां पैदा होते हैं,
1: बिल्कुल।
2: कभी कभी आते हैं ऐसे लोग,
1: आज
2: बड़ा अच्छा लगता है जब वो मेरे साथ बजाते हैं। खैर, मैं खो गया था
1: जी।
2: तो अनूप जलोटा जी ने कहा कि आपने एक फ्रेज में जो आज पंजाब से बनारस गए वो सुनने जैसा था, मैंने ये कभी नहीं सुना आज तक। जलोटा जी खाना खाने के लिए ले गए मुझे प्रोग्राम के बाद, तो मैं दोनों अंग थोड़ा थोड़ा आपको।
1: जी, मैं तो आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आप यहाँ श्रोताओं को भी ले चलिए बनारस और पंजाब एक साथ, कैसे आप जाते हैं?
2: आप देखिए, मैं सबसे पहले झूला धीरे से झूला ना बनवारी अरे सांवरिया,
1: क्या बात है, वाह,
2: इसका क्या रंग है देखिए।
1: जी, और ये अप्पा जी ने, विदुषी गिरजा देवी ने भी गाई है ये हमारे पास।
2: मेरे लिए तो वो गिरजा बुआ है।
1: जी जी
2: है, देखिए मुझे कभी लगता ही नहीं कि वो गई है, और लगता है कि वो, क्योंकि मेरे पिताजी को राखी बांधती थी बनारस में,
1: तो
2: मेरे लिए बुआ जी है।
1: जी जी जी,
2: अप्पा जी लोग कहते हैं, मैंने हरदम उनको बुआ जी कहा, और महाराज जी को चचा,
1: जी जी
2: किशन महाराज जी को,
1: जी,
2: और बनारस में हम लोग बड़ों को तू कहते हैं।
1: जी जी,
2: का हो तू, का करत हुआ, तो तुहार आज्ञा हो तब ना बजाई, तो ये चलन है वहाँ का।
1: तो यहाँ तो मैं तो ये चाह रही हूँ कि आप चूंकि गायन की कला में भी महारथी हैं, तो थोड़ा सा गा के भी,
2: मैं, और बांसुरी जरूर गाऊंगा, झूला गाए बिना कैसे चलेगा।
1: जी जी।

0: वाह, अद्भुत था ये तो। ये रचना बिल्कुल अद्भुत है। झूला ऐसे लग रहा है कि नीम का पेड़ है और झूला डला हुआ है, पटोहा है, और पटोहे पे दो लड़के पींग मारा करते थे
1: जी
0: और महिलाएं पटोहा पे बैठ के ये
1: पटवा
0: झूला गाती थी,
1: जी जी
0: गाती हैं, थी क्या, अभी भी ये परंपरा है?
1: अभी ये परंपरा है
0: हाँ
1: ना।
0: जी, और अब कम हो रहा है, लेकिन क्योंकि पेड़ ही कम हो रहे और लोगों के पास समय कम हो रहा, मोबाइल आ गया है, लेकिन अभी भी परंपरा गांव में शेष है। तो वो सीन, वो दृश्य आपने आंखों के सामने पैदा कर दिया,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत अच्छा लगा। तो अब इसके बाद गायन की कौन सी शैली, कौन सा प्रकार आप शामिल कर रहे हैं इसमें?
1: मैं देखिए, ये लोक संगीत में जब हम जाते हैं तो बंगाल को छोड़ नहीं सकते,
0: जी
1: क्योंकि बंगाल को दुनिया दिखाया किसने?
0: जी
1: सचिन देव बर्मन ने।
0: जी भटियाली संगीत।
1: भटियाली को सुनो मेरे बंधु रे, जब उन्होंने
0: हाँ
1: किया और उन्होंने जब गाया फिल्म सुजाता में,
0: जी
1: तो लोग हैरान रह गए कि ये क्या है, यहां कौन है तेरा, ये कहां का स्टाइल है। गाइड का वो गाना,
0: जी
1: मुसाफिर जाएगा
0: जाएगा
1: कहां,
0: कहाँ।
1: सुन मेरे बंधु रे। मैं आप देखिए, मैं थोड़ा सा सुन मेरे
0: जी
1: बंधु रे
0: जी प्लीज
1: सुना के
0: सुनाइए
1: फिर
0: सुनाइए।
1: मेरे पिताजी की रचना जो है
0: हाँ
1: भाटियाली में वो सुनाऊंगा।
0: जी जी
1: ला ला ला
0: जरूर
1: ला ला ला ला ला ला ला ला
0: जरूर।
1: ला ला ला कोत्ताया माय लोइया जाबे शोहर दखाई थे। मेरे पति मुझे शहर घुमाने ले जाएंगे,
0: वाह
1: उसलिए मैंने ये तैयारी की है। ये
0: जी
1: गाने का
0: जी
1: बोल भी बहुत सुंदर
0: जी
1: है।
0: जी सुनाए प्लीज। हम तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा गा के भी सुनाएं, बांसुरी पर भी सुनाएं।

0: अद्भुत। अब लग रहा है कि कुछ बात ही न करें, सिर्फ बस आपसे अनुरोध करते जाएं कि बांसुरी की धुन आप सुनाते
1: बहुत
0: रहें।
1: बहुत शुक्रिया।
0: लेकिन हमें पता है कि आपकी सांस को भी थोड़ा विराम चाहिए, ठहराव चाहिए, बीच बीच में हम बातें भी करते रहें। तो पंडित जी, अपने पिताजी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दीजिए, उन्होंने तो बांसुरी की दुनिया में आपको लाया।
1: हर व्यक्ति को अपने पिता भगवान के बराबर लगते हैं और लगना भी चाहिए। मेरे पिताजी थे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, कल्पेश ने भी देखा कि वो कितने संत थे और एक फकीर की तरह थे,
0: जी
1: और इतने गुण एक व्यक्ति में मैंने तो नहीं देखा।
0: जी जी
1: पंडित रविशंकर जी ने कहा मुझे, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी ने, यू आर लक्की टू हैव सच फादर। उनके जैसी पेंटिंग ना किसी ने बनाया, ना कोई बनाएगा आगे भी। नेहरू जी उनके फैन थे, उनके जैसी भाटियाली मैं तो आज भी नहीं बजा सकता।
0: जी
1: मैंने कोशिश की उन्हीं की कंपोजिशन, उनके जैसा राइटर सोचिए, कोत्ता यामा लोहिया जाबे शहर दिखाई थे, एबीसीडी एक्सो वाइजेड लागलो पढ़ाई थे, तो कैसा राइमिंग है देखिए, रदीप काफिया जो बोलते हैं हम
0: जी
1: लोग
0: जी जी
1: बंगाली में, बहुत मुश्किल है फनी गाना लिखना,
0: जी जी
1: इतना आसान नहीं है।
0: जी बिल्कुल, गंभीर लिखना आसान है
1: गंभीर
0: और
1: लिखना आसान है,
0: बिल्कुल मजाहिया लिखना
1: तो
0: मुश्किल।
1: बहुत ही ज्यादा उनसे मैंने सीखा, और उन्होंने मुझे पीलू में, बनारसी पीलू, उनसे जो सीखा मैंने, कोमल रे लगाना, मैं 2 मिनट आपको सिर्फ
0: जी जी सुनाए प्लीज।
1: पीलू का रे सुना रहा हूं मेरे पिताश्री की याद में।

0: वाह गजब। अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
1: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी ही देर में।

लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। श्रोताओं आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत अफसाना फिल्म से। आवाज लता मंगेशकर की है, असद भोपाली का लिखा गीत है, हुस्न लाल भगत राम का संगीत। श्रोताओं आपको बता देते हैं कि गीतकार असद भोपाली का आज जन्मदिन है, उन्हीं की याद में आज हम उन्हीं के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं तू नहीं और सही, इस फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, असद भोपाली का लिखा गीत, रवि का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार असद भोपाली के द्वारा लिखे गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत, आया तूफान फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की है। असद भोपाली गीतकार हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल संगीतकार।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में स्वागत है। अब आपको सुनवाते हैं रंगीला राजा फिल्म का गीत, तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की युगल स्वरों में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा, शिवराम का संगीत है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: भूले बिस्तरे गीत में अगला गीत आपको सुनवाते हैं असद भोपाली के शब्दों से और हंसराज बहल के संगीत से सजा ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, फिल्म का नाम है सावन।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा और मुबारक बेगम के स्वरों में। असद भोपाली ने इस गीत को लिखा, ए आर कुरैशी ने धुन बनाई है। फिल्म का नाम है सिम सिम मर्जीना।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार की लेकर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

फिल्म आग से ये गीत सुनिए महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में, असित भोपाली का लिखा गीत, उषा खन्ना की बनाई धुन।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम सब उस्ताद है इस फिल्म से, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, असद भोपाली का लिखा गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई तर्ज पर।

0: ये निखरा हुआ चेहरा, ये परेशान जुल्फें, कुछ तो कहिए मेरी सरकार, इरादा क्या है?
1: क्या
0: क्या तेरी जुल्फें हैं?

अगला गीत आपको सुनवाएंगे इस अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के में। अब आपको सुनवाते हैं गुमराह फिल्म का गीत, असद भोपाली का गीत, खन्ना का संगीत, गाया है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याण।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रूप तेरा मस्ताना, ये है अगले गाने की फिल्म का नाम। लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों के सुरों में ये गीत है। गीतकार असद भोपाली और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

हुस्न और इश्क इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। असद भोपाली का लिखा गीत, गणेश ने इस गीत की धुन बनाई है।

अब हमें रही प्यार की इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, नाग मंदिर फिल्म से ये गीत है। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें हैं, गीतकार असद भोपाली, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन पर।

नागमंदिर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार की अब यहीं संपन्न होता है। आज गीतकार असद भोपाली के जन्म दिवस के अवसर पर हमने उन्हें कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और हम हेरा ही प्यार की में याद किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजे का समय होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: एट द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इजरायली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त।

0: अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट, यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट।
2: यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब 4 दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
5: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया, जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
3: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
3: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। बरसा, एनसीआर थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था, वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
3: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्द-ए-खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष का भाग 36।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम, इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई

0: चलो।
1: रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे, राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले समाचार पत्र भी इसमें पीछे नहीं।

0: भारत की कई भाषाओं में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र या साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं निकलने लगीं और इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से बंगाल में हुई। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी अखबारों ने किया। युगांतर, अमृत बाजार, संध्या जैसे पत्रों ने अत्यंत कड़े और उग्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए हो रहे दमन तथा अत्याचारों का विवरण आम जनता तक पहुंचाया। वंदे मातरम में दश प्रहरण धारिणी यानी 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन करते हुए भारत माता को वाणी विद्या दायिनी भी कहा गया है। उसी सरस्वती की लेखनी इस लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उतरी।
1: अमृत बाजार के मोतीलाल घोष और युगांतर के बारिंद्र कुमार घोष उग्र विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। उनके समाचार पत्रों पर पाबंदी और मुकदमे की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, फिर भी उन्होंने अपने शब्दों की धार कम नहीं की। वंदे मातरम शब्दों को उन्होंने लोकप्रिय तो किया ही, साथ ही उसके आशय को लोगों के मन में बसाकर उसे आचरण में लाने के लिए दिल से प्रयास भी किए। अप्रैल 1906 के युगांतर के अंक में संपादक लिखते हैं,
0: रक्त में समा चुके स्वतंत्रता के बीज को कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। आज का धर्म है शहादत, कल का धर्म होगा विजय। शहादत बलिदान आवश्यक है ही, पर वो शेर के सामने बकरी द्वारा किया गया बलिदान ना हो।
1: और उसी 11 नवंबर 1906 के अंक में लिखते हैं,
0: जैसे को तैसा व्यवहार करो, घूसे का प्रहार हो तो लात मारो, तभी तुम्हारा पौरुष दिखेगा। मृत्यु से मत डरो, उस समय होठों पर वंदे मातरम का नारा ही जीवन संगीत बनने दो।
1: अप्रैल के संध्या के अंक में लिखा गया,
0: शांत रहना राष्ट्रीय आत्मा का अपमान है, अपमान का बदला प्रतिशोध लेने से ही होता है।
1: 26 मार्च 1907 को युगांतर के पत्रकार लिखते हैं,
0: धूल में पड़ी फटे चिथड़े पहनी हुई मां को देखो, उसके आंसू कौन पोछेगा? उसके अपमान का बदला लेने सबसे पहले कौन आगे आएगा? कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट है, युद्ध निकट आ गया है, विजय मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा? हे वीरों, जल्दी करो, गति दोगुनी करो, मां के वैभव के लिए दान करने आगे आओ। गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम।
1: संध्या के 15 मई के अंक में छपा ये लेख बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ के एक संवाद से मिलता जुलता है। नवंबर के दैनिक हितवादी के अंक में लिखा गया,
0: युद्ध के नगाड़े बजने दो, मां को रक्त स्नान कराओ, शत्रु का हृदय

0: कांप उठेगा।
1: युगांतर के एक और अंक में प्रखर शब्दों में आह्वान किया गया था,
0: वंदे मातरम की घोषणा ने शत्रु का धैर्य और सामर्थ्य नष्ट कर दिया है। देखो, मां के मुख पर विजय की मुस्कान है, वो हमें अभय दे रही है। दानवों का नाश करने के लिए वो तैयार हो गई है। देशभक्तों, तैयार हो जाओ।
1: वंदे मातरम ये अखबार तो नाम से ही खुलेआम क्रांतिकारी कार्य का मुखपत्र था। बंग भंग विरोधी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह बिपिन चंद्र पाल भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के आग्रह पर बिपिन चंद्र पाल ने नए शुरू हो रहे वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का संपादक पद स्वीकार किया। उस समय अरविंद घोष बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अगस्त 1906 में वे भी कलकत्ता लौट आए और राजनीति में भाग लेने लगे। वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के लिए क्रांतिकारियों के नेता हरिदास हल्दर ने 500 रुपए दिए थे। राजा सुबोध चंद्र मलिक भी नियमित रूप से आर्थिक सहायता करते थे।
0: वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का आदर्श वाक्य था भारत भारतीयों के लिए, परंतु दो ही महीनों में बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम के संचालकों से मतभेद हो गए और उसके बाद श्री अरविंद घोष संपादक बने। संध्या और युगांतर इन दो अखबारों के बाद वंदे मातरम यह पत्र शुरू हुआ और इन दो समाचार पत्रों की तरह ही वंदे मातरम ने भी समाज के मन में बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति पैदा की। श्री अरविंद संपादक बने और वंदे मातरम के लेखन में पैनापन आ गया, एक धार सी आ गई। सरकार की ऐसे अखबारों की सामग्री पर बहुत बारीकी से नजर रहती थी, इसलिए श्री अरविंद इतनी सावधानी से लेख लिखते थे कि कानूनी तौर पर सरकार उन्हें फंसा नहीं सकती थी। फिर भी उस सामग्री में राष्ट्रभक्ति और युवाओं के लिए आवाहन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया जाता था। वंदे मातरम के इस मिले हुए अस्त्र का सटीक उपयोग कैसे करना है, ये श्री अरविंद ने इस समाचार पत्र के लेखों द्वारा जनता को दिखा दिया था। श्री अरविंद उस समय युवाओं के क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। बड़ौदा के समय में एक उत्तम प्रोफेसर के रूप में विख्यात थे। वे उत्तम कवि भी थे। केसरी के लेखों द्वारा समाज के मन पर हुए प्रभाव को वे जानते थे। तिलक की तरह ही अत्यंत विस्फोटक भाषा में उन्होंने वंदे मातरम में लेख लिखना शुरू किया। केसरी में तिलक के अग्र लेखों की तरह ही श्री अरविंद के वंदे मातरम के लेख भारतीय पत्रकारिता साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आनंद मठ का पहला अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने शुरू किया था, बाद में उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष ने उसे पूरा किया। वंदे मातरम गीत के श्री अरविंद द्वारा किए गए दो अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध है। ये अनुवाद वंदे मातरम के सर्वोत्तम अनुवादों में गिने जाते हैं।
2: I bow to thee, rich with thy hurrying streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields bathe me, mother of might, mother free, glory of midnight dreams, over thy branches and lordly streams. Glad in thy blossoming trees, mother.
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय मन में नहीं कोई भरम वेदों से भी वंदनीय है जय घोष वंदे मातरम वंदन है वंदे मातरम जय घोष वंदे मातरम।
4: वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला

0: की ये थी 36वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर हो गए हैं और आपकी मंगल कामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सुनवाते हैं आपको पहला गीत क्रिएचर फिल्म से। अरिजीत सिंह की आवाज में टोनी कक्कड़ ने इस गीत को लिखा है और मिथुन का संगीत है।

कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मन से। उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में ये गीत है। समीर ने इस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है संजीव दर्शन ने।

कुणाल गांजावाला की आवाज में अगला गीत सुनिए। इरशाद कामिल की रचना है, संदेश चांडिल्य का संगीत, तुम मिलो तो सही फिल्म का नाम।

0: दुनिया से जो लड़ने का जिगर देता है वो जो बेखौफ।
1: कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। आपको सुनवाते हैं अगला गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में। दिल है तुम्हारा इस फिल्म का गीत है। समीर ने इस गीत के बोल लिखे हैं, नदीम श्रवण ने संगीत से सजाया है।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002।

0: 4662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
3: राघव और राजा हसन के युगल स्वरों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। अशोक मिश्रा गीतकार हैं और शांतनु मोइत्रा की बनाई धुन है। फिल्म का नाम है वेल डन अब्बा।

0: चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम चित्रलोक में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म का गीत। वाजिद, मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं। प्रसून जोशी की शब्द रचना, तर्ज बनाई है साजिद वाजिद ने।

विशाल डडलानी और सुनिधि चौहान की आवाजों में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं विक्की डोनर फिल्म से। स्वानंद किरकिरे की रचना है, डॉन एंड बैन का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं ऐश

किंग और रिजवान अली खान साथियों की आवाजों में ये गीत फिल्म रश से आशीष पंडित ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है गीतकार असद भोपाली का जन्मदिन। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा गीतकार असद भोपाली पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में, यानी 9:30 पर, और ये कार्यक्रम पुनः आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। और अब कार्यक्रम चित्रलोक का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरफरोश से। कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें हैं, समीर के बोल, जतिन ललित का संगीत।

क्या यही प्यार है, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज में, रश्मि विराग और आनंद बख्शी के बोल हैं, अमाल मलिक और आरजी बर्मन का संगीत।

अरमान मलिक की आवाज में अभी ये गीत सुन रहे थे आप। गीतकार और संगीतकार का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए। रश्मि विराग की रचना थी, अमाल मलिक का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फना से सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, प्रसून जोशी की रचना, जतिन ललित की बनाई धुन।

फिल्म फना का गीत आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, और ये गीत बना आज के कार्यक्रम चित्रलोक की आखिरी पेशकश। कार्यक्रम चित्रलोक से अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर लो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार असद भोपाली पर।
1: वो जब याद आ

असद भूपाली का जन्म मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 जुलाई सन 1921 में हुआ। मुंशी अहमद खान के वो बड़े साहबजादे थे। जब उनका जन्म हुआ तो इनका नाम रखा गया असदुल्ला खान। फारसी, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। शहर भोपाल एक अदबी शहर, वहाँ की हवा में शायरी की खुशबू होने से कई शायर इस शहर ने दिए हैं। उन्हीं में से एक जगमगाता नाम है असद भोपाली साहब का।

असद भोपाली कोई 28 साल के रहे होंगे जब उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया, ताकि वो अपने शायरी का फन फिल्मी गानों की शक्ल में उभार सके। भोपाल से मुंबई आने वाले शायरों की फहरिस्त का अव्वल नाम है असद भोपाली साहब का।

कहते हैं वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता, इस बात की जीती जागती मिसाल है असद भोपाली साहब की कैफियत। 1949 के आसपास वो मुंबई आए थे। देश एक नई करवट ले रहा था, हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया भी इससे अछूती नहीं थी। कई कलाकार, फनकार, संगीतकार और गीतकार अपनी अपनी किस्मत आजमाने मुंबई की राह लिए हुए थे। अगर गीतकारों की ही बात करें तो मजरू सुल्तानपुरी, जान निसार अख्तर, खुमार बाराबंकी, प्रेम धवन, राजेंद्र

कृष्ण जैसे दिग्गज गीतकार इस दौरान काम पाने की होड़ में जुटे हुए थे। यही नहीं, साहिर लुधियानवी जैसे पाए के शायर को भी असद भोपाली साहब के साथ ही एक हॉस्टल में रहना पड़ा था। तो ऐसे में काम पाना एक बड़ी चुनौती भरा काम था।

असद भोपाली का मुंबई आना किस तरह हुआ ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। फाजली ब्रदर्स एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था दुनिया। निर्देशक थे SF हसनैन साहब। फिल्म के अभी दो गाने ही लिखे गए थे। लिखने वाले थे आरजू लखनवी साहब जो तकसीम हिंदुस्तान के पेश नजर पाकिस्तान चले गए थे। अब फाजली ब्रदर्स के सामने मुसीबत मुंह बाय खड़ी थी कि बाकी गाने किससे लिखवाएं। इसी दौरान भोपाल के सुगम चंद कपाड़िया जिनके भोपाल शहर में दो थिएटर थे मुंबई आए हुए थे। उन्हें जब इस बात की खबर मिली तो फाजली साहब के सामने उन्होंने मदद की पेशकश करते हुए मशवरा दिया कि भोपाल शहर में शायरों की कमी नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं एक मुशायरा भोपाल में करता हूँ, नामी गिरामी शोहरा इसमें भाग लेंगे। आप और आपके निर्देशक साहब जिस किसी शायर से मुतासिर हों उससे बाकी गाने लिखवा लें। तजवीज फाजली ब्रदर्स को पसंद आई। भोपाल में मुशायरा हुआ। फिल्म के प्रोड्यूसर फाजली ब्रदर और SF हसनैन साहब मुशायरे में आए। जो शायर उन्हें सबसे अच्छे लगे वो थे असद भोपाली। फिल्म दुनिया के बाकी गाने फिर उन्हीं से लिखवाए गए। इस तरह से उनकी फिल्मी गीतकारी के रूप में पेश कदमी हुई। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं हम सब उस्ताद हैं इस फिल्म का किशोर कुमार का गाया हुआ ये।

फिल्म दुनिया में असद भोपाली के दो गाने थे, रफी साहब का गाया हुआ रोना है तो चुप चुप के रो, आंसू न बहा आवाज न हो। सुरैया का गाया हुआ गाना था अरमान लुटे दिल टूट गया, दुख दर्द का साथी छूट गया। अगले साल यानी 1950 में फिल्म आधी रात के दो गाने लिखने का उन्हें ऑफर मिला, इधर तो आओ सरकार, किसी की जीत किसी की हार, और दिल ही तो है तड़प गया दर्द से भर न आए क्यों। ये दोनों गाने लता मंगेशकर ने गाए थे, संगीतकार थे पंडित हुसन लाल और पंडित भगत राम। अब आपको सुना रहे हैं आगे बढ़ने से पहले ठाकुर।

सन 1950 में ही एक और फिल्म के लिए उन्होंने गाने लिखे। वो फिल्म थी निर्दोष। अगर आपको याद हो तो मुकेश साहब ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत इसी फिल्म से की थी। संगीतकार थे श्याम सुंदर।

सन 50-51 के आसपास बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक फिल्म अफसाना का निर्माण किया था। अशोक कुमार और वीणा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के संगीतकार थे पंडित होसन लाल और पंडित भगत राम। कुल 9 गाने थे फिल्म में, इनमें से 6 गाने लिखे थे असद भोपाली साहब ने और काफी मकबूल भी हुए थे।

फिल्म अफसाना एक सफल फिल्म थी और इसका संगीत भी खूब लोकप्रिय हुआ था। असद भोपाली को इसके बदले मिली एक फिल्म राजपूत, जो बॉक्स ऑफिस पर पिट गई थी। उन दिनों साल में इक्का दुक्का फिल्में बनती थीं। काम पाने के लिए स्ट्रगल और कंपटीशन बहुत कड़ा हुआ करता था। इसी की एक मिसाल 1954 में असद भोपाली को फिल्म गुलबहार में एक गाना लिखने का मौका मिला, जिसका संगीत खयाम साहब ने दिया था। इस फिल्म के दो संगीतकार थे, एक खयाम साहब और दूसरे धनी राम। दूसरे गीतकारों में थे जानेसार अख्तर, कैफी आजमी और शेवन रिजवी साहब। असद भोपाली का लिखा हुआ गाना था मुबारक बेगम का गया हुआ, कलियों को चूमूं मैं तारों से खेलूं। दोस्तों 1949 से 1990 तक असद भोपाली ने कुल 100 के आसपास फिल्मों में गाने लिखे, करीब करीब 400 के आसपास गाने हैं। असद भोपाली साहब का लिखा हुआ टावर हाउस फिल्म का ये बड़ा ही मीठा सा गाना है, लता मंगेशकर और मुकेश ने इसे गाया है।

पंडित हुसन लाल, पंडित भगत राम, सी रामचंद्र, खय्याम, हंसराज बहल, लच्छी राम, धनी राम, दत्ता राम, पंडित शिवराम, श्याम सुंदर, एम दत्ता, नौशाद, ए आर परेशी, चित्रगुप्त, रवि, सी अर्जुन, सोनी कोमी, राजकमल, लाला सत्तार, हेमंत कुमार, मानस मुखर्जी, कल्याण जी आनंद जी, इतने सारे संगीतकारों के साथ

बाद उन्होंने काम किया। सबसे ज्यादा काम उन्होंने गणेश और उषा खन्ना के साथ किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने भी आनंद बख्शी साहब के साथ साथ आसद भोपाली से गाने लिखवाए थे। फिल्म पारसमणि के जो दो गाने हैं वो जब याद आए बहुत याद आए और हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये काफी मकबूल हुए थे।

अपने जमाने के मशहूर निर्माता निर्देशक के आसिफ साहब का एक अनोखा शाहकार था फिल्म लव एंड गॉड। इस फिल्म के लिए भी असद भोपाली साहब ने अपनी कलम का सही इस्तेमाल किया। नौशाद साहब का संगीत सब कुछ अमर सा लगता है।

सन 1989 में सूरज बड़जात्या ने बड़ी ही खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई मैंने प्यार किया। इस फिल्म का कबूतर जा ये गाना सुपर डुपर हिट रहा, पर अफसोस इस गाने को जो सर्वश्रेष्ठ गाने का पुरस्कार मिला उसे लेने अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे असद भोपाली साहब भोपाल से मुंबई न आ सके।

0: 9 जून सन 1990 को इस शायर गीतकार असद भोपाली ने बगैर किसी अहलो अयाल के अपने शहर भोपाल से दुनियाए फानी को अलविदा कहा।
1: जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा।

0: आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था गीतकार असद भोपाली पर, शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। और मुंबई की इस झमाझम बारिश में हो रही है श्रोताओं की बातचीत की बरसात और साथ में पड़ रही है गानों की फुहार। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातचीत का, देखते हैं ये पहला कॉल किसका आया है। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: विराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी, भगवान जी बताइए क्या हाल है आपका और सीहोर का क्या हाल है?
1: सीहोर में दीदी बारिश हो रही है और हमारा हाल भी अच्छा है दीदी। हम खेती किसानी करते हैं और हमारे इधर सोयाबीन और मक्का की बुआई हो चुकी है दीदी। 12-13 दिन की फसल हो चुकी है हमारे इधर।
0: वाह भाई वाह, क्या बात है। तो आपका अपना क्या शौक है बताइए?
1: दीदी मुझे तो क्रिकेट देखना का बहुत शौक है और मैं बचपन में क्रिकेट खेलता था, अब तो नहीं खेलता हूँ दीदी।
0: अब क्यों छोड़ दिया?
1: दीदी अब क्या है, खेती किसानी में रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिलता दीदी।
0: तो क्रिकेट खेलने के शौकीन रहे हैं तो रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का बहुत चार्म रहा है, तो आप सुना करते थे क्रिकेट कमेंट्री रेडियो पर?
1: जी दीदी हम बहुत सुनते थे, पहले क्या है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी दीदी, तो हम रेडियो पे कमेंट्री सुनते थे दीदी और बहुत अच्छा लगता था हमको।
0: जी जी, और एक अलग नॉस्टैल्जिया होता था रेडियो से क्रिकेट कमेंट्री का, एक ही रेडियो और चार चार पांच पांच लोग मिल के सुना करते थे, है ना, वो गजब के दिन थे।
1: दीदी चार पांच क्या, हमारे यहाँ तो दीदी पूरे गाँव के करीबन 20-25 इकट्ठा लोग हो जाते थे गाँव में से, फिर सुनते थे दीदी।
0: एक घर में रेडियो होता था और आंगन की मुंडेर पर रख दिया जाता था और बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर रेडियो सुनते थे, है ना। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खुददार और गाने के बोले तुम सा कोई प्यारा मासूम नहीं है, ये वाला भी सुनना है दीदी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। सुनते हैं खुददार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते मैम साहब,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राजस्थान के डिडवाना कुसावन जिले के छोटी बेरी गांव से सिकंदर खान बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताएं सिकंदर जी, क्या हाल है? ये कोयल की आवाज आ रही है भाई, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाघ से बोल रहे हैं क्या किसी?
1: नहीं एक्चुअल में क्या, अभी मैं खेत में बैठा हुआ हूँ तो वहां से कॉल कर रहा हूँ आपको।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। बारिश नहीं हो रही है?
1: राजस्थान में अभी एंट्री हो रही है धीरे धीरे, दक्षिण राजस्थान में तो मानसून आ गया अभी।
0: बढ़िया। ये कोयल की कूक तो बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी मीठी तान छेड़ी है कोयल ने। कौन कौन से पेड़ हैं खेत के आसपास?
1: खेत के अंदर तो ये जामुन के हैं, पपीते, आम वगैरह है।
0: तो खेत में किस चीज की बुआई चल रही है अभी?
1: अभी तो ये मानसून की बारिश में जो ये बाजरा है, गंवार है, ये मोठ वगैरह की बिजाई चल रही है जी।
0: और उसके बाद फिर धान की बुआई होगी जब बारिश होगी तब।
1: फिर वो जो रबी वाली फसल है वो स्टार्ट हो जाएगी।
0: जी, खेती किसानी की सुविधाएं क्या क्या उपलब्ध हैं आपके यहाँ?
1: यहाँ पे हमारे वैसे तो ये इंदिरा गांधी नहर की भी सुविधा है, उसके अलावा ये ट्यूबवेल है, कुएं वगैरह, इनसे भी सिंचाई हो जाती है। इन दिनों में मानसून जो हो जाता है तो उसकी भी फसल वो अच्छी होती है।
0: बढ़िया। बताइए कौन सा
1: बिल्कुल
0: गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फकीरा पिक्चर है, उनका गाना है होके रहूंगी तेरी।
0: दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी
1: जी।
0: तेरी।
1: मैं साहब बहुत पुराना श्रोता हूँ, जब से वो जो ये हेलो फरमाइश शुरू हुआ था, कमल शर्मा ने 1996 में स्टार्ट किया था, वो मैंने पहला प्रोग्राम सुना था मैम साहब।
0: जी, बहुत बढ़िया। तब से आप सुन रहे हैं, तब से तो कितने सारे बदलाव हुए प्रोग्राम्स में, है
1: बहुत
0: ना?
1: काफी चेंजेस हुए हैं साहब, लेकिन 26 साल में कॉल लगा नहीं, लेकिन 2026 में मेरी दूसरी बार बात हो रही है विविध भारती में।
0: जी, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, मैं इंदौर से सत्य प्रकाश दीक्षित बोल रहा हूँ। ममता दीदी
0: जी, सत्य प्रकाश जी बताइए, क्या हाल है आपका? इंदौर का क्या हाल है? बारिश वगैरह हो रही है?
1: हाँ, अभी पिछले एक हफ्ते से प्रकृति की बहुत अनुपम कृपा है कि अच्छी बारिश हो रही है और चारों तरफ हरितिमा और प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ गया है।
0: जी, क्या
1: और
0: बात है।
1: ऐसा लगने लगा है कि सावन बहुत निकट ही है और आनंददायी वातावरण हो गया है।
0: सावन का जब इंतजार होता है तो मन यादों के गलियारे में पहुंच जाता है। तो जब सावन आता था तो आप अपने यादों के गलियारे में जाइए और बताइए कौन सा सावन आपके लिए बड़ा यादगार रहा है। बचपन में जो सावन के झूले पड़ते थे नीम के पेड़ पर, तो कभी
1: बिल्कुल,
0: झूलने का
1: वो
0: मौका
1: झूले
0: मिला?
1: भी याद आते हैं। पेड़ों पे जब गांव में जाते थे तो पेड़ों पे झूले झूलते थे, बड़ा मनोरम वातावरण लगता था सावन का। चारों तरफ एक जो प्राकृतिक सुषमा प्रकृति की दिखती थी, बहुत ही मन भावन रहती थी और आज भी वह सब देखने के लिए मन तरसता है। अब शहर में जरूर रह रहे हैं पर गांव की वो हरितिमा और वसुंधरा जो प्राकृतिक वातावरण में जो सावन में हो जाती है वो बहुत याद आती है। और अक्सर हम जाया भी करते हैं गांव में, तो वो पुराने दिनों को याद करके, सावन को याद करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, हर्षित हो जाता है।
0: तो उन दिनों में कजरी वगैरह गाई जाती थी सावन में, याद है क्या आपको?
1: हाँ, मैंने बहनों से भी सुने हैं वो। अभी तो खैर मैं चूंकि अभी वरिष्ठ नागरिक हूँ, 71, तो थोड़ी सी याददाश्त भी थोड़ी सी क्षीण हो चली है, पर हाँ मैंने बहुत सुने हैं, बड़े मन भावन गीत और कजरी रही है।
0: आप बताइए आज कौन सा गाना सुना चाहेंगे? और ये भी बताइए, आपने कहा इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, कहाँ पर आपने काम किया और कितने साल से रेडियो सुन रहे हैं?
1: मैंने बैंक में अधिकारी के रूप में काम किया करीब 40 वर्ष।
0: अच्छा।
1: और अभी 10 साल से सेवानिवृत्त हूँ। सामाजिक सेवा में और दूसरे कार्यों में समय निकल जाता है, पारिवारिक दायित्व भी है, उनका भी निर्वहन करते हैं। लोग रिटायरमेंट को ये कहते हैं कि अब आपकी सेकेंड

0: चालू हो रही है।
1: हाँ।
0: तो वो एक तरह से सही भी कहते हैं कि अपन उन दायित्वों को पहले सर्विस में रहते नहीं पूरे कर पाए, तो उन दायित्वों का निर्वहन कर लें, और जो आनंद कहीं किसी विशेष स्थान की यात्रा वगैरह का नहीं ले पाए हों, कंपोजिट टूर प्रोग्राम हो, जब समय मिलता है तो पर्यटन के लिए, तो उन स्थानों पे जब भी जाने का मौका लगता है तो समूह के साथ चले जाते हैं और
1: बिल्कुल बिल्कुल घूम के आए और एंजॉय करें। तो सत्यप्रकाश दीक्षित जी का फोन बीच से डिस्कनेक्ट हो गया, बातचीत उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से की, शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका, और उनके लिए हम सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं अशोक आनंद बोल रहा हूँ, लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। जी
0: आपने लेक सिटी उदयपुर कहा तो पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर खूब बारिश हो रही है, मुंबई में भी। तो क्या
1: जी जी
0: आपके उदयपुर में बारिश हुई तो झीलें भर गई?
1: कल कल शाम को भी बहुत झमाझम बारिश हुई थी।
0: क्या बात है, झीलें लबालब भर गई होंगी फिर तो।
1: नहीं, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी उसमें जुलाई अगस्त तक में भरेगी। झीलों की नगरी है तो काफी सारी झीलें हैं, और जैसे जैसलमेर लेक है तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जैसलमेर।
0: जब बारिश होती है तो आप सोचते हैं कि राजस्थान में खास तौर से पानी की कमी होती है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं लोगों से मिलजुल कर?
1: मैंने जैसे कई बार देखा अपने घर पे भी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जैसे अपने छत पे जो पानी होता है उसको पाइप से अपने वापस बोरिंग के अंदर जैसे सेट करवा रखा है, और
0: जी
1: वेस्ट पानी करते नहीं है। पर राजस्थान में हमारा उदयपुर शहर जैसे है ना, इतना पानी का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मेन प्रॉब्लम जैसे राजस्थान में लोग बोलते हैं कि सूखा होगा, वो एक्चुअली क्या है, जोधपुर जैसलमेर उस साइड ज्यादा सूखा होता है।
0: जी जी वहाँ की और जगहों के बारे में बताइए, उदयपुर के आसपास क्या कुछ
1: जी
0: है
1: मैम, उदयपुर
0: पर्यटन?
1: के बाद में बताना चाहूंगा कि जैसे उदयपुर के पास में एक सज्जनगढ़ फोर्ट किला है, जिसकी दीवार विश्व की सबसे दूसरे नंबर की दीवार है, और उदयपुर पर्यटक की दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो विश्व में एक नंबर पे आता है।
0: वाह,
1: तो पहले किसी जमाने में फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर और दिल्ली हुआ करती थी, अब उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी मोस्टली होती है कि राजस्थान में उदयपुर या और दूसरे किले फोर्ट वगैरह,
0: जी।
1: और राजस्थान के कुछ अच्छे मंदिर जो विश्व प्रसिद्ध थी
0: बिल्कुल,
1: उनको देखने के लिए, विजिट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं।
0: क्या बात है, आप जो जानकारी दे
1: जी
0: रहे हैं, हमारे श्रोताओं की जानकारी समृद्ध हो रही होगी, और
1: जी
0: बड़ा
1: जी
0: अच्छा लग रहा है इतनी सारी बातें आपने
1: एक
0: बताई।
1: चीज मैं और आपसे अर्ज करना चाहूंगा।
0: जी हाँ,
1: गाना आज का मेरा जो पसंद का है वो खुदगर फिल्म का है, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर हैं, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना सुनना मुझे।
0: और मुकेश के
1: और
0: गाने।
1: जी मुकेश के भी सुनता हूँ, किशोर जी के भी, लता जी के भी, खासकर मदन मोहन जी और लता जी का जो कम्बिनेशन है ज्यादा लाइक करता हूँ।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की।
1: जी
0: तो बस विविध भारती से भी, सारे श्रोताओं से, आपकी दोस्ती यूं ही सलामत रहे इस बात के साथ,
1: जी
0: बातचीत को दे रहे हैं
1: जी
0: विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लगाने बोल रहा हूँ।
0: राजू जी, आगरा में क्या खास है बताइए, कोई विशेष धरोहर है?
1: दीदी आगरा में तो सबसे पहले तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल ही है, लाल किला
0: जी,
1: है, सिकंदरा है, आगरा का पेठा।
0: आगरे का पेठा भी बहुत मशहूर है, क्या बात है भाई।
1: जी बिल्कुल। और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरी बात आज ममता दीदी से हो रही है, बड़ा खुशी हो रही है दीदी मेरे को।
0: जी बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी हो रही है। अब जरा आगरे के ताजमहल के बारे में बताइए, आपने देखा है ताजमहल?
1: देखिए दीदी मैं तो ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो
0: अच्छा, ओ
1: मैं तो कभी ताजमहल गया नहीं। मैं तो उन्हीं जगह जाता हूँ जहाँ भगवान का मंदिर होता है, क्योंकि भगवान के मंदिर में हमें मंदिर नहीं देखना होता है, भगवान हमें खुद देखते हैं। हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ हमें भगवान को दिखाई दे या न दे, लेकिन भगवान हमें दिखे, ऐसी
0: जी
1: जगह जाता
0: जी
1: हूँ दीदी मैं।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात है। तो बताइए, और क्या करते हैं आप दिन भर घर में?
1: जी दीदी मुझे संगीत से शौक है, मैं रेडियो सुनता हूँ, आपके विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता रहता हूँ अपने रेडियो के माध्यम से।
0: अब
1: जी
0: हमें
1: दीदी
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं, और आपने कहा कि

0: संगीत का शौक है तो निश्चित रूप से आप भी गाते होंगे, क्या सीखा है आपने गाना क्या?
1: ये बिल्कुल बिल्कुल, आज की फिल्म है लम्हे, आवाज है लता जी, अरुण जी और सखियों की, और गाने के बोल हैं मेरे।

0: अरे तूने किसको याद किया, ये वाला गाना सुनना था दीदी।
1: वाह, बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने। तो आपने कौन सा संगीत सीखा, शास्त्रीय संगीत या सुगम संगीत?
0: जी दीदी, मैं ज्यादातर लाइट म्यूजिक में चलता हूँ, कथाओं में, भागवतों में, सुंदरकांड में, सत्संगों में। मैंने कुछ नहीं सीखा, चोरी कभी मैंने कहीं से कुछ नहीं सीखा, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जो कुछ भी है।
1: अच्छी बात है। तो कोई लोकगीत भी याद है उत्तर प्रदेश का?
0: जी बिल्कुल, ब्रज का लोकगीत मेरे को बिल्कुल याद है।
1: तो सुनाइए फिर हमारे श्रोताओं को भी।
0: अरे बंद

0: जी
1: जी टेकचंद जी, बताइए क्या हाल है आपका और छिंदवाड़ा का क्या हाल है?
0: मैडम, हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया, एकदम बढ़िया। बारिश वारिश हो रही है?
0: हाँ मैडम, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, कहना चाहिए झमाझम बारिश हो रही है, जैसा कि हम लोग चाहते हैं, कहना चाहिए एक प्रसन्नता की बात है। और साथ में हमारे जो किसान भाई है वो काफी खुश नजर आ रहे हैं।
1: स्वाभाविक है उनकी खुशी, उनके लिए तो पानी एक अमृत की तरह है, सारा कुछ, पूरी खेती किसानी उनकी बारिश पर ही निर्भर करती है ना।
0: जी जी जी
1: तो आप अपने बारे में बताइए, आपका क्या काम काज है?
0: मैडम, मैं जो हूँ एक सीनियर सिटीजन हूँ, और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि मैं ये जो जुलाई माह आएगा ये मेरे लिए काफी वरदान साबित है, कहना चाहिए।
1: अच्छा, किस सिलसिले में?
0: क्या हुआ मैडम, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि 2001 सात 2020 को मेरा रिटायरमेंट हुआ है ऑल इंडिया से, तो सुरक्षित हम अपने काम से अपने घर लौटे हैं, ये बहुत खुशी की बात है।
1: कहाँ काम करते थे?
0: कोल इंडिया में मैडम, तो मैं उससे कहना चाहिए 38 वर्ष देकर के सुरक्षित अपन घर पर पहुंच गए हैं, ये हमारे लिए काफी और हमारे परिवार के लिए खुशी की बात है।
1: जी जी बहुत बढ़िया बात है। तो वहाँ के कोई अनुभव, कोई छोटी सी घटना, कोई बात हो तो बताइए।
0: पहले जो होता था वो काफी असुरक्षित मतलब रहता था माइंस में काम करना, लेकिन अभी सरकार ने इतना ज्यादा सुरक्षित मतलब वर्करों को कर दी गई है, तो कहना मैडम अब उतना जो हमारे साथ जो घटनाएं होती थी वो अब नहीं के बराबर हो गई है। हम अपनी लापरवाही से कहना चाहिए या असावधानी जो होती है उससे दुर्घटनाएं होती है।
1: जी जी
0: तो ये कहना चाहिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज के समय में जो दुर्घटनाएं नहीं के बराबर हुई है वो काफी हमारे मजदूरों को या हमारे जो साथ के कामगार हैं लोग को काफी प्रोत्साहित करती है इस ओर काम करने के लिए।
1: जी
0: नहीं तो पहले के मजदूर मैडम काम करना छोड़ करके भाग जाते थे।
1: तब भी बहुत मुश्किल काम है, थोड़ा तो जोखिम भरा काम है ये।
0: धरती को चीर करके उसके सीने से कोयला निकाला जाता है, ये एक बहुत बड़ी बात है, और प्रकृति के विरुद्ध काम करना, कहना चाहिए किसी भी क्षेत्र में हो प्रकृति के विरुद्ध करना, हम देख रहे हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक ही हो, चाहे वो हम पृथ्वी के अंदर से कोयला निकाल रहे हों या बाहर प्रकृति के विरुद्ध जो काम कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण हो रहा है या हम पेड़ काट रहे हैं, तो उसका भुगतान अभी हम ये बारिश देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे कई जगह पे हो रही है, कई जगह पे हो ही नहीं रही।
1: जी बिल्कुल, मतलब जो पर्यावरण का असंतुलन होता है इस सबसे, वो हम सबके लिए बहुत नुकसानदेह है। अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, महेंद्र कपूर जी और आशा जी की।

0: हेलो फरमाइश।
1: प्यार भरा नमस्कार, कभी
0: नमस्कार।
1: सुनता हूँ वो प्यार भरा सुनने वाले हो। हेलो फरमाइश सुनने वाले को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पांडुरंग मोरे, मुक्काम पोस्ट वारंगा फाटा, तालुका कळमनुरी, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी पांडुरंग जी बताइए, बड़ा लंबा चौड़ा परिचय
1: मौसम
0: देते हैं।
1: कैसा है बम्बई में? मौसम कैसा है? इधर बारिश नहीं है, उधर बारिश होंगी तो थोड़ा भेज दो हमारे इधर महाराष्ट्र में आओ।
0: एकदम भीगा मौसम, खूब सारी बारिश हो रही है और खूब सारी बारिश आपके रेडियो सेट तक भेजेंगे आपके गाने के माध्यम से और आपकी बातचीत के माध्यम
1: हाँ
0: से।
1: हाँ
0: जी
1: फिल्म
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
1: का नाम है हीरो, गाने के बोल है तू मेरा हीरो है मैं तेरा, हीरो टाइटल सॉन्ग का गाना सुनना है।
0: सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सेवन सिस्टर त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा हूँ।
0: प्राकृतिक सुषमा जहाँ पर मौजूद है और दिल वहाँ जाए तो दिल वहीं पर रुक जाने का मन करता है ना, तो सबसे पहले आप त्रिपुरा के हालचाल बताएं। त्रिपुरा में जो प्राकृतिक छटा है वहाँ के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मैम अभी तो त्रिपुरा में बारिश का सीजन है और कुछ दिन से लगातार बारिश चल रहा है। कभी कभी रुकता है, धूप निकलता है, फिर बारिश, ऐसा ही चल रहा है लगभग 2 महीना।
0: तो ये बताइए कि बारिश जब होती है ज्यादा तो वहाँ के लिए नुकसानदेह है या सही है? ठीक है।
1: नहीं मैम जी, ज्यादा बारिश होने से तो नुकसान तो हो ही जाता है
0: बिल्कुल। और वहाँ के आसपास की जगहों को आपने कहा ना सेवन सिस्टर्स, यानी कि वो जो कौन कौन से उसमें शामिल है सेवन सिस्टर्स में बताइए।
1: सेवन सिस्टर में त्रिपुरा का पासी है असम, और आता है मेघालय,
0: अरुणाचल प्रदेश,
1: अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
0: मतलब खूबसूरती का आलम है। तो त्रिपुरा के आसपास क्या है बताइए।
1: त्रिपुरा में तो मैं जहाँ रहता हूँ मैम जी, त्रिपुरा का नॉर्थ साइड में मैं रहता हूँ, ये ऊनकोटी टेम्पल, बाहर से बहुत लोग आता है दर्शन करने के लिए, ये सर्च करने से मैम जी आपको मिल जाएगा।
0: जी जी जी
1: इंडिया का बाहर से भी आता है मैम जी,
0: जी
1: ये टेम्पल
0: बिल्कुल
1: देखने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: त्रिपुरा का और मशहूर टेम्पल है त्रिपुरेश्वरी मंदिर, देवी का और शरीर का एक अंग घिरा था त्रिपुरेश्वरी मंदिर में, जो असम में भी एक घिरा था और बन गया बड़ा टेम्पल माँ कामाख्या।
0: तो ये शक्तिपीठ है
1: बिल्कुल।
0: और एक और खास बात है त्रिपुरा की, त्रिपुरा से एक बहुत बड़े संगीतकार आए जिन्होंने पूरी फिल्मी दुनिया में जिनके संगीत का जादू छाया, हम सब के दिलों पर आज भी कायम है उनके संगीत का जादू। वो नाम
1: जी
0: आपको
1: जी
0: पता है?
1: बिल्कुल पता है मैम जी, सचिन देव बर्मन
0: जी,
1: और उनका बेटा तो पिताजी को भी छोड़ के चला गया,
0: राहुल देव बर्मन। तो इसलिए त्रिपुरा और खास हो गया ना आपके लिए। तो
1: जी जी
0: तो बताइए फिर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं आज?
1: जी आज मुझे याद आया 1980 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है फिर वही रात, और इस गाने को गाया है

0: सुरों का मल्लिका लता जी ने बिंदिया पैरिस पे, और इस गाने को लिखा है मैम जी संगीत का सबसे बड़ा राइटर में एक नाम है मजरूह सुल्तानपुरी
1: जी, गीतकार
0: संगीत तैयार किया है आदि बर्मन
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने त्रिपुरा से हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश,
1: आपको प्रणाम है।
0: आपको भी प्रणाम है। नाम और कहाँ से बोल रहे हैं जरा बता दीजिए।
1: पहड़िया वाराणसी उत्तर प्रदेश अशोक विहार कॉलोनी फेज 2 से अनिल रमा गुप्ता गोन।
0: वाह भाई बढ़िया। तो ये नाम परमानेंट लगा रखा है अपने नाम के साथ अपनी पत्नी का?
1: जी जी जी, जब भी फरमाइश भेजता हूँ मैं वाराणसी से, वाराणसी का रहने वाला हूँ, तो यही बोलता हूँ श्रोता दंपति अनिल, जैसे मेरा नाम है अनिल गुप्ता गोंड और वाइफ का नाम है रमा गुप्ता गोंड,
0: तो
1: श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: जी बहुत बढ़िया, आपने स्पष्ट कर दिया। तो बताइए अनिल जी और रमा जी के क्या हाल है और बनारस का क्या हाल है?
1: जी बनारस में तो इस समय तो मौसम बहुत सुहाना हो गया है, बरसात हो रही है। 2-3 दिन पहले तो बहुत गर्मी थी।
0: तो अब जरा बताइए कि बारिश हो रही है बनारस में, गंगा जी हैं, तो इस समय क्या बाढ़ आई है, उसमें उफान पर है या नॉर्मल है नदी?
1: नहीं नहीं, अभी उतना नहीं है। जब एक्चुअल में जब ये उत्तराखंड में बरसात बहुत तेज होती है तो पानी का स्तर बढ़ने लगता है, लेकिन अभी इधर बरसात तो उतनी हुई नहीं जितनी उम्मीद रहती है हर साल, उतनी बरसात इधर उत्तर प्रदेश में कम हुई है बरसात।
0: जी बनारस में जो गंगा आरती होती है शाम को, उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, आप जरा बताइए क्या होता है उसमें?
1: गंगा आरती में एकदम बहुत बड़े बड़े वो दीपक टाइप के लेके उसमें हवन सामग्री जलाई जाती है।

0: जाती है।
1: गंगा जी में नौका विहार का भी एक अलग आनंद होता है, तो आपने कभी नौका विहार किया है वहाँ रहते हुए?
0: कई बार किए हैं। चलो मैं तो पहाड़िया क्षेत्र में रहता हूँ, लेकिन मैं गंगा जी में 78 में बनारस में आया था। मैं पहले दिल्ली में रहता था, तब से बहुत बार मैंने गंगा जी स्नान किया है, पूजा पाठ और आरती देखी गई है। मैं रहता हूँ वहीं बगल में सारनाथ है।
1: अरे वाह क्या बात।
0: तो सारनाथ में जैसा आप जान ही रही है कि अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है म्यूजियम में।
1: फिर बनारस का पान, बनारस की चाट बहुत मशहूर है, और बनारस मतलब पूरे उत्तर प्रदेश का लोकगीत बहुत मशहूर है, बनारस की ठुमरी बहुत मशहूर है। तो इनमें से आपको क्या शौक है? क्या बनारस की ठुमरी या बनारस का कोई लोकगीत याद है, सुनाना चाहेंगे श्रोताओं को?
0: कजरी जो है, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: अरे वाह क्या बात।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो।
1: तो गा के सुनाई गनवा।
0: मिर्जापुर कैला गुलजार हो, मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
1: बहुत बढ़िया, बताइए कौन सा गाना?
0: देखिए बरसात का मौसम है तो मल्हार राग पर एक गाना था लगान फिल्म के, नर गनर घिरा बदला, ए आर रहमान जी जावेद अख्तर जी के बाद में लिखल।
1: बेहतरीन गाना चुना है बारिश के मौसम के अनुरूप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: घन घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के ढंग के।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्ती वो नहीं जो जान देती है, दोस्ती वो भी नहीं जो मुस्कान देती है। अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। नमस्कार मैम जी।
0: क्या बात है भाई, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल

0: रहे।
1: राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोरड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सखी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: क्या बात है भाई, बरेली से बोल रहे हैं।
1: हाँ जी मैम जी, आपसे लगता है हमारी पहली बार बात हो रही है।
0: जी, बरेली का नाम एक गाने में आता है, कौन सा गाना है याद है क्या आपको?
1: हाँ जी, साया मूवी का है, झुमका घेरा रे बरेली
0: बरेली
1: के
0: के
1: बाजार में।
0: बाजार
1: हाँ
0: में। और बरेली की और कोई
1: जी,
0: खासियत हो तो बताइए आपके नजर से।
1: बरेली की खासियत एक जरी के नाम से जाना जाता है, और एक नया काम चल रहा है, राम वाटिका जो रामायण में दिखाया गया वो सभी बनने आया है मैम जी।
0: अच्छी बात है। और
1: जी
0: अपने कामकाज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं?
1: मैम जी, अभी तो खैर हमारे मकान का काम चल रहा है, वैसे तो हम भी जरी का ही काम करते हैं।
0: जरी का काम
1: हाँ
0: करते
1: जी
0: हैं, मतलब जरी वाली साड़ियाँ तैयार करते हैं या और दूसरी तरह के कपड़े, कुर्ते क्या बनाते हैं
1: मैम जी, हम
0: क्या?
1: सूट भी बना लेते हैं, साड़ियां भी बना लेते हैं, आए पर शेरवानी भी बना लेते हैं, कलियां भी बना लेते हैं, और जो साड़ी होती है रेशम करदाना मोती ये भी बना लेते हैं।
0: तो जरी के किस काम की ज्यादा मांग होती है, क्योंकि आजकल लोग सादा पसंद करते हैं ना ज्यादातर
1: सबसे ज्यादा डिमांड होती है लहंगा चुन्नी की।
0: शादियों में।
1: हाँ मैम जी,
0: बताएं कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम रहेगा दिलवाले, गाने के वो रहेंगे सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरी हो रही आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि आगामी 2 माह तक वे हमें कृपया फोन ना करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें कॉल करने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। टेलीफोन नंबर एक बार फिर से बता दें 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का एसटीडी कोड 022। और अब चलने से पहले आपको ये भी बता

0: कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, आपका कार्यक्रम रंग तरंग में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मीरा भजन इस एल्बम से। लता मंगेशकर की आवाज है, मीरा बाई का लिखा गीत, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

रंग तरंग कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको सुनवाया हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई का ये भक्तिपद, आवाज लता मंगेशकर की थी।

0: चंदन दास की आवाज में अभी आपने निदा फाजली का ये कलाम सुना। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: मेरी यादें।
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
0: अनमोल यादें
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। और आइए अब सुनते हैं मिलिंद गदवी का लिखा गीत। इसे आवाज दी है हमशिका अय्यर ने।

हमशी का हेयर की आवाज थी ये, और अभी आपने इनका गाया ये औगार फिल्मी गीत सुना। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं शोभा गोटू की आवाज में ये शास्त्रीय रचना।

0: शोभा गुल्टू की आवाज में अभी आपने ये शास्त्रीय रचना सुनी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जावेद अली की आवाज। इनका गाया ये अगार फिल्मी गीत सुनिए।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। यह आवाज है विशाल मिश्रा की और गीत और संगीत भी विशाल मिश्रा का ही है।

0: रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाली उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बेगम अख्तर की आवाज में हम आपको जिगर मुरादाबादी का ये कलाम सुनवा रहे हैं।

कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले और हरजोत कौर की आवाजों में है। गीतकार हैं अनजान और ये एक गैर फिल्मी गीत है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और लीजिए अब सुनिए पलक मुछाल और उत्कर्ष शर्मा की आवाजों में ये गैर फिल्मी गीत।

0: इस रचना के साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न कर ली है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार।
1: बीकापुर में भी विकास दिख रहा है। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में जारी किया है।
2: इसे पार करा देता है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, इसके लिए आपका धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार, जय जोहार। 18 तारीख को चिड़िया की बच्ची कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रस्तुति के लिए NCERT उमंग के साथ विमलेश जी और अजीत जी को बहुत बहुत बधाई।
3: और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी।
2: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर।
3: और गांव बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से अमन वर्मा, रमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा और वर्मा परिवार के सभी सदस्य।
2: और कुतुबपुर तहसील हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों को भेजने के लिए। और आइए एक बार फिर से चलते हैं हमारी आपकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में कुछ और नई और रोचक जानकारियों के साथ।
2: श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं पेड़ों की। जैसा कि हमने इस सप्ताह की पहली कड़ी में सुना था, पेड़ सिर्फ पेड़ ही नहीं, वे इस धरती के सबसे प्राचीन जीव हैं। उनके आने के बाद ही दूसरा जीव जगत शुरू हो सका, क्योंकि वे वर्षा, भोजन, औषधि और श्वसन के मुख्य स्रोत हैं।
3: श्रोताओं, क्या आप जानना चाहेंगे कि पेड़ों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो चलिए आपको बताते हैं।
2: पेड़ों की उत्पत्ति पृथ्वी के इतिहास की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक है। कहते हैं लगभग 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर पेड़ नहीं थे, केवल सूक्ष्म जीव थे। कालांतर में समुद्रों में शैवाल जैसे जीव विकसित हुए, जो तैरते थे और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते थे।
3: धीरे धीरे ये शैवाल जैसे जीव समुद्र से निकलकर भूमि पर आए। इन्हीं से प्रथम स्थलीय पौधों का विकास हुआ।
2: प्रश्न ये है कि इन पौधों ने क्यों बढ़ना शुरू किया। इसका कारण ये था कि जीने के लिए वे अधिक सूर्य का प्रकाश पा सकें और दूसरे पौधों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसी क्रम में ये पौधे बढ़ते बढ़ते पेड़ बन गए। ध्यान दें तो इस प्रक्रिया में विकासवाद का सिद्धांत काम करता है, यानी सफलतम ही टिका रहता है।
3: तो श्रोताओ, ये थी पेड़ों की उत्पत्ति की वैज्ञानिक कथा। अब जरा ध्यान दें, गर्मी का मौसम है, राह चलते चलते जब बहुत गर्मी लगती है तो आप किसी पेड़ की छाया में शरण लेते हैं
2: जी।
3: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ठीक उस समय जब आप उसकी छाया का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय वो पेड़ क्या क्या कर रहा होता है?
2: ध्यान से सुनिए मित्रों, उस समय वो हवा को ठंडा कर रहा होता है, क्योंकि वो वाष्पोत्सर्जन द्वारा एक प्रकार से प्राकृतिक एसी की तरह काम कर रहा होता है।
3: श्रोताओं, ठीक उस समय वो हमें ऑक्सीजन दे रहा होता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अवशोषित कर रहा होता है, जो हमारे लिए हानिकारक है।
2: उस समय वो शोर को कम कर रहा होता है, क्योंकि पत्तियां और शाखाएं प्रदूषित वायु को ही नहीं, शोर को भी अवशोषित करती हैं। तभी तो कहते हैं पेड़ों के नीचे या जंगलों में एक शांति का आभास होता है।
3: श्रोताओं, एक बात और, ठीक उस समय वो पेड़ वर्षा और जल संरक्षण में योगदान दे रहा होता है, जिससे भविष्य में हमें भूजल और वर्षा का जल लगातार मिलता रहे।
2: उस समय वो हजारों कीटों, कवकों, पक्षियों और जीवों को आश्रय देकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा होता है।
3: सचमुच श्रोताओं, एक पेड़ हमारे और दूसरों के लिए मौन रहकर भी इतनी सेवा कर रहा होता है। वह बेशक मौन है, लेकिन मानो कहता है, मैं तुम्हारे लिए हवा को शुद्ध कर रहा हूँ, धरती को ठंडा करके जलवायु परिवर्तन की गति को यथासंभव रोक रहा हूँ।
2: स्वयं धूप सहकर तुम्हें छाया दे रहा हूँ, वर्षा लाने में सहायता कर रहा हूँ, मिट्टी के कटाव को रोक रहा हूँ। बदले में मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे और अन्य पेड़ों को जीवित रहने दो। हम सभी पेड़ धरती के फेफड़े हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ,

0: अब जब किसी पेड़ को देखें तो इन बातों को जरूर स्मरण कीजिएगा। पेड़ वास्तव में हमारे लिए प्रकृति के मौन लेकिन सबसे बहुमूल्य उपहार हैं।
1: तो ये थी पेड़ों के बारे में हमारी रोचक जानकारी इस सप्ताह की श्रृंखला में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो उस समय वो क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो उस समय क्या क्या कर रहा होता है? कोई दो या तीन कारण बताइए।
0: 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, जो एक गीत के रूप में देश को समर्पित है। शीर्षक है प्यारा भारत।
1: ये कक्षा 3 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक सितार की एक नज्म पर आधारित है। श्रोताओं, ये खूबसूरत नज्म आपको ले जाएगी भारत के गगनचुम्बी पर्वतों, कलकल करती नदियों, लहलहाती फसलों के मैदानों, घाटियों और फलों के बगीचों में।
0: तो आइए करते हैं भारत भ्रमण इस नज्म के साथ। शीर्षक है भारत प्यारा।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत भारत प्यारा।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मौर्य कालीन पाटलिपुत्र।
0: इस कार्यक्रम में मौर्य साम्राज्य के महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के बारे में विस्तार से बताया गया है। विशेषकर ये उल्लेख किया गया है कि उनके शासन काल में जनतांत्रिक मूल्य कितने ऊंचे थे, खुफिया व्यवस्था कैसी थी और चीन के यात्रियों ने उनकी कीर्ति की कैसी प्रशंसा की।

मेरा नाम है पाटलिपुत्र। अब लोग मुझे बिहार प्रदेश की राजधानी पटना के नाम से जानते हैं। मेरा इतिहास बहुत पुराना है। इस बात को 2000 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं जब एक छोटा सा गांव था मैं। नाम था पाटली। यहां वहां कुछ खेत, कुछ झोपड़ियां, पास में कल कल करती गंगा की निर्मल धारा। एक घाट था गंगा पार जाने के लिए। वहां एक दो नौकाएं खड़ी।

0: महात्मा बुद्ध का नाम मशहूर हो रहा था।
1: उन दिनों मगध पर मौर्यों का राज्य था, जो बिहार के पटना और गया जिलों में फैला हुआ था। मगध की सीमाओं को बढ़ाया बिंबिसार ने। एक बार वहां भयानक आग लग गई। इसके बाद बिंबिसार ने पास ही में नई राजधानी राजगृह का निर्माण करवाया।

0: राजा बिंबिसार के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा अजात शत्रु। महात्मा बुद्ध के सम्मान में अजात शत्रु ने घोषणा करवाई,
1: सुने सुने सुने सभी ग्रामवासी सुने, सम्राट अजात शत्रु ने महात्मा बुद्ध के सम्मान में ये घोषणा की है कि आज से पाटली दुर्ग का मुख्य द्वार गौतम द्वार और गंगा नदी का घाट गौतम घाट कहलाएगा।

महात्मा बुद्ध ने पाटली के विषय में भविष्यवाणी की थी कि आने वाले समय में पाटली एक प्रमुख नगर और व्यापार का बड़ा केंद्र बन जाएगा। जब बुद्ध पाटलीग्राम आए थे तो वे 79 वर्ष के थे। इसके एक वर्ष बाद ही कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

0: अजात शत्रु ने वैशाली को जीत लिया। उसके बाद पाटली दुर्ग का महत्व और भी बढ़ गया।
1: अजात शत्रु के बाद राजा बना उसका पुत्र उदाई भद्र। उदाई भद्र अपने पिता अजात शत्रु की तरह विजेता तो न था, पर उसे नए नए राजमहल बनवाने का शौक था। उदाई भद्र ने ही मुझे मगध की राजधानी बनाया।

0: वो 16 वर्षों तक मगध का राजा बना रहा।
1: समय बदला, मगध का सिंहासन महापद्म नंद

0: नंद के पास चला गया। इसी ने नंद वंश चलाया था।
1: पर मैं खुश नहीं था। मैं एक बड़ा नगर जरूर बन गया था। मेरा नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था, लेकिन मगध की जनता दुखी थी। महापद्म नंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे।

0: भागो भागो जाओगे अरे अरे सिपाही आगे अरे जाओगे
1: महापद्म नंद के बाद मगध का राजा बना धननंद। बड़ी सेना, अपार धन संपत्ति थी उसके पास, मगर था वो बहुत ही घमंडी। धननंद ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी जो उसके पतन का कारण बनी। उसने तक्षशिला के प्रसिद्ध आचार्य कौटिल्य का भरे दरबार में अपमान कर दिया। अपमानित कौटिल्य ने प्रतिज्ञा की

0: अत्याचारी धननंद, मैं कौटिल्य आज प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सर्वनाश करूंगा, सर्वनाश।
1: और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को चुना। मौर्य कुल का वो वीर युवक अपना देश छोड़कर भटक रहा था। कौटिल्य ने उसे तक्षशिला में शिक्षा दी।
2: और उधर भारत से बहुत दूर मैसिडोनिया में साहसी सिकंदर अपने पिता फिलिप के बाद राजा बना था। समय था ईसा से 336 वर्ष पूर्व। सिकंदर का सपना था विश्व विजेता बनने का। उसकी आंधी सारी दुनिया पर छा जाने के लिए उमड़ने लगी।

सिकंदर बढ़ता गया, उसकी आंधी बढ़ती गई। 11 वर्षों में हर तरफ अपनी जीत के डंके बजाता हुआ सिकंदर भारत की सीमा पर आ खड़ा हुआ। छोटे छोटे राज्यों में बटा था तब का भारत। लोग वीर थे लेकिन आपस में लड़ते रहते थे। अभिसार के राजकुमार आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया, लेकिन राजा पुरु ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया।

पोरू की पराजय हुई। सिकंदर जीत तो गया, परंतु अब उसके सैनिक थक गए थे, उनका मनोबल गिरता जा रहा था, उन्हें कदम कदम पर कड़ी टक्कर मिल रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो रही थी।

0: गजब हो गया। सेना आगे बढ़ने से मना कर रही है वीर से गद्दार।
1: क्या आगे बढ़ने से मना कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैसिडोनिया का विश्व विजयी बनने का सपना चूर चूर हो जाएगा?
2: वीर सिकंदर, आप स्वयं सैनिकों से बात क्यों नहीं करते?
1: मैं ऐसा ही करूंगा। जाओ, सारे सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। ये सिकंदर का आदेश है।
3: जी सम्राट, ऐसा ही होगा।
2: ऐसा ही होगा,
3: ऐसा ही होगा।
1: मेरे वीर सैनिकों, क्या मैंने ठीक सुना है कि मैसिडोनिया की बहादुर सेना ने अब आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है और वो वापस लौटना चाहती है? मैं पूछता हूं, ऐसा क्यों? जिस काम के लिए हमने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, जिस काम में हमने अपने बहादुर साथियों की जान की बाजी तक लगा दी, आज उसी काम से तुम सब भागना चाहते हो? याद है तुम्हें, हमारी आंधी के सामने बड़े बड़े सम्राट तक उखड़ गए और आज चारों ओर सिकंदर का डंका बज रहा है। चुप क्यों हो? मुझे जवाब चाहिए। क्या हमारी तलवारों की धार खत्म हो गई है? क्या हमारी भुजाएं खोखली हो गई है? ये व्यास नदी देख रहे हो ना, इस नदी को पार करते ही
3: हम वापस लौटना चाहते हैं।
1: सुनो मेरे वीरों, व्यास नदी को पार करते ही हमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा।
3: हमें कुछ नहीं चाहिए, हम
0: मैसिडोनिया चलो, वापस चलो
3: साथियों। अरे कुछ तो सबर करो साथियों, जब जहां तक आ ही गए हैं तो आगे क्यों ना बढ़ा जाए? अगर मैसिडोनिया वापस चले भी गए तो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? हम सम्राट की बात नहीं टाल सकते।
1: शाबाश मेरे वीरों, मुझे तुमसे यही आशा थी।

0: पकड़ो दोस्तों को, भागने ना पाए, पकड़ो इनको, पकड़ो इन्हें।
1: तुम सब सैनिकों के घेरे में हो। इस निर्जन खंडहर में आधी रात को क्या षड्यंत्र हो रहा था हम जान चुके हैं।
2: महाराज चंद्रगुप्त आप?
1: हाँ
3: महाराज, देखिए आचार्य कौटिल्य भी आ रहे हैं।
1: आचार्य प्रणाम, आप इस वक्त यहाँ?
4: आश्चर्य न करो चंद्र, मगध को असंख्य नेत्रों वाली गुप्तचर व्यवस्था चाहिए, मैं सावधान हूँ।
1: धन्य हो आचार्य, मौर्य साम्राज्य को आपकी बहुत आवश्यकता है।
5: धन्य हो आचार्य,
6: धन्य हो आचार्य,
7: धन्य हो आचार्य,
8: धन्य हो।
1: मगध सुखी था, चंद्रगुप्त प्रजा की भलाई करने वाला न्यायप्रिय शासक था, मगर एक बार फिर संकट सिकंदर के सेनापति निकेटर सेल्यूकस के रूप में बढ़ा आ रहा था।

0: सेल्यूकस भारत को जीतने का सपना लेकर आ रहा था, लेकिन अब भारत बदल चुका था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को बुरी तरह पराजित किया।
1: बेचारा सेल्यूकस भारत को जीतने आया था, पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। मेगस्थनीज सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। वो 4 वर्ष तक दरबार में रहा,

0: समय बदला। चंद्रगुप्त के शासन के 25 वर्ष बाद बिंदुसार राजा बना और फिर बारी आई उसके मझले बेटे अशोक मौर्य की। अशोक बहुत वीर था। उसने उज्जैनी और तक्षशिला के विद्रोह को सफलतापूर्वक शांत कर दिया और फिर हुआ कलिंग युद्ध।
1: ये क्या कर डाला मैंने, इतना रक्तपात सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए। नहीं, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अशोक मौर्य प्रतिज्ञा करता हूं, कभी युद्ध नहीं करूंगा। अब कभी युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, अब कभी युद्ध नहीं करूंगा।
0: कलिंग ने अशोक का जीवन बदल डाला। उसकी रुचि अहिंसा में, बौद्ध धर्म में हो गई।

उसने बौद्ध विहार बनवाए, शिलालेख खुदवाए। अगर अशोक का स्तंभ लेख न होता तो हम कभी न जान पाते कि बुद्ध का जन्म कहां हुआ था। तभी श्रीलंका के राजा तिस्स का मैत्री संदेश आया तो अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसी तरह बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा एशिया के और हिस्सों में भी हुआ। अशोक के बाद मौर्य वंश सशक्त नेतृत्व के अभाव में बिखरता चला गया। सम्राट आए, सम्राट गए, किसी को ऐश्वर्य मिला, किसी की सत्ता छीनी, पर मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। समय के बहाव को देखते हुए और भारत की गोद में अपना स्थान बनाए हुए,

0: मौर्यकालीन पाटलिपुत्र, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं इसी कार्यक्रम के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: अभी आप सुन रहे हैं।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में, वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।

0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म रूप तेरा मस्ताना का गीत सुनवा रहे हैं। शब्द असद भोपाली के और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की ही आवाज में, फिल्म का नाम श्रीमान फंटूश, रचना असद भोपाली की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज में हम आपको फिल्म टावर हाउस का गीत सुनवा रहे हैं, रचना असद भोपाली की और संगीत रवि का।

कार्यक्रम का अगला गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का ही लिखा हुआ, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम है आया तूफान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म नाग मंदिर का गीत, आवाज मोहम्मद रफी की।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एक नारी दो रूप का ये गीत।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको गीतकार असद भोपाली के लिखे कुछ गीत सुनवाए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर। बस आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

तो प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, निदा फाजली ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो चलिए निकलते हैं इस आज के सुरीले सफर पर, या यूं कहें कि इस संगीतमय सफर पर। और आज इस सफर में कुछ कालजयी और सदाबहार धुनों पर आधारित कई ऐसे गीत हम आपके लिए चुनकर लाए हैं जो आपको लगभग एक जैसे गाए हुए लगेंगे, है ना। यानी एक ही मीटर में गाए हुए ये गीत हम कई बार सुनकर ठिठक भी जाते हैं या महसूस करने लगते हैं कि अरे, ये तो बिल्कुल एक जैसा ही गाया गया है। यहाँ शास्त्रीय रागों पर बात करना हमारा उद्देश्य नहीं है दोस्तों, क्योंकि कौन सा गीत पूर्ण रूप से किस राग पर आधारित है ये तो कोई शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता ही बता सकता है। लेकिन हाँ, जब हम इन गीतों पर अध्ययन कर रहे थे तो हमने जाना कि आज के ये सभी गीत एक ही राग पर आधारित हैं और सुनने में बिल्कुल लगभग यूं कहें एक जैसे लगते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के इस सुरीले सफर पर। हाँ, हमारे बहुत से श्रोताओं ने कभी लिखा है कि आज के गीत राग यमन पर आधारित हैं, राग आसावरी पर, राग शिवरंजनी पर, राग अल्लैया बिलावर पर, राग पीलू पर। बहुत सारे रागों का हमारे श्रोताओं ने जिक्र किया है, लेकिन हमने आपको कहा कि यहाँ राग इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि हम शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं है। हमारा उद्देश्य इस रूप में आपका मनोरंजन करना है कि ये गीत जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे, ये गीत उस गीत से कितना मेल खाता हुआ है। ये अलग बात है कि ये गीत किसी एक राग पर आधारित है, कोशिश तो हम करेंगे उसे जानने की। तो आज का हमारा टेक्स्ट है कि आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसे गाने जिसमें भाव या मूड एक जैसा है, ऐसे गीत लेकर आए हैं। ऐसे गीत जो सुनने में एक जैसे लगेंगे, हाँ, और शास्त्रीय दृष्टि से भी वैसे उनका राग एक ही है। ऐसे गीत जो एक ही मधुर धुन से प्रेरित हैं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस मधुर और सदाबहार राग पर कई बेहतरीन गीत बने हैं जो आपको बिल्कुल एक जैसा ही अनुभव कराएंगे। इन सभी गानों को इस कार्यक्रम में एक मधुर माला की तरह पिरोया गया है। तो बताइए कौन से हैं वो गीत, और आज हमने एक बार फिर आपके लिए कुछ शब्द जोड़े हैं कि इन गानों में ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, ताकि आपको कुछ आसानी हो जाए उन गानों को ढूंढने की, है ना, उस राग को पहचानने की। अगर आप में से हमारे श्रोता जो शास्त्रीय रागों के ज्ञाता हैं, तो आज के शब्द हैं हवाएं, दिल, कहा था, तमन्ना, महका, जरूरत, नगमा, अगर, किनारे और मजबूर। और यकीनन हमारे श्रोता बहुत बहुत बहुत होशियार हैं, क्योंकि उन्होंने, बहुत सारे ऐसे श्रोताओं ने इस बात का जिक्र किया है कि भाई आज तो ये गाने ये हैं, सारे गाने सही लिख दिए हैं हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, और कई श्रोताओं ने इन्हें जानने की कोशिश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार अलग अलग फिल्मों के गीत सुनते हुए अचानक एहसास होता है कि इनके बोल, गायक, संगीतकार और समय भले ही अलग हों, पर इनकी मूल धुन या मीटर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग फिल्मों, अलग अलग गीतकारों और संगीतकारों की रचनाएं, लेकिन इन्हें एक अदृश्य संगीत सूत्र जोड़ता है। यही भारतीय फिल्म संगीत की खूबसूरती है। एक कालजयी धुन समय के साथ नए शब्द पहनती है, नए स्वर पाती है, नए भाव ग्रहण करती है, फिर भी अपनी आत्मा को सुरक्षित रखती है। एक सुंदर धुन समय की सीमाओं को पार कर कई पीढ़ियों तक जीवित रहती है। आज के सभी गीत, आपने उस राग का जिक्र भी कर दिया है, लेकिन आपने बहुत सुंदर इबारत लिखी है, जो बात हम कहना चाहते थे वो आपने पूरी तरह से कह दी है। तो चलते हैं इस सुरीले सफर पर।

यह आवाज लता मंगेशकर की थी। फिल्म नौजवान के लिए गीतकार साहिल लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के सभी गाने मुख्य रूप से अलग अलग रागों पर आधारित हैं। आपने कुछ रागों का जिक्र किया है। आप लिखते हैं कि कुछ संगीतकारों के अनुसार राग पहाड़ी, राग देश के प्रभाव वाली धुनों से प्रेरित हो सकते हैं आज के गीत। और आपने आगे लिखा है कि राग बिहाग भारतीय शास्त्रीय संगीत यानी हिंदुस्तानी संगीत का एक अत्यंत मधुर, लोकप्रिय और श्रृंगार रस प्रधान राग है। इस राग की मुख्य विशेषताएं आपने लिखी हैं कि गंभीर और शांत प्रकृति का है और श्रोताओं को एक आध्यात्मिक और कोमल चांदनी जैसी शांति का अनुभव कराते हैं ये राग। जी हाँ, लेकिन आज के गाने तो राग बिहाग पर आधारित नहीं है और न ही हमारा उद्देश्य है कि हम किसी राग पर हमारे श्रोताओं से जानना चाहें, क्योंकि वही बात कि हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मों का चयन नहीं कर सकता है। हमारा उद्देश्य था कि आज के गीत जो हमें एक सी अनुभूति दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने शास्त्रीय रागों का जिक्र किया है जिसका आज हम यहाँ पर पठन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ताकि अच्छा लगेगा आज का ये कार्यक्रम कि शास्त्रीय राग कौन राग आपको प्रभावित करता है और किस तरह से प्रभावित करता है ये भी जानने का अवसर हमें मिलेगा।

एक श्रोता लिखते हैं कि आज आप पहली लेकर आए हैं जिसमें दो बातें उभर कर सामने आई हैं। सिर्फ शब्दों के आधार पर गाने चुने और वो एक ही भाव और मूड के हों तो शायद राग अलग अलग हैं, लेकिन अगर सिर्फ शास्त्रीय राग को आधार बनाएं तो दिए गए शब्दों में कुछ गाने शायद नहीं है। हाँ, अंतरे में कहीं एक दो शब्द हैं, इसलिए अगर एक ही जैसी धुन पर गानों और एक ही राग की बातें तो ठंडी हवाएं, और आपने कुछ गानों का जिक्र किया है और बहुत सही किया है। हाँ, लेकिन आप जिस राग का जिक्र कर रहे हैं वो शायद न हो। आप लिखते हैं कि आज मेरे हिसाब से तो राग यमन ही चुना होगा और मैं ऐसा मानता हूं, और इसी राग पर कई गाने रखे गए हैं, और आपने आगे भी लिखा है कि कुछ राग पहाड़ी पर भी आधारित हो सकते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गीतों का किसी न किसी राग से क्या नाता, उसके बारे में जानकारी आज के कार्यक्रम में क्या हमें मिलेगी। वैसे कोई भी गीत हो वो फिल्मों में उस दृश्य पर बनाया जाता है और वो गीत किसी राग पे आधारित ही बनेगा। ये राग कौन से हैं ये हमारे कई गुणी रेडियो श्रोता ही जानते हैं। वैसे आज के गीतों को आपने भी किसी राग का जिक्र किया है उस पर ज्यादा संगीतबद्ध किया हुआ लगता है, पर मुझे पक्का पता नहीं। वैसे मैंने सभी गीतों की लिस्ट भी भेज दी है, देखें कितने गीत मेरी लिस्ट के बचते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये, और हमने जो आपको शब्द दिए उन शब्दों के आधार पर तो हम सिर्फ शास्त्रीय रागों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ गीत अपने अस्तित्व को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो सिर्फ किसी का लिखा या किसी का लयबद्ध गीत ही नहीं रह जाता, वे दशकों तक अपने सुनने वालों के हृदय में बस जाते हैं। जैसे कि आज के भारत के गीत जिनके बोल तो अलग हैं मगर धुन कमोबेश एक सी है। अतीत की परछाई को टटोलें तो और न जाने कितने ऐसे गीत कहीं न कहीं सांस ले रहे होंगे, यानी उमड़ रहे होंगे। मन का आंगन भीग रहा है और मैं सोच रही हूं, क्या कभी ऐसा भी कोई वक्त था जब मेरे साथ ये गीत नहीं थे? तो एक ही जवाब आता है, गीत चाहे कोई भी हो, ये गीत ही हमारे मित्र हैं, सहोदर हैं। इन गीतों ने ही हर उदासी को मुस्कान में और अवसाद को हौसले में बदला है, जैसे कि ये गीत। आपने कुछ गीतों का जिक्र भी किया है, बिल्कुल सही कहा आपने, बस उन्हीं गीतों को आज हम लेकर आए हैं। तो अभी आपने जो गीत सुना था फिल्म नौजवान से, उसको ध्यान में रखिए और सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत। आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल वैसा ही तो है ये गीत।

जी, तो अभी आपने सुना ये गीत, फिल्म का नाम था चांदनी चौक। हमारे श्रोताओं को बताना है कि इस गीत को आवाज किसने दी थी और गीतकार संगीतकार के नाम भी अगर आप

हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का ये सुरीला सफर थोड़ा कठिन लग रहा है। कठिन नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। आंखों को बंद कीजिए, भीतर सांस खींचिए और पता लगाइए कि क्या जो मुझे लगा वो आपको भी लग रहा है कि हाँ, ये गीत सुनने में एक ही तरह के तो लग रहे हैं, है ना? वही भाव, वही उसी तरह का माहौल। तो अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे तो आज का ये सफर आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि राग की पहचान करना तो मुश्किल नहीं है, हवाएं और दिल जैसे शब्दों से ही पता चल जाता है कि आज का कार्यक्रम किस राग पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने अंदाज में अव्वल अनुसंधानिक अभिनव प्रयास की एक और अनुपम श्रृंखला स्वागत योग्य और सराहनीय है। राग रागिनी के तिलस्मी सम्मोहन से समरसता संभाव युक्त गीत संगीत आधारित कार्यक्रम कुछ जटिल मगर संभाव्यतापूर्ण है। नई दिशा दर्शन कराती सुरीला सफर का रोमांच आज संभवतः अपनी चरम पर रहेगा, इंतजार है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। और आगे आप लिखते हैं कि समानता वाले संभावित गीत आपने लिखे भी हैं और बहुत गीत आपके सही जा रहे हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम को अंत तक और आपको पता लगेगा कि जो आपने सोचा ठीक वही हमने भी सोचा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गाने का कोई भी हो इबारत पढ़कर लगता है कि वाकई में आज तो सुरीला सफर सुरीला होगा। मधुर और सदाबहार गीतों के माध्यम से आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक का सफर सुरीला तो होगा ही। तो मिलते हैं दोपहर 1 बजे से। अगला गीत हम आपको सुनवाएं, उससे पहले हमारे दो सवाल।

जी, तो आपको बताना है कि ऐसे और कौन से दो गीत जो आपको याद है या आपको महसूस हुए, उन गानों का जिक्र करिए, सिर्फ दो गानों का, जिसमें आपको लगेगा कि ये दोनों गीत जब जब मैंने सुने मुझे लगा कि ये दोनों गीत एक से हैं। और हमारा दूसरा सवाल, अगर आप शास्त्रीय संगीत का ज्ञान रखते हैं, हमारे जो श्रोता, जैसा कि हमें हमारा फेसबुक पेज देखने पर, पढ़ने पर पता चल रहा है, तो आपको कौन सा शास्त्रीय राग पर आधारित गाया हुआ गीत ज्यादा प्रभावित करता है? अपनी अपनी पसंद के राग होते हैं ना, तो आपको किस राग ने ज्यादा प्रभावित किया, ये वही लिखें जिन्हें शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गानों का थोड़ा सा भी ज्ञान है। सवाल एक बार फिर से कि आप बताइए ऐसे दो गीत जो लगभग एक जैसा ही गाए हुए आपको महसूस होते हैं। और हाँ, हमारे जो शास्त्रीय संगीत के रसिक श्रोता हैं, जिन्हें शास्त्रीय संगीत का ज्ञान है या उन्होंने शास्त्रीय गायन सीखा हुआ है, तो बताइए आपको किस राग पर आधारित फिल्मी गीत ज्यादा पसंद आए। और हाँ, हमने आपसे पूछा था कि फिल्म चांदनी चौक में जो गीत गाया गया है वो किस गायिका की आवाज है और संगीतकार और गीतकार कौन है। और अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, मदन मोहन का संगीत है, राजा मेहदी अली खान के बोल हैं, मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम आपकी परछाइयां, ये गीत भी हमें थोड़ा थोड़ा वैसा ही महसूस होता है जैसे इससे पहले के दो गीत आपने सुने थे। यही

जी, तो आज फेसबुक पेज पर जब हम नजर दौड़ा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आज का ये सफर थोड़ा सा कठिन हो गया है हमारे श्रोताओं के लिए, जबकि कठिन नहीं है। भाई बड़ा रुक रुक कर चल रहे हैं आप लोग तो। हमने तो आपसे वादा लिया था कि सुजिला सफर में आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे और दुख तकलीफें जो भी कुछ आएगा उसे महसूस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन लगता है हमारे श्रोता थोड़ा सा थक गए हैं, है ना? थके नहीं, हमारे साथ चलते रहिए और अंततः हमें मंजिल मिलेगी जरूर। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सभी को हमारा नमस्कार। आज आप कुछ अलग ही थीम लेकर आई हैं, राग रागिनी का तो हमें नहीं पता, हमारे जो गाने हमें याद आएंगे उन्हें हम लिख भेजेंगे। हाँ तो लिख भेजिए ना कि आपको ऐसे कौन से गीत याद आ रहे हैं जब आपने इन्हें जब जब सुना तो लगे आपको ऐसा लगा कि अरे ये गीत तो हमने पहले भी सुना था और ये गीत भी वैसा ही लग रहा है। तो इस तरह के भाव कई बार हमें लगता है। हम हालांकि शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता नहीं हो सकते, लेकिन एक श्रोता मात्र होते हुए भी हम ऐसा महसूस तो कर ही सकते हैं ना। तो उन दो गानों का जिक्र आपको करना है और जो शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता हैं हमारे श्रोता वो तो हमें बता सकते हैं कि उन्हें किस राग पर आधारित कौन सा गीत ज्यादा पसंद आता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमें राग कभी समझ ही नहीं आए और न ही कभी हमने समझने की कोशिश की, बस हमने गीतों से प्यार किया, फिर राग कोई भी हो, जो गीत हमें अच्छा लगा उसे गाया गुनगुनाया और आज तक गीतों के साथ हैं। कुछ गीतों से बहुत कुछ सीखा है और कुछ गीतों ने हमें सहारा भी दिया है। कुछ गीतों को सुनकर हमने बहुत अच्छे से काम भी किए और हाँ कुछ गीत उदास भी कर गई, पर फिर कुछ गीतों ने जीवन के सच्चे राज भी दिखाए जिनके साथ रहकर हमारा इतना सफर कट गया, बस आगे का सफर भी अच्छा बीते इन गीतों को गुनगुनाते हुए। कितनी बढ़िया बात लिखी है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और वही हम भी आपसे चाहते हैं कि एक श्रोता मात्र बनकर आप उन गीतों को याद कीजिए जो कभी आपको लगे होंगे कि ये गीत हमें एक जैसे लगे। बस इतना ही तो सोचना है कि दो गीत कौन से ऐसे दो गीत थे जो हमें एक जैसे महसूस हुए, है ना? वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का जो शब्द है वो SD बर्मन साहब की धुनों

से प्रेरित होकर लग रहा है ठंडी हवाएं, और फिल्म के गीतों से मिलते जुलते सभी गीतों की धुन भी हम आज सुनने वाले हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हवाएं शब्द पर हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन और सदाबहार गीत बने हैं जो प्यार, उदासी और मौसम के अलग अलग रंगों को दर्शाते हैं। यहाँ हवाएं या हवा से जुड़े कुछ सबसे लोकप्रिय गानों की सूची भी आपने दी है, और आपने हमारे हर शब्द पर बहुत कुछ लिखा है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हर शब्द पर अपनी राय हमें लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पुराने गीत सिर्फ कानों में नहीं गूंजते, वे यादों में महकते हैं, और जब उन्हें सुनने वाले दिल से जुड़े हों तो हर धुन अपनी सी लगने लगती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हम किसी गाने से दिल से जुड़ जाते हैं तो हर गीत हमें अपना सा लगने लगता है। चलिए, ये जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं वो भी आपको अपना सा ही लगता है। याद आया?

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था ममता। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे रोशन। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज एक बात जरूर कहूंगा कि जब रागों की बात करते हैं, खासकर फिल्म संगीत में, तो शुद्ध राग पूरे गाने में शायद ही बजाया गया होता है, क्योंकि कभी कभी कहानी के भावों को विस्तृत रूप से उभारने के लिए स्वरों में फेरबदल भी की जाती है, यानी मिश्रित रागों की धुनें ज्यादा सुनाई देती हैं ताकि गीत अपने भाव को अच्छी तरह से दर्शकों के दिल तक पहुंचा सके। कहने का मतलब है कि रहे न रहे महका करेंगे गीत की शुरुआत पहाड़ी के स्वर के साथ हुई, लेकिन अंतरे में कहीं यमन राग नजर आ रहा है जो रोशन जी का सबसे मनपसंद राग था। आज रागों की अच्छी व्याख्या सभी मित्रों ने की है, धन्यवाद सभी मित्रों का। बिल्कुल, हम तो आपका भी धन्यवाद करेंगे कि आपने अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से कहा है, जो हमारे वो श्रोता इस बात को समझ पाएंगे जिन्हें शास्त्रीय रागों का ज्ञान नहीं है या उनमें उनका क्या कहना चाहिए, उत्साह नहीं है या शौक नहीं है या नहीं जानते वो उसके बारे में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि कोई भी गीत जो है एक ही राग पर आधारित हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रागों को मिलाकर भी कई बार इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपने बता भी दिया है कि फिल्म चांदनी चौक के बारे में आपने पूछा था कि गीतकार और संगीतकार कौन है, तो मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं रोशन साहब। बिल्कुल सही लिखा आपने, और ये गाना स्मृति विश्वास पर फिल्माया गया था। और आपने ये नहीं बताया कि आवाज किसकी थी, गायिका का नाम भी हमें बताइए तो आपका जवाब पूरा हो जाएगा। वहीं आप लिखते हैं कि दरअसल आज के सारे गाने एक राग पर नहीं है बल्कि एक मीटर पर आधारित है, और आपने किसी गाने का जिक्र भी इस सूची में शामिल किया है। आप लिखते हैं कि आपका पसंदीदा राग, यानी कि मेरा पसंदीदा राग है कलावती, बागेश्री, शंकरा, देस और मालकोस। अच्छा, ये राग आपको बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया कि आप इस सफर में हमारे साथ हैं, जो जैसा हमारे श्रोता कह रहे हैं कि थोड़ा सा कठिन है आज का ये सफर, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन की आंखों से जब इस कार्यक्रम को महसूस करेंगे तो शायद आपको भी सफर अच्छा लगेगा। एक श्रोता लिखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम का हमें इंतजार था और अब वक्त यूं ही बीत जाएगा। सुहाना मौसम है, शुभ दोपहर है, साथ ही आपका कार्यक्रम चल रहा है उनके साथ, यानी मेरे साथ मंदाकिनी दीदी के साथ। प्रस्तुति सुंदर, कर्ण मधुर, मनमोहक है और हमारे दिल को ठंडक पहुंचा रही है, ऐसा हम मानते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम हम सुनेंगे अंत तक, ऐसा हम वादा करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो हमारे यहाँ सचमुच ठंडी हवाएं चल रही हैं जो बादलों को उड़ाकर ले जा रही हैं। आइए सुनते हैं इसी क्रम में अगला गीत।

तो देखा आपने संगीत का असर। हमारी एक श्रोता पूछ रही है कि भाई ये किस फिल्म का गीत है जो अभी आप सुनवा रही हैं? बिल्कुल रहे न रहे हम वाली गीत जैसी धुन का है, जैसा गीत है। हमने आपसे यही तो कहा ना कि कई बार जब हम बहुत ही गहराई से किसी गीत को सुनते हैं, हो सकता है हम उस मीटर को ना समझते हो कि ये गीत किस मीटर में गाया गया है, लेकिन जब हम उसे बहुत गहराई से सुनते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो उस गाने की धुन जैसा ही है जैसा कि अभी हमारी श्रोता ने पूछा। तो हम आपको बता दें, ये आशा भोसले की आवाज में फिल्म नरम गरम से हमने लिया था ये गीत। गुलजार साहब के बोल थे और राहुल देव बर्मन की धुन थी। हमारे श्रोता ने लिखा है कि दादा बर्मन ने 1951 में फिल्म नौजवान में एक गीत रचा था, ठंडी हवाएं लहरा के आई। लता मंगेशकर की आवाज थी। साहिर साहब के बोलते इस गीत के माधुरी से प्रभावित होकर दादा के समकालीन संगीतकार रोशन ने 1954 में फिल्म चांदनी चौक में गीत रचा, तेरा दिल कहाँ है। इसमें आवाज आशा भोसले की है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो गायिका आशा भोसले हैं जिनकी आवाज हम सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और रोशन की धुन तो थे ही, लेकिन दादा का गाना संगीतकार मदन मोहन को इतना भाया था कि उन्होंने 1964 में फिल्म आपकी परछाइयां फिल्म में इसका मुखड़ा इस्तेमाल किया। यही है तमन्ना, जिसका गीत अभी आपने सुनवाया था, तेरे घर के सामने मेरी जान जाए। कहानी यही खत्म नहीं हुई, संगीतकार रोशन साहब ने इसी धुन को फिर इस्तेमाल किया 1966 की फिल्म ममता में और लता मंगेशकर से गावाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना रहे ना रहे हम महका करेंगे। अब ये गीत इतनी प्रसिद्धि देखने के बाद पिताजी की आरडी बर्मन ने भी इस धुन को आधार बनाकर कुछ गीत बनाए और 1981 में आशा भोसले का गाया फिल्म नरम गरम का गाना हमें रास्तों की जरूरत नहीं, जो कि अभी आपने सुनवाया, इसी धुन का एक बार और इस्तेमाल किया गया। और 1983 में फिल्म अगर तुम न होते में भी इसी को फिर से उन्होंने दोहराया। बात और आगे बढ़ी और आपने इसी तरह से बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी गहराई से इस बात को रखा कि आज जो कार्यक्रम हम लेकर आए हैं वाकई इसी बात पर आधारित है कि किस तरह से गीतों को रचा गया और किस तरह से जब संगीत प्रेमी श्रोता उन्हें सुनते रहे तो उन्हें लगा कि अरे ये उस गाने की जैसा ही गाना है। बस यही आज के कार्यक्रम की असली थीम है। तो आइए बढ़ते हैं आगे।

वही जो हमारे श्रोता भी लिख रहे थे कि आगे अगर तुम न होते इस फिल्म में भी इसी बात को दोहराया गया, इसी मीटर को दोहराया गया। किशोर कुमार की आवाज है, गुलशन बावरा की रचना है और पंचम दा की धुन है।

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था अगर तुम न होते। और मैं हमारे उसी श्रोता की बात को आगे भी रखना चाहूंगी जिन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रख दी है इस कार्यक्रम के लिए। यूं समझिए कि ये पूरा कार्यक्रम उनकी लिखी इस इबारत में आ गया है। बिल्कुल, वो लिखते हैं कि अगर तुम न होते 1983 की फिल्म थी और हमें और जीने की चाहत न होती बात और आगे बढ़ी। और 1985 आर डी बर्मन ने इसी धुन पर बनाए एक और सुपरहिट गाना फिल्म सागर का लिया। और फिर आप लिखते हैं कि आर डी बर्मन के संगीत साम्राज्य के नौ रत्नों में से एक बासु चक्रवर्ती साहब ने भी इस धुन के नोटेशन पे थोड़ा हेर फेर कर 1992 की फिल्म नरगिस में जगजीत सिंह साहब से दो गाने गवाए थे, कहा था जो तुमने और दूसरा था दोनों के दिल हैं। और दोनों को ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि किस तरह से ये गाने आपस में मेल खाते हैं। मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से अपनी बात हम तक पहुंचा दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं, अच्छा अब हमारे सवालों के जवाब आप देने लग गए हैं। आप लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मेरी तमन्नाओं की तकरीर और तुम अगर मुझको ना चाहो, ये गीत आपको एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ पर हमें शास्त्रीय रागों पर आधारित एक जैसे गीत नहीं चुनने हैं, क्योंकि वही बात की हर श्रोता शास्त्रीय रागों पर आधारित गीतों को समझने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शास्त्रीय ज्ञान हो। हाँ, वो क्या महसूस करता है एक श्रोता के तौर पर, एक श्रोता के रूप में, वही काफी है। तो आपको कौन से गीत एक से लगते हैं वही हम जानना चाह रहे थे। एक श्रोता लिखते हैं कि ये किस फिल्म का गीत था, बिल्कुल रहे ना रहे हम जैसी धुन, अरे आपने अभी तो सुना था। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय थोड़ा कठिन है पर आज गीत बहुत सुंदर बज रहे हैं। तो भाई सफर थोड़ा कठिन भी तो अच्छा लगता है ना, लेकिन आपको मेरे साथ अंत तक, हमारे साथ अंत तक चलना है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि रागों का ज्ञान हो ऐसा नहीं है, रागों का ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो गाने शास्त्रीय तरीके से गाए जाते हैं वो बहुत पसंद है, जैसे कि झनक झनक

पूरी बाजे पाई लिया। अच्छा, ये गीत आपको बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि चांदनी चौक 1954 की फिल्म, ये गाना भी नौजवान वाले मीटर से ही बंदा है। गीत शैलेंद्र, संगीत रोशन, स्वर आशा भोसले का था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म चांदनी चौक के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखा था, संगीतकार रोशन साहब थे। गीतकार शैलेंद्र नहीं थे भाई, मजरू साहब थे और संगीतकार रोशन थे और आवाज आशा भोसले की थी। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे राग शिवरंजनी ज्यादा पसंद है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने ऐसे कई गाने विविध भारती पर सुने जो एक जैसे हैं पर अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं ना, वही काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गिटार के साथ पियानो का प्रिल्यूड राग पहाड़ी है चांदनी चौक। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, एसडी बर्मन के नौजवान के गाने से जबरदस्त शुरुआत हुई और सभी की पसंद का सम्मान किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसा ही एक और गाना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ सुनते हैं, आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम सागर। अब थोड़ा सफर हल्का हुआ ना, कठिन नहीं है ना?

हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मैं शास्त्रीय रागों के मामले में अनाड़ी जरूर हूँ, कोई बात नहीं, परंतु मैं सच कह रहा हूँ कि महकते हुए अच्छे श्रोता की तरह सुरीला सफर प्रोग्राम में आप द्वारा सुनाए जा रहे अनमोल गीतों का मैं आनंद जरूर ले रहा हूँ। वही एक श्रोता लिखते हैं कि इतनी समानता सब धुनों में, मजे की बात है, सबकी खुशबू अलग अलग है, कमाल है हमारे भारतीय संगीत को और सभी गाने बहुत ही बेहतरीन हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कुल मिलाकर कार्यक्रम का विषय वस्तु संग ताल मिलाकर श्रोतागण भी सक्रिय हैं और बराबर अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने अपनी पसंद के गीत लिखे हैं कि वो उन्हें एक जैसा लगता है, आज मौसम की मस्ती में या दो बदन प्यार की आग में, इस तरह के गीत उन्हें पसंद आते हैं और वो एक जैसे उन्हें महसूस होते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीले सफर का विशेष आकर्षण है फिल्म ममता का अमर गीत रहे न रहे हम। संगीतकार रोशन ने इस गीत में राग पहाड़ी के स्वरों का अत्यंत सटीक, संतुलित और सुरुचिपूर्ण प्रयोग किया। यही कारण है कि यह गीत केवल अपनी मधुर धुन के लिए नहीं बल्कि राग पहाड़ी की आत्मा को सहजता से अभिव्यक्त करने के लिए हिंदी फिल्म संगीत की अमूल्य धरोहर बन गया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ए मेरे हमसफर ए मेरी जान ने से मिलता जुलता गाना है हसीना जाने जा जाने मन, ये गाने हमें सिमिलर लगते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और गुरुदत्त की फिल्म प्यासा में गजल तंग आ चुके हैं कश्मकशे जिंदगी से, और जॉय मुखर्जी की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का की गजल हमको तुम्हारे इश्क ने, ये हमें अच्छे लगते हैं और सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हवाओं पर तो बहुत सारे गीत बने हैं और क्या ही अच्छा हो जब आप हवाओं पर कुछ कार्यक्रम पेश करें। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत कुछ अलग तरह की दी है, इसलिए पहले मुझे घर की बनी हुई अदरक इलायची वाली चाय ऑफिस में पीनी होगी ताकि मेरे दिमाग का केमिकल लोचा एक्टिव हो जाए और मैं सही कमेंट्स लिख सकूं, क्योंकि रागों के मामले में मैं अनाड़ी हूं। मैं एक श्रोता ने लिखा है कि सौंदर्य वही है जहां प्रतीक्षण नवीनता हो। वास्तव में चित्रपट संगीत का क्षेत्र बहुत विशाल है क्योंकि इसकी रचना शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक संगीत और पाश्चात्य संगीत के आधार पर होती रही है। संगीत निर्देशकों ने श्रोताओं की रुचि को ऐसे संगीत का सृजन कर छोड़ा है जो कहीं पर पूर्ण शास्त्रीय संगीत में रचे हैं, कुछ उपशास्त्रीय तो कुछ लोक संगीत में, और इनमें कहीं कहीं पर प्रयोग के तौर पर पार्श्व संगीत और गौण धुन का बेहतरीन संयोजन किया गया है। ध्यान रहे कि गौण धुन मुख्य धुन को दबाती नहीं है बल्कि एक नया संगीतमय रंग और गहराई जोड़कर उसे और आकर्षक बना देती है। कितनी सुंदर और शानदार बात आपने लिखी है। और अब इस कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम प्यार का तराना। इस गीत के बारे में आपको मालूम था?

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म प्यार का तराना का ये गीत सुना और आज का ही कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप समझ गए आज के इस कार्यक्रम का मर्म क्या था। जी हाँ, राग पहाड़ी से प्रभावित होकर अलग अलग संगीतकारों ने अपने अपने जो गीत रचे और उसमें अलग अलग शास्त्रीय रागों को पिरोकर एक ही मीटर में जो संगीत हम तक पहुंचाया, उसी को आज आप तक लाना हमारा उद्देश्य था। आपको आज का ही कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। अब आपको ये कठिन सफर आज का कठिन नहीं लगा होगा। मुझे लगता है कि अब सफर के आखिरी सोपान पर हम मिल रहे हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि हमने एक दूसरे का साथ दिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं, यानी सफर से इजाजत। फिर मिलूंगी, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी।

वंदे मातरम, इन शब्दों के प्रचार में तत्कालीन समाचार पत्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण पूरे देश में चल रही स्वाधीनता की लड़ाई वंदे मातरम शब्दों पर केंद्रित

0: चलो।
1: रोजमर्रा की इस्तेमाल की वस्तुओं पर भी वंदे मातरम शब्द दिखने लगे, राष्ट्र ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द आ गए और आम लोगों के मन में स्वतंत्रता की ज्योति जलाने वाले समाचार पत्र भी इसमें पीछे नहीं थे।

0: भारत की कई भाषाओं में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र या साप्ताहिक या मासिक पत्रिकाएं निकलने लगीं और इसकी शुरुआत स्वाभाविक रूप से बंगाल में हुई। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमत तैयार करने का सबसे महत्वपूर्ण काम स्वदेशी अखबारों ने किया। युगांतर, अमृत बाजार, संध्या जैसे पत्रों ने अत्यंत कड़े और उग्र शब्दों में सरकार की आलोचना करते हुए हो रहे दमन तथा अत्याचारों का विवरण आम जनता तक पहुंचाया। वंदे मातरम में दश प्रहरण धारिणी यानी 10 शस्त्र धारण करने वाली दुर्गा का वर्णन करते हुए भारत माता को वाणी विद्या दायिनी भी कहा गया है। उसी सरस्वती की लेखनी इस लड़ाई में एक शस्त्र की तरह उतरी।
1: अमृत बाजार के मोतीलाल घोष और युगांतर के बारिंद्र कुमार घोष उग्र विचारों वाले राष्ट्रभक्त थे। उनके समाचार पत्रों पर पाबंदी और मुकदमे की तलवार हमेशा लटकी रहती थी, फिर भी उन्होंने अपने शब्दों की धार कम नहीं की। वंदे मातरम शब्दों को उन्होंने लोकप्रिय तो किया ही, साथ ही उसके आशय को लोगों के मन में बसाकर उसे आचरण में लाने के लिए दिल से प्रयास भी किए। अप्रैल 1906 के युगांतर के अंक में संपादक लिखते हैं,
0: रक्त में समा चुके स्वतंत्रता के बीज को कोई भी शक्ति उखाड़ नहीं सकती। आज का धर्म है शहादत, कल का धर्म होगा विजय। शहादत बलिदान आवश्यक है ही, पर वो शेर के सामने बकरी द्वारा किया गया बलिदान ना हो।
1: और उसी 11 नवंबर 1906 के अंक में लिखते हैं,
0: जैसे को तैसा व्यवहार करो, घूसे का प्रहार हो तो लात मारो, तभी तुम्हारा पौरुष दिखेगा। मृत्यु से मत डरो, उस समय होठों पर वंदे मातरम का नारा ही जीवन संगीत बनने दो।
1: अप्रैल के संध्या के अंक में लिखा गया,
0: शांत रहना राष्ट्रीय आत्मा का अपमान है, अपमान का बदला प्रतिशोध लेने से ही होता है।
1: 26 मार्च 1907 को युगांतर के पत्रकार लिखते हैं,
0: धूल में पड़ी फटे चिथड़े पहनी हुई मां को देखो, उसके आंसू कौन पोछेगा? उसके अपमान का बदला लेने सबसे पहले कौन आगे आएगा? कर्तव्य का मार्ग स्पष्ट है, युद्ध निकट आ गया है, विजय मिलेगी या स्वर्ग मिलेगा? हे वीरों, जल्दी करो, गति दोगुनी करो, मां के वैभव के लिए दान करने आगे आओ। गीता में कहा है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम।
1: संध्या के 15 मई

0: अंक में छपा ये लेख बंकिम चंद्र जी के आनंद मठ के एक संवाद से मिलता जुलता है। एक नवंबर के दैनिक हितवादी के अंक में लिखा गया,
1: युद्ध के नगाड़े बजने दो, माँ को रक्त स्नान कराओ, शत्रु का हृदय कांप उठेगा।
0: युगांतर के एक और अंक में प्रखर शब्दों में आह्वान किया गया था,
1: वंदे मातरम की घोषणा ने शत्रु का धैर्य और सामर्थ्य नष्ट कर दिया है। देखो, माँ के मुख पर विजय की मुस्कान है, वो हमें अभय दे रही है, दानवों का नाश करने के लिए वो तैयार हो गई है। देशभक्तों, तैयार हो जाओ।

0: वंदे मातरम ये अखबार तो नाम से ही खुलेआम क्रांतिकारी कार्य का मुखपत्र था। बंग भंग विरोधी आंदोलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तरह बिपिन चंद्र पाल भी एक महत्वपूर्ण नेता थे। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के आग्रह पर बिपिन चंद्र पाल ने नए शुरू हो रहे वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का संपादक पद स्वीकार किया। उस समय अरविंद घोष बड़ौदा में सयाजी राव गायकवाड़ के यहाँ नौकरी कर रहे थे। अगस्त 1906 में वे भी कलकत्ता लौट आए और राजनीति में भाग लेने लगे। वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने के लिए क्रांतिकारियों के नेता हरिदास हल्दर ने 500 रुपए दिए थे। राजा सुबोध चंद्र मलिक भी नियमित रूप से आर्थिक सहायता करते थे।
1: वंदे मातरम साप्ताहिक पत्रिका का आदर्श वाक्य था भारत भारतीयों के लिए, परंतु दो ही महीनों में बिपिन चंद्र पाल के वंदे मातरम के संचालकों से मतभेद हो गए और उसके बाद श्री अरविंद घोष संपादक बने। संध्या और युगांतर इन दो अखबारों के बाद वंदे मातरम यह पत्र शुरू हुआ और इन दो समाचार पत्रों की तरह ही वंदे मातरम ने भी समाज के मन में बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति पैदा की। श्री अरविंद संपादक बने और वंदे मातरम के लेखन में पैनापन आ गया, एक धार सी आ गई। सरकार की ऐसे अखबारों की सामग्री पर बहुत बारीकी से नजर रहती थी, इसलिए श्री अरविंद इतनी सावधानी से लेख लिखते थे कि कानूनी तौर पर सरकार उन्हें फंसा नहीं सकती थी। फिर भी उस सामग्री में राष्ट्रभक्ति और युवाओं के लिए आवाहन अत्यंत स्पष्ट शब्दों में किया जाता था। वंदे मातरम के इस मिले हुए अस्त्र का सटीक उपयोग कैसे करना है, ये श्री अरविंद ने इस समाचार पत्र के लेखों द्वारा जनता को दिखा दिया था। श्री अरविंद उस समय युवाओं के क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रसिद्ध थे। बड़ौदा के समय में एक उत्तम प्रोफेसर के रूप में विख्यात थे। वे उत्तम कवि भी थे। केसरी के लेखों द्वारा समाज के मन पर हुए प्रभाव को वे जानते थे। तिलक की तरह ही अत्यंत विस्फोटक भाषा में उन्होंने वंदे मातरम में लेख लिखना शुरू किया। केसरी में तिलक के अग्र लेखों की तरह ही श्री अरविंद के वंदे मातरम के लेख भारतीय पत्रकारिता साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आनंद मठ का पहला अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने शुरू किया था, बाद में उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष ने उसे पूरा किया। वंदे मातरम गीत के श्री अरविंद द्वारा किए गए दो अंग्रेजी अनुवाद प्रसिद्ध है। ये अनुवाद वंदे मातरम के सर्वोत्तम अनुवादों में गिने जाते हैं।
2: Mother of might, I bow to thee, rich with thy herring streams, bright with thy orchard gleams, cool with thy winds of delight, dark fields waving, mother of might, mother free, glory of midnight dreams, over thy branches and lordly streams, glad in thy blossoming trees, mother.
3: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम।

0: वेदों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की ये थी 36वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण वंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला,
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00।
2: जय घोष वंदे मातरम।
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर

0: ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई ये यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीणा, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमेरिका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमेरिका के अल अजराफ सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमेरिका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना

0: 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण, एकीकरण, एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस, बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र, एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patelji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश चोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ. शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
3: तो 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपमंडलीय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में

0: में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
1: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम आशिक, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत शंकर जयकिशन का।

और लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर के साथ मोहम्मद रफी को, फिल्म का नाम है आरती, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और धुन रोशन की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हजरत जयपुरी का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन का।

रंगोली का गीत सुनिए, इसे आवाज लता मंगेशकर ने दी है, शब्दकार शैलेंद्र हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम संगीत सम्राट तानसेन, रचना शैलेंद्र की, आर्थुन एस एन त्रिपाठी की।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गीता दत्त को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था साहिब बीबी और गुलाम। इस गीत को शकील बदायूनी ने लिखा था और धुन बनाई थी हेमंत कुमार ने। इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारतें मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारे लॉन्ड्री है, बेंगाली में है, हमारी लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गांव में हमारा मकान है
0: जी जी जी
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी 1.25 महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे वाह, तब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: हाँ,
0: अच्छा,
1: 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी, कि बारिश आपको कैसी लगती है? बारिश में आप क्या क्या और चीजें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है
0: जी। किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चे आ गया छोटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा
0: जी। और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, मेरे बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: पापा

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं क्षमा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान?
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: देखो, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ,
0: जी
1: उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा,
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की,
0: जी
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा,
1: हम लोग इसमें करते हैं, जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं,
0: जी
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं।
0: जी तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या है?
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है, तो
0: जी
1: उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त पर गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी,
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब उनको
1: बहुत
0: गिफ्ट मिलता है। और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी, और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती
1: उनको
0: हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई, उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले,
0: जी जी जी
1: फिर उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी तो फिर
1: जैसे नहीं आता है।
0: हाँ जी
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी,
0: जी
1: उसका माँ बाप नहीं थे, तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: अब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है, आँखियों के झरो के से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बस इसी तरह हमारे वेद भारती से जुड़ी रहिए। अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये वाला प्यारा सा गाना।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए।
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का,
0: जी
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं
0: क्या
1: अभी।
0: बात है।
1: जी,
0: आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब
0: जी,
1: टिमटिमा पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले?
1: जी, घूमने कहीं चले जाएं और क्या।
0: क्या बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए है?
1: जी,
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें याद है तो साझा कीजिए।
1: जी, मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ,
0: जी
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी
1: पानी में, बारिश में वहाँ पर।
0: जी
1: जी, तो अच्छा लगता था, पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को।
0: अब ये
1: जी,
0: बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, नीता जी आपको
1: जी
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का विवाह
1: जी
0: फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता
1: हाँ,
0: जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल
1: मैं
0: करती
1: तो
0: थी?
1: बारिश में भीगना और पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है।
0: जी।
1: मैं रिटायर्ड पोस्ट हूँ।

0: हूँ
1: जी,
0: गुजरात की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की बात है।
0: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई मैं।
1: जी, तो
0: सबको हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को।
1: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
0: कोई बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ।
1: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं दिल अपना और पीठ पर का गाना है, दिल अपना और पीठ खरा
1: जी, बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी,
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या-क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारिश में घर गंदा ना हो, ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करी।
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे। मेरा गांव सुल्तानपुर है।
0: जी
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे,
0: अच्छा,
1: खो खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी

0: घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट?
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना गृहिणी
1: बन
0: के।
1: ही
0: जी,
1: जाता है। हाँ
0: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया,
1: हाँ
0: है ना?
1: कुछ भी बना। हाँ
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब?
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
0: जी
1: बहू पोते
0: जी
1: पोती बच्चे।
0: क्या बात है, भरा पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
1: हाँ
0: अच्छा लगता है आपको, है ना? तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंत्री जी।
0: और बताइए, अपने
1: हाँ,
0: बारे में कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउस वाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउस वाइफ है, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियां हैं उनके लिए बहुत सम्मान
1: जी
0: है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मुझे तो बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है, ऐसा
0: जी
1: लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से, हरी
0: हाँ
1: भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम।
0: जी। और
1: और
0: बार
1: उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद हैं आपको?
1: बारिश में देखिए, पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती थी।
0: हाँ
1: और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे,
0: सही बात है। और वो
1: अब
0: अगर
1: घर में
0: क्या
1: पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर के। प्रतिमा जी, ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ, तो बस से रास्ता
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार,
0: जी जी
1: उसमें
0: जी
1: जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: रामचरितमानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं ना, बताते हैं
0: जी
1: उसकी
0: जी
1: स्टोरी,
0: जी
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है,
1: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता
0: सही बात है। उसकी
1: है ना,
0: विस्तार व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
0: तो
1: और
0: यानी
1: बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के, तो
0: जी,
1: मैं
0: और
1: सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा।
1: एक्चुअली
0: प्रतिमा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: ये पसंद मेरी मम्मी की है, स्वप्न
0: जी
1: झरे फूल से नीत चुभे शूल से, वो
0: जी
1: है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक। तो प्रतिमा जी, आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से। बहुत
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: दिनों से कोशिश कर रहे थे, जाके लगा है आपका कॉल। हाँ
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना आपने, कॉल लगाने की
1: जी,
0: कोशिश करी
1: हाँ
0: और
1: जी।
0: कॉल आपकी लगी। ये बताइए अंजू, भोपाल का कैसा मौसम?
1: बहुत बहुत
0: कि बारिश खूब हो रही है,
1: जी,
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप
1: हाँ
0: साझा
1: जी,
0: कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई। स्कूल टाइम थी, कॉलेज टाइम थी, हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है, तो
0: जी
1: मैं वहाँ पे, हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़ियाँ एक पास में जगह थी,
0: जी
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल पूरा,
0: जी
1: और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।

0: मिला।
1: क्या बात, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो

0: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है बहुत ध्यान रखने का।
1: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
0: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है और अभी आज भी वो शो बरकरार है, नहीं मतलब बचपन की फ्रेंड अभी तक हम लोग सब ग्रुप है
1: जी।
0: तो हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं पर मिलते हैं।
1: क्या
0: कभी
1: बात,
0: कभी कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है।
1: बहुत अच्छा लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
0: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है
1: जी,
0: तो म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ
1: जी।
0: मतलब पूरी फैमिली को हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था
1: जी,
0: हाई स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुँच गई थी मैं
1: जी जी जी।
0: तो बहुत खेला, मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक
1: जी
0: स्कूल पूरा कॉलेज पूरा वो खेला।
1: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है। और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
0: और
1: में।
0: भी अच्छा लगता।
1: तो अंजू जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी।
1: तो अंजू जी आज आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैंने बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं।
0: क्या बात है, तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सब सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है।
0: क्या बात है,
1: माला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाइश, हेलो सहेली
0: जी। तो ये बताइए कि और आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा देखना, ये सब चीज, रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला के फैन है?
0: कला के फैन है, क्या बात है जी। कला तो बहुत अनंत होती है, उसकी कोई सीमा नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना?
1: हाँ हाँ
0: जी। तो ये बताइए, बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत, हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से।
0: अच्छा।
1: बिना सीखे ही बहुत बनाते थे और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद।
0: क्या बात है,
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है
0: जी जी
1: तो
0: जी,
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक है आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना
0: जी,
1: यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज खिलाना पसंद करती है, आपको क्या पसंद है, क्या बनाए?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी, आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का
0: जी,
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलक मंदिर का ये प्यारा संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हमको बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: पड़ गई तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
1: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े
0: जी,
1: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी।
0: अच्छा,
1: इस तो तरह, और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
0: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
1: परिवार में मेरी सास
0: जी
1: नंदे
0: जी
1: और मेरे पति, एक बेटा।
0: भरा पूरा परिवार है। बहुत अच्छा लगा सुनकर के। और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
1: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई
0: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो बहुत
1: हाँ, ये गीत
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दे, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक।

कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002466 2, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए 2867028 8, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867028 8, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह

0: अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहां बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहां बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।
1: जिंदगी का सफर।

यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफार्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हो भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहां से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। आओ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था बल्कि

0: की एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली। क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आंखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपा है, आंखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा। मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा,
1: जिंदगी

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहाँ से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुक कर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

कल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और

उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता, कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया। कुछ लोग ताना मारते, लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता, फिर धीरे धीरे यात्रियों

और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहाँ कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहाँ की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ, यदि उस दिन वो निराशा में डूब कर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

102.7 एफएम पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। श्रोताओं, शाम के 5 बजे हैं। अब युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी।

गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज के अंक के साथ मैं हाजिर हूं आपकी रेडियो साथी रानी राजश्री। दोस्तों, रेडियो और डिजिटल मीडिया आज के समय में जन जागरूकता के सबसे प्रभावी माध्यम बन चुके हैं। तकनीक के इस दौर में जहां एक ओर डिजिटल मीडिया ने सूचनाओं के आदान प्रदान को तेज और बेहद सरल बनाया है, वहीं रेडियो आज भी अपनी विश्वसनीयता, सरल भाषा और व्यापक पहुंच के कारण लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है। दोस्तों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, मौसम, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। डिजिटल मीडिया ने जागरूकता अभियानों को नई गति प्रदान की। सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, वेब रेडियो और मोबाइल ऐप के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर लाखों लोगों तक तुरंत संदेश पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, लेकिन इसके साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि हम किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच अवश्य करें। अफवाहें और भ्रामक समाचार समाज में भ्रम और अविश्वास पैदा कर सकते हैं और एक पैनिक कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। रेडियो और डिजिटल मीडिया का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि समाज को सही दिशा दिखाना भी है। जब इन माध्यमों का उपयोग सकारात्मक सोच, जनहित और सामाजिक विकास के लिए किया जाता है तब वे परिवर्तन के सशक्त साधन बन जाते हैं। दोस्तों, इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि युवा जिम्मेदारी के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करें और रेडियो जैसे विश्वसनीय माध्यमों से जुड़कर समाज में सही संदेश पहुंचाएं, तो जागरूक नागरिकों का निर्माण संभव है। एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है और ये तभी होगा जब सूचना का प्रत्येक माध्यम सत्य, संवेदनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ कार्य करेगा। इसीलिए आइए रेडियो और डिजिटल मीडिया का उपयोग जन जागरूकता बढ़ाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए हम शुरू करें।

दोस्तों, जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते हुए इस प्रकृति के मिजाज में आप देख रहे हैं कि लगातार परिवर्तन आ रहे हैं, तो ऐसे में हम कैसे प्रकृति संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे ओजोन परत के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाकर अपना सहयोग करके हम प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं, तो चलिए इसी क्रम में वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है ओजोन परत का संरक्षण, प्रकृति का रक्षण। और वार्ताकार है अंकिता विश्वकर्मा।

दोस्तों नमस्कार, मैं अंकिता विश्वकर्मा। दोस्तों आज हम ओजोन परत के संरक्षण और पर्यावरण के संरक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। ओजोन परत का संरक्षण पर्यावरण के संरक्षण के समान ही है, क्योंकि यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर सभी जीवन की रक्षा करती है। इसका संरक्षण पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओजोन क्षरण से त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा रहता है। ओजोन परत को बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग को कम करना, वायुमान के उपयोग को सीमित करना और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को अपनाना जैसे उपाय किए जा सकते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में अपनाया गया था और किगाली संशोधन 2019 में लागू किया गया था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते रहे हैं। दोस्तों आज हम ओजोन परत क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है हमारे जीवन में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों ओजोन परत एक ढाल के समान है। ओजोन परत जो हमारे पृथ्वी से लगभग 15 से 30 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्थित है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है, जिससे हमारी त्वचा बची रहती है। दोस्तों ये ओजोन परत किस प्रकार जीवन की रक्षा करती है, आइए जानते हैं। यह हानिकारक यूवीबी विकिरण को रोककर पृथ्वी पर पौधों, मनुष्यों और अन्य जीवों के जीवन की रक्षा करती है और आँखों में होने वाले अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाती है। यदि यह ओजोन परत न रहे तो हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि वनस्पति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। यह पौधों की वृद्धि, आकार और पोषक तत्वों के वितरण को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे पौधों के रोगों और जैव भू रासायनिक चक्रों पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कि पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा और हम मनुष्यों को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे सांस लेने में तकलीफ होगी। इसलिए हमें ओजोन परत की रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि ओजोन परत के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, तो आइए जानते हैं। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का उपयोग करें, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर का उपयोग सीमित करें, वाहनों का उपयोग कम करें क्योंकि वे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, कीटनाशकों के बजाय प्राकृतिक कीट नियंत्रण समाधानों का उपयोग करें। दोस्तों अब हम पर्यावरण के रक्षण के बारे में चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पर्यावरण का रक्षण प्राकृतिक संसाधनों को बचाने, प्रदूषण कम करने और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है। इसमें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, पेड़ लगाना, ऊर्जा की बचत करना, प्लास्टिक और हानिकारक रसायनों का उपयोग करना और पुनर्चक्रण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यह सभी स्तरों पर मानव व्यवसाय, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य और हमारे दैनिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। यदि पर्यावरण ही प्रदूषित रहेगा तो हम सभी मानव जाति स्वस्थ नहीं रहेंगे। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या कर सकते हैं और किस प्रकार हमें ऊर्जा को बचाना चाहिए। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करें और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन या साइकिल का प्रयोग करें। साथ में हमें पेड़ पौधे भी अधिक से अधिक लगाने चाहिए और उनकी समय समय पर देखभाल भी करनी चाहिए, जिससे कि उनका विकास बहुत ही अच्छे से हो सके। दोस्तों हमें प्लास्टिक का उपयोग

0: ही कम से कम करना चाहिए। आप चाहें तो सूती या कपड़े के थैलों का उपयोग करें, जिससे कि हमारा वातावरण स्वस्थ बना रहे। वातावरण कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जैविक संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन को कम करने, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने, जैव विविधता को बनाए रखने, मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने में मदद करता है। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, और यह आर्थिक स्थिरता तथा सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि पर्यावरण संरक्षण के क्या-क्या महत्व हैं, ये कैसे जैविक संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण संरक्षण पारिस्थितिक तंत्र को स्वच्छ रखता है, जिससे पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों के बीच महत्वपूर्ण संतुलन बना रहता है। दोस्तों, अब हम जलवायु परिवर्तन से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। पेड़ पौधे और समुद्र जैसी प्राकृतिक प्रणालियाँ तापमान को नियंत्रित करती हैं। संरक्षण से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकता है। दोस्तों, हम कैसे जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं? धरती पर लाखों प्रजातियाँ और उनकी आवासों की रक्षा होती है, जिससे नाजुक पारिस्थितिक तंत्र सुरक्षित रहता है। दोस्तों, अब हम आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के बारे में चर्चा करेंगे। कई उद्योग जैसे कृषि, मछली पालन और पर्यटन पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। पर्यावरण सुरक्षित रहने पर ही रोजगार और आजीविका के साधन बने रहते हैं। दोस्तों, हमारे लिए यह नैतिक कर्तव्य है कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और समृद्ध पृथ्वी सौंपे, जिससे कि वे अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें। धन्यवाद।
1: दोस्तों, अभी आप वार्ता सुन रहे थे, जिसका विषय था ओजोन परत का संरक्षण, प्रकृति का रक्षण। वार्ताकार थी अंकिता विश्वकर्मा।
2: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
3: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे है पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
3: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ,
3: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: RBI कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
7: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
8: हेलो,
6: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
7: जो चाहिए वो ट्रैक सुनाइए।
6: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
7: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
6: ओनली ऑन AIR ओबरा।

जल, जंगल और जमीन प्रकृति की सबसे मूल्यवान धरोहर है। मानव जीवन का अस्तित्व इन्हीं तीन आधारों पर टिका हुआ है। दोस्तों, स्वच्छ जल जीवन देता है, जंगल हमें शुद्ध वायु, वर्षा और जैव विविधता प्रदान करते हैं, जबकि उपजाऊ भूमि हमारे भोजन और आजीविका का आधार है। यदि इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर

संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आज तेज गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं, नदियां प्रदूषित हो रही हैं, वन क्षेत्र लगातार घटते जा रहे हैं और भूमि की उर्वरता भी लगातार कम हो रही है। इसका प्रभाव जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, बढ़ते तापमान और जैव विविधता के नुकसान के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन चुनौतियों का समाधान केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं, बल्कि यह हमारी और आपकी प्रत्येक नागरिक का दायित्व है और हमारा यह कर्तव्य है कि हम जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझें, वर्षा जल संचयन को अपनाएं, पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें, साथ ही साथ प्लास्टिक का कम उपयोग करें तथा मिट्टी और जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं। किसान प्राकृतिक खेती और संतुलित संसाधन उपयोग को अपना कर भी महत्वपूर्ण योगदान अपना दे सकते हैं। दोस्तों, युवा पीढ़ी इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और समाज में पर्यावरण संरक्षण की भावना लगातार विकसित की जा रही है तथा इन छोटे छोटे प्रयासों को जन आंदोलन बनाया जा रहा है और इस तरह के प्रयास ही बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। जल, जंगल और जमीन केवल हमारी आवश्यकता नहीं बल्कि हमारी साझा जिम्मेदारी है। आइए हम सब मिलकर इस प्राकृतिक धरोहरों की रक्षा का संकल्प लें ताकि आने वाली पीढ़ियां और हमारा आज एक सुरक्षित, हरित और समृद्ध भविष्य के साथ हाथ मिला सके, उनकी ओर अग्रसर हो सके।

0: APJ अब्दुल कलाम जी का विचार है, शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। दोस्तों, ये कथन अपने शब्दों के साथ बिल्कुल सत्य साबित है और इस तरह के व्यक्तित्व को हमें अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम युववाणी से अपनी रेडियो दोस्त रानी राष्ट्रीय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण बहनों के लिए कार्यक्रम घर ने

सब बहन लोगन के राम राम। बहन लोगन, हम आप सबके अपन जलेबी भौजी आप सबके बीच अपन मने के बात साझा करे खातिर हाजिर हई। बहन लोगन, सबसे पहले तो आप सबके साथ मौसम के बदलाव और तापमान में गिरावट पर चर्चा करा कि देखें, अब गर्मी से थोड़ा राहत मिलल बा। एकरे साथ साथ बचपन के स्कूल खुल गईल, जहाँ धरती पर हरियाली दिखात बा वहीं बचपन के चेहरा पर खुशहाली दिखात बा। देखें, बचपन के चर्चा से याद आयल कि आज हम एक जगह दिवाली पर पढ़त रली कि बच्चे दो ही अच्छे, और हम सोचत रली कि कितना बुद्धिमान हुई हैं वो लोग जिनके मने में ऐसन विचार आयल हुई। और एकर एके अंकित करावल गए दीवार दीवार पर कि लोग एके पढ़ें और समझें। और देखा, सही बात बाना कि छोटा परिवार में ही सुख बा। कहल जाला ना कि छोटा परिवार सुख के आधार। एकर मतलब यह होला कि बचपन के सही लालन पालन, शिक्षा दीक्षा सही तरीके से होवेला। बहन लोगन, देखें, अगर हम समाज में व्याप्त समस्या पर चर्चा करी, बेरोजगारी के समस्या, चोरी के समस्या, गलत सोहबत के समस्या, कहे का मतलब भारत के बढ़ती जनसंख्या के जब बात होवेला तो साथ में इहो बात होवेला कि समाज में ई बढ़त जनसंख्या एकर बहुत बड़ कारण बा। अतने भर नहीं, बल्कि अगर हम प्रकृति प्रदत्त जीवन के उपयोगी साधन संसाधन के बात करी तो उहो देखें सीमित बा, और उपभोक्ता असीमित। तो सोचे कि जरूरत बा हम सब के कि उपयोगी प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण करल जाए।

और जनसंख्या पर नियंत्रण खातिर सही समाधान अपनावल जाए। आज देखा चिकित्सा विभाग द्वारा और तरह तरह के हमारे घर में आवे वाली आनम बहिन, आशा बहिन, इस आंगनबाड़ी बहिन, इस सब लोग जे भी चिकित्सा विभाग से जुड़ल हैं, हम सबके जनसंख्या नियंत्रण खातिर और गर्भवती महिला गर्भ में पले वाला शिशु के जन्म देवे से पूर्व कैसे स्वयं स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ बच्चा के जन्म दे, एकरे खातिर तरह तरह के बात बतावे लेन, अस्पताल ले जाके जांच करावे लेन, सही उपचार करावे लेन। आज यही तरह के एक बातचीत सुनल जाई अपन मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री रमेश कुमार मिश्रा जी से हमार मुलाकात भइल रहल। और जनसंख्या नियंत्रण खातिर जवन सरकार चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्रयास कर रहल बा, ओपर चर्चा भी भइल। हम आप लोगन के बीच में भी ई चर्चा साझा करब, मगर ओसे पहले हम कहब कि काहे ना बैठकी के शुरुआत एक मन मनसायन के साथ करल जाए।

0: बहन लोगन देखे मनमन सहन तो बड़ा बढ़िया भइल और वह फिल्मी गीत के साथ भइल। अब ई सोचें जौन हम लोगन चर्चा करत रहली जा कि अगर एक नाव जात बा ऊपर 100 लोग सवारी कर सकेलन मगर जल्दीबाजी के चक्कर में या कोनो भी कारण से वो नाव पर 200 लोग चढ़ जाएं तो ई बतावा कि वो नाव पार लगी नाही ना। नाव ना ए पार रही ना ओ पार रही मंझधार में फंस जाई। खतरा केहू के कारण नाही भइल, खतरा हमरे विवेक से भइल कि हम गलत अपने विवेक के नाही सुन ली। हम जल्दबाजी के चक्कर में 100 लोग की जगह 100 200 लोग चढ़ गए लन जा। ई जौन छोटा सा उदाहरण रहल ना वो यही बदे रहल कि देखा धरती मैया हैं, यहाँ पानी बा उहो प्राकृतिक बा मगर सीमित बा, हवा बा ओकरे खातिर जंगल होब जरूरी बा। आज दिनों दिन जंगल कटल जात बा, ऐसे जब इमारत बन गई तो समझा शुद्ध वायु के कमी हो जात बा। यही तरह से कई ऐसन कारण बा जौन मानव जीवन खातिर प्रकृति ले के आयल बा मगर जौन जनसंख्या दिनन दिन बढ़त जात बा दिनन दिन बढ़त जात बा। अगर कृषि के ही बात करल जाए तो देखा जब जगह जगह उद्योग कारखाना लग जाई, घर बन जाई, खेती के जमीन कम हुई तो खेती कम हुई तब फसल कम हुई, और जब फसल कम हुई खाद्य सामग्री कम हुई और अंधाधुन बढ़त जनसंख्या, अनाज कहाँ से पाई। एकरे खातिर हम लोगन के चेतावे के जरूरत बा कि जनसंख्या पर नियंत्रण लगे। और जैसा देखा हम चर्चा करत रही ना कि चिकित्सा विभाग द्वारा जनसंख्या नियंत्रण खातिर प्रयास हो रहल बा, ओपर बात करे खातिर एक दिन हमार भेंट मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोनभद्र से हमन डॉक्टर रमेश कुमार मिश्रा जी उनसे बातचीत भी भइल। बात बहुत बढ़िया रहल है कि कैसे परिवार नियोजन अपनावे से जनसंख्या पर नियंत्रण पायल जा सकता। तो हम तो सुन ली और आप लोग बदे भी गठिया के ले आई लही, हम तो कहब ना कि आप लोगन भी सुने।
1: श्रोताओं, हम जब भी किसी शहर नगर या क्षेत्र के विकास की बात करते हैं और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो खुशहाल परिवार की नींव सही समय पर सही फैसले से जुड़ी होती है। हमारे सोनभद्र जनपद के दूर दराज के गांवों, पहाड़ों और कस्बों तक स्वास्थ्य विभाग परिवार नियोजन की कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएं पहुंच रही हैं और महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की इसमें कैसी भागीदारी है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम जिला मुख्य चिकित्सा

0: अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार मिश्र जी से चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
0: डॉक्टर साहब आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय परिवार नियोजन, जो सीधे सीधे हमारे बढ़ती हुई जनसंख्या के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जरूरी है। अगर हम अपने सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र की भौगोलिक स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहाँ सुदूर ग्रामीण और जनजातीय अंचल है। स्वास्थ्य विभाग जनपद वासियों को जागरूक करने और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है?
1: पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद वासियों को मेरा प्रणाम। सुशरी जी, हम देते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग जनपद सोनभद्र हर स्तर पे इस पे प्रयासरत है। एक्चुअल में हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, जो हमारे सीमित संसाधन है, उसका उपयोग किस तरह से कर रही है जिससे संसाधन हमारे कम न पड़ने पाए, और जनसंख्या बढ़ने के कारण तमाम चीजें और होंगी जिसको रोकने के लिए हम दो प्रकार से कार्यरत हैं। एक तो अस्थाई और एक अस्थाई उपाय हम देते हैं। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सा केंद्रों पर ये उपाय उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारी 7 कार्य कर रही ANM, स्टाफ नर्स, आशा बहू, इन सबके साथ, इन सबके सहयोग से हम ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इसे एक सुगम उपाय महिलाओं को बिना संकोच के और पुरुषों को भी उपलब्ध है।
0: जी जी जी, आपने महिलाओं की बात करी तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं तमाम चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध परिवार नियोजन के संसाधनों पर बात करने में संकोच करती हैं। क्यों ना उनके घर में अपनी आशा बहन जाएं, ANM दीदी जाएं, फिर भी इस पर उन्हें ऐसा लगता है कि बात करना बहुत जरूरी नहीं है। और परिवार नियोजन ही नहीं, महिलाओं की जो कुछ बीमारियां हैं उसको भी वो तब बाहर लाती हैं जब बिल्कुल उनके बस पे के बाहर हो जाता है या किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाती हैं। तो हम आज चुके परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, तो मैंने सुना है विभाग में स्वास्थ्य केंद्रों पर एक बहुत ही आसान और देखने वाला मॉडल जिसे सुगम डिस्प्ले मॉडल सुना जा रहा है, तो सर बताइए ये क्या है एक्चुअली?
1: सुगम डिस्प्ले मॉडल के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं वहाँ पर ANM, आशा बहू, इनकी उपस्थिति निश्चित कराई गई है सरकार द्वारा। सुगम डिस्प्ले मॉडल का मतलब ये हो गया कि आपको किसी से पूछना नहीं, कुछ संकोच नहीं करना है। वहाँ पर कैफेटेरिया चॉइस, चूज एंड पिक टेक्निक, आप जो भी परिवार नियोजन से संबंधित उपाय अपनाना चाहें अपने आप से जा करके उसको चूज कर सकती हैं, चाहें तो सलाह ले सकती, नहीं तो अपने आप से जो है सारी विधि वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, यही सुगम उपाय है उसका। दूसरा जो है, आप जिस भी टेक्निक को, हम अस्थाई और अस्थाई दोनों तरीके अपना रहे हैं, इसमें सबसे बढ़ चढ़कर जो है चाहे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गई, IUCD हो गया, इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हो गया, अंतरा हो गया, इन सब चीजों का इस्तेमाल स्वयं उनके द्वारा बिना किसी सलाह, बिना किसी से सलाह लिए हुए, संकोच किए हुए उसका उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ हमारी 2 अस्थाई टेक्निक हैं जिसमें महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी को ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
0: जी, अभी आपने बताया ये जो अंतरा है, छाया है और कुछ ऐसी गोलियां हैं, इनको लेके भी महिलाओं में भ्रम है, तो क्या इनके प्रयोग से, इसके सेवन से कोई दुष्प्रभाव भी होता है क्या?
1: ऐसा तो अभी तक कुछ देखने में नहीं आया है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ भ्रांतियां व्याप्त हैं, लेकिन उसका कारण अलग हो सकता है। इसीलिए लगभग हर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर महिला चिकित्सक, चाहे वो MBBS डॉक्टर्स हों या जो है आयुष की हों, लगभग कोशिश की गई है कि कोई न कोई महिला चिकित्सक वहाँ पे उपलब्ध हो जो इस बारे में, इस भ्रम को दूर करने के लिए साथ साथ उनको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए। बाकी हमारे सेकेंडरी सेंटर्स, टर्शियरी सेंटर्स पे महिला चिकित्सक गायनी ऑप्स की उपलब्ध है, वो कोई भी जरूरत पड़ने पर उनको सहायता करेंगी। यद्यपि इस तरह का कभी भी सामने नहीं आया है कि कोई इससे कोई दिक्कत होती हो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने।
0: जी जी जी, इसके साथ ही जहां हम अस्थाई परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं, तो मल्टी लोड है, कॉपर्टी है, जो महिलाएं इसका उपचार लेती हैं 2 बच्चों के बीच में ब्रेक करने के लिए, तो इसका भी कोई साइड इफेक्ट?
1: इसमें इस तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। अगर इस तरह से कुछ अनुभव होता है या आकर के कभी कभी बहुत 1-2% केसेस में उनको पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग्स होती हैं, तो उसका उपयोग बंद करके दूसरे तरह के जो है डिवाइस पे उनको टर्न कर दिया जाता है। बाकी 99.9% सुरक्षित
0: है। जी, कहने का तात्पर्य यह है कि ये बेशक एक कृत्रिम उपकरण है मगर शरीर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है
1: जी।
0: और यदि किसी बहन को किसी तरह की परेशानी आती है तो वो 1-2 महीने के बाद लगातार समस्या देखने को मिल रही है तो डॉक्टर के पास जा करके अपनी शिकायत बताएं और यदि डॉक्टर को लगता है तो वो उसे हटा करके कोई दूसरी
1: कोई सलाह
0: देंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात रही और हमारी चर्चा जो थी वो विशेषकर महिलाओं के लिए थी। अब हम बात करते हैं अस्थाई नसबंदी और इसमें महिलाएं तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ मानसिकता के साथ जाती हैं, पर अगर हम पुरुषों की बात करें तो पुरुष इसमें बहुत हिचकिचाते हैं या उनको ऐसा भ्रम है कि हमारा वैवाहिक जीवन किसी प्रकार से अच्छा नहीं होगा या जिस भी तरह के भ्रम है आपके जहन में भी चल रहा होगा, तो ऐसे पुरुषों के लिए आप क्या कहेंगे कि नसबंदी के लिए उन्हें किस प्रकार से आप प्रेरित करेंगे? और हमने सुना है कि उनको कुछ प्रोत्साहन धनराशि भी दी जाती है।
1: जी सही है, महिला नसबंदी ज़्यादा पुरुषों की तुलना में हो रही है। महिलाओं को प्रोत्साहन धनराशि के रूप में 2,000 रुपये और पुरुष नसबंदी पर 3,000 रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। पुरुष नसबंदी बहुत ही आसान तरीका है, महिला में तो थोड़ा खोलना भी पड़ता है, चीरा भी लगता है, लेकिन ये NSV टेक्निक जो है, नॉन स्काल्पल वासेक्टॉमी जो टेक्निक है, इसमें बिल्कुल बिना चीरा बिना टांके के ऑपरेशन होता है और तुरंत छोड़ दिया जाता है घर जाने के लिए।
0: पुरुषों को
1: जी। पुरुषों की सबसे बढ़िया यह है कि उसमें बिल्कुल रुकना नहीं, ना दोबारा उनको लौट के अस्पताल जाना है, ना ही किसी प्रकार की कोई परेशानी है। वो अगर कोई भी अपनी इच्छा व्यक्त करता है तो तुरंत उसको हमारे सर्जन हर CSC पर लगभग उपलब्ध है और कहने पर वो जाकर के शिविर लगा के उनका ऑपरेशन करते हैं। ये स्थायी विधि है और इससे कोई दिक्कत नहीं होती पुरुषों को।
0: जी जी जी, बड़ी अच्छी अभी हम लोगों ने चर्चा की पुरुषों के बारे में और पुरुष इसमें जरूर आगे आएंगे। हमने बात देखिए सुगम डिस्प्ले मॉडल की करी, इसी समय एक और चीज है बास्केट ऑफ चॉइस, तो महिलाओं के लिए ये बास्केट ऑफ चॉइस, इस पर भी एक छोटी जानकारी।
1: मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये इस समय परिवार नियोजन के लिए जो भी तरीके अपनाए जा रहे हैं इसमें हम लोग कैफेटेरिया च्वाइस रखते हैं। आप जाइए, आपको जो भी विधि अपनानी हो उसमें से चूज एंड पिक टेक्निक है, आप उठाइए उसका प्रयोग करिए। कभी कभी ऐसा होता है 1-8% किसी को किसी से परेशानी हो रही तो दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते
0: हैं। जी जी, अब हम बात करते हैं नवविवाहित जोड़ों को, क्योंकि सोनभद्र मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आता है। इसमें नवविवाहित जोड़ों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कोई विशेष योजना है?
1: जी मैम, इसमें आपने सुना होगा टारगेट कपल्स जो हैं, जो नवविवाहित जोड़े हैं उनको टारगेट करके ही परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसमें हमारे सारे जो है स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य विभाग की आशाएं, ANM, हेल्थ विजिटर्स सब लोग लगे हुए हैं। प्रयास यही है कि उनको ये बताया जाए 2 बच्चों के बीच में क्या अंतर रखना है, पहला बच्चा कब होना है, ये बताने को यही हमारा सुगम तरीका है।
0: जी जी जी, मतलब शुरू में ही ये एक अच्छी योजनाबद्ध तरीके से गर्भधारण करना है और कितने बच्चे पैदा करना है इस पर उनका विचार निश्चित किया जाएगा। चलते चलते हमारे सोनभद्र वासियों को परिवार नियोजन क्यों आवश्यक है? कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे तमाम बढ़ती हुई समस्याओं की जड़ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या कहें या जनसंख्या विस्फोट कहें, अब समय आ गया है कि हम लोग इस पे सतर्क हो जाएं, क्योंकि हमारे पास संसाधन सीमित है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जगह, जमीन, संसाधन जब कम होंगे तो निश्चित रूप से रोजगार कम होंगे, बीमारियां बढ़ सकती हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो हम सब चीज़ों का अगर दोहन करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास रहने, चलने, उठने, बैठने, खाने पीने के लिए सबके लिए समस्या खड़ी होगी। अभी से सतर्क हो जाएं और हम लोग अभी से ही इसका अनुपालन करना अगर सुनिश्चित करें तो आने वाला भविष्य हमारा अच्छा होगा, उज्जवल होगा।
0: बहुत पुरानी लाइन है कि हम दो हमारे दो, या बच्चे दो ही अच्छे हैं।

0: संकल्प शुभकामना के साथ हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे जनपद वासियों के साथ साझा की, धन्यवाद
1: सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बहन लोगन, देखा जानकारी कितना अच्छा रहल, और हम तो समझब ना कि हर बहन लोगन के निसंकोच ए विषय पर अपन बात जाके डॉक्टर के कहे के चाहिए, और जवन हमरे खातिर हमरे इच्छा से जवन भी विधि बा ओके अपनावे के चाहिए। अब देखा बात बात कही तो बहुत बढ़िया भइल, आप लोग सुन लें भी। अब डॉक्टर साहब के धन्यवाद दिहल जाए, तो डॉक्टर साहब के धन्यवाद भी काहे ना एक ठे फिल्मी गीत के साथ ही दिहल जाए।

बहन लोगन देखें जब भी हम लोगन साथ बैठी ला जा तो कुछ ना कुछ जानकारी के बात होला। चूँकि आज बात हम लोगन के डॉक्टरी के होत रहल हा तो देखा आजकल ना हमरे जैसे एक समय रहल आधार कार्ड बनत रहल वही तरह से आजकल आभा कार्ड बनत बा, आभा आईडी बनत बा। तो आभा आईडी बनवावे खातिर जब बहन लोगन जालिन केहू घर में कहीं भी परिवार में जानकारी मांगे लिन तो लोग सोचे लेन ना कि का हो कहीं ऐसा न हो कि हमारे साथ कोनो फराड हो जाए। तो देखा ये कोनो फराड नहीं बा, आभा आईडी जरूरी बा। आप लोगन एके बनवावे में संबंधित सूचना जौन मांगल जात बा उमें सहयोग दें और आपन का आईडी जरूर बनवावे। यही सब बात बतकही के साथ देखें आज के बैठकी समेटे के समय हो गई।

अभी ग्रामीण बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर ने। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम के 6 बजने को है। अब से थोड़ी देर में आप भोजपुरी समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में 432 करोड़ रुपया से बेसी के लागत का 217 परियोजनन का लोकार्पण आ शिलान्यास कैले। अपने संबोधन में श्री योगी कहने कि डबल इंजन का सरकार अयोध्या में विकास का नया इबारत लिखले हो। वहां के कहने कि आज अयोध्या सोलर सिटी के रूप में स्थापित हो चुकल बा।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
0: मुख्यमंत्री अजोय बस्ती में 504 करोड़ रुपया से बेसी की लागत का 77 विकास परियोजनन के लोकार्पण आ शिलान्यास कार्यक्रमों में शामिल भइले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहने गोरखपुर में कई गो कार्यक्रमन में हिस्सा ली हैं। ओजा का मंडल आयुक्त अनिल ढिंगरा और डीआईजी एस चेनप्पा आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के तैयारियन का जायजा लेने।
2: मंडलायुक्त और डीआईजी ने गोरखपुर के भटहट स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण किया। वहां संबंधित अधिकारियों को मंडलायुक्त ने 1000 व्यक्तियों की क्षमता वाले इस ऑडिटोरियम के निर्माण कार्य में तेजी लाकर इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री के प्रस्तावित भटहट बांस स्थान फोर लेन मार्ग के लोकार्पण कार्यक्रम के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल का भी जायजा लिया। वहां चल रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि जनसभा स्थल पर मौसम को देखते हुए आवागमन, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहां डीआईजी एस चेनप्पा ने पुलिस अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे गोरखपुर।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इथेनॉल मिलल पेट्रोल से इंजन के नुकसान पहुंचले आ गाड़ियन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ले से जुड़ल आशंका के खारिज कर दिए हैं। एगो निजी समाचार चैनल के दिहल इंटरव्यू में श्री पुरी कहने कि सरकार E85 ईंधन शुरू कैले की योजना पर कार कर रही हो। वहां के कहने कि ईंधन मानक E20 पेट्रोल के तुलना में करीब 20 रुपया प्रति लीटर सस्ता होई। केंद्र सरकार अल्कोहल के ढेरे मात्रा वाली दवाइयन के नियमन के और यो सख्त करे बदे औषधि नियम 1945 में संशोधन कैले हो। एगो रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीमीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधि उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार बीतल रात 20 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिहलस। स्थानांतरित होके वाले अधिकारियों में बलिया, आजमगढ़ और इटावा जिला का मुख्य विकास अधिकारी CDO भी शामिल हैं। राकेश कुमार पटेल के आज

0: रामगढ़ आलोक कुमार के बलिया और संजय कुमार सिंह के इटावा का नया सीडीओ बनावल गईल बा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही कई गो औरियो जिलन में आज रुक रुक के बरखा का सिलसिला जारी बा। भिनहिये से आसमान में बादल छौले बाटे आ कहीं कहीं बूंदाबांदी का क्रम आज पूरा दिन जारी रहल। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जुड़ल मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह बतौलें कि मौसम विभाग बिहने तक खातिर प्रदेश में कई जगहों पर भारी बरखा का ऑरेंज अलर्ट जारी कर लिया है।
1: अगर आगे आने वाले दिनों में बात करें तो ये उत्तरोत्तर मध्य उत्तर प्रदेश और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। यद्यपि यह उत्तरोत्तर कमजोर होता जाएगा, परंतु इसके प्रभाव से सेंट्रल यूपी की तरफ आने पर और थोड़ा कमजोर होने पर वर्षा की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन भारी से बहुत भारी वर्षा का दौर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई को भी जारी रहेगा और इसके बाद 11 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसमें व्यापक तौर पर कमी आ जाएगी और तराई इलाकों में या कहीं कहीं भारी वर्षा तक सीमित हो जाएगा।
0: मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के पूर्वी जिलन में 14 जुलाई ले कहीं कहीं भारी बरखा का संभावना बा। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: FM पर आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: राहु भैया तो के भी राम राम।
0: राम राम जगो भैया,
1: हाल चाल भाई भैया,
0: हाल चाल भैया। देखते हुए बरखा बुनी भैया देखा शुरू हो गए हुए, और इसने भैया देखा हम लोगन के जोन भी खेती पाती के काम हुए, अपन धान के नर्सरी लगभग लगभग पूरा हो गए हुए, लेकिन मोटंजा में भैया देखा मकई सवार हर तिल बिया के बुआई भी अभी चलत हुए, और निश्चित रूप से ए तरह मौसम बनल रहे तो अच्छा फसल होए के संभावना बा भैया।
1: बिल्कुल मुराहू भैया बड़ा सही बात धरौला, लेकिन एक बात हम ध्यान धराए दे हूँ कि जो बरखा बुन्नी के मौसम शुरू हो गया।
0: हाँ भैया।
1: तो भैया खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में रहा।
0: बिल्कुल।
1: और सबसे बड़ी चीज ये है भैया ना कि जो बरखा बुन्नी का पानी है ना भैया, जब ये गाँव और खेत में रुकेला ना तो माटी के उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेला।
0: बिल्कुल।
1: जल स्तर है जमीन के अंदर का भूगर्भ जल का बात कहल जाए, ओकर भी स्तर बढ़त चल जाए।
0: एकदम सही कहत हुआ जग्गू भैया, और निश्चित रूप से वर्षा के पानी अधिक से अधिक हम लोगन के सुरक्षित रखले के जरूरत हुए, ताकि भैया देखा हम लोगन के सिंचाई में भी काम आ सकेला, ओकरे साथ साथ अन्य घरेलू काम में भी जौन बाकी हम लोगन ओकर उपयोग कर सकेला। और निश्चित रूप से भैया देखा मौसम में उतार चढ़ाव बनल हुए, और मौसम के मिजाज का हुए आज के जौन बाकी मौसम के बारे में भैया देखा शिव मंगल सिंह जौन के मौसम वैज्ञानिक BHU से हुए अपन मुने भैया बातचीत कैले हुए, और न होते भैया देखा मौसम के बारे में उन्हीं लोग से जानल जाए भैया।
2: हम लोगन प्रत्येक शुक्रवार और मंगलवार के दिन आप लोगन बदे मौसम का जानकारी लेकर अपने कार्यक्रम किसानवाणी में आई लजा। देखें आज हमारे संपर्क हो गल बा श्री मंगल सिंह साहब से, जो उनकी तकनीकी अधिकारी मौसम वैज्ञानिक ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भू भौतिकी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुआ। और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि जवन आवे वाला समय बा खास तौर से चार दिन का शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक, तो ऐसने समय ये स्थिति में आवे वाला समय का जो मौसम बा वो कैसन रही एकरे बारे में आज हम लोगन जानब। तो डॉक्टर साहब नमस्कार।
3: बहुत बहुत नमस्कार किसान भाइयों। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगर हम बात कर लें अगले 3-4 दिनों के मौसम के बारे में, तो आने वाले 3-4 दिनों में जो है मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है किसान भाइयों। और इस अवधि में अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो 29 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है, और वहीं पे न्यूनतम तापमान की अगर बात कर लें तो 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहने का अनुमान है।
2: जी जी।
3: और साथ ही अगर हवा की गति की बात करें तो

0: हवा की गति जो है ऐसे में सामान्य से थोड़ा अधिक रहेगी, और
1: जी
0: वो कहीं कहीं 9 से लेके 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने का अनुमान है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगर भारी बारिश होता या मध्यम बारिश होता तो ऐसने समय में अपन किसान भाई लोग अपने खेत में कौने कौने बात का ध्यान रखें?
0: जी देखिए, ऐसे मौसम में किसान भाइयों विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो खरीफ की जो फसल अभी आप बुआई किए
1: जी
0: हैं, तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत में जो है जल निकास का उचित व्यवस्था बनाए रखें
1: जी
0: ताकि पानी का ठहराव ना हो।
1: हम्म,
0: अगर ठहराव होगा तो फिर अच्छे से आपका जर्मिनेशन नहीं होगा
1: जी
0: और कई प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी आपके सामने।
1: जी जी
0: और अगर धान की फसल की बात कर लें तो अच्छी बारिश हो रही है, इसलिए किसान भाइयों को एकदम ये सलाह है कि जो धान का खेत है उसकी मेड़बंदी अच्छे से कर लें
1: जी
0: जिससे कि पानी खेत में ही बना रहे और बाहर ना निकल पाए।
1: हम्म,
0: और एक जरूरी है कि किसान भाई धान की नर्सरी और अन्य फसलों को, चूंकि हवा की गति भी सामान्य से अधिक रहने का संभावना है,
1: जी
0: इसलिए किसान भाइयों को इस हवा की गति में, चूंकि बारिश भी तेज हो रहा है, तो फसल को लौटने से बचाने के जो उचित उपाय हो सकते हैं वो करें।
1: जी
0: और ऐसे में किसान भाइयों को एक विशेष सलाह और भी है कि उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव फिलहाल टाल दें,
1: जी
0: और जब मौसम साफ हो तभी ये सब क्रियाएं करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: हम्म,
0: जी
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे संपर्क भेल और इतना बढ़िया आप मौसम का जानकारी दिलेन, ऐसे जरूर अपन किसान भाई लोग लाभ उठाए, एकरे बदे आपके धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।
1: जगु भैया,
0: भैया
1: देखा इ रहल भैया, देखा मौसम के जानकारी और मौसम के हिसाब से ही हम लोगन के अपन खेती बाड़ी के काम कैले के जरूरत हुए, और
0: बिल्कुल
1: निश्चित रूप से भैया देखा कोई भी जगह हो, चाहे खेती बाड़ी हो या अन्य जगह हो, भैया देखा ये देखल जात हुए कि भैया देखा जनसंख्या वृद्धि जोन बा,
0: हम्म,
1: भैया देखा लगातार होए के वजह से हर जगह भीड़ भाड़, हर जगह अव्यवस्था, हर जगह ओकर प्रभाव देखल जात हुए, तो
0: भैया देखा
1: जनसंख्या
0: देखा धरती माई तो बढ़त नहीं है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन भैया जो जनसंख्या बढ़त चल जात बा तो सबके रोटी
1: का
0: खाए
1: ट्रे हो
0: खाए
1: गमला या
0: खाए
1: हो,
0: के खाए ना
1: एकदम भैया
0: व्यवस्था भी।
1: एकदम, तो निश्चित रूप से भैया देखा जनसंख्या वृद्धि के प्रकृति पर का प्रभाव बा,
0: हाँ
1: एकरे बारे में डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी जो उनकी परिवार कल्याण केंद्र घीवी से हुआ,
0: हम्म,
1: अपन भोला भैया का बातचीत करत हुआ ना, वो सुन ले।
0: सुना लिया
2: आज तरह तरह के समस्याएं देखने को मिल रहा है, कहीं जमीन का अभाव, कहीं पर्यावरण प्रदूषण, कहीं जल प्रदूषण, तरह तरह के परेशानियों के सामना करते हुए खाद्यान्न भी आज जो है कि ताकतवर नहीं हो पा रहा है। जहाँ जाइए वहीं भीड़, जनसंख्या वृद्धि के चलते जो है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके अन्य जीव जंतु बहुत सारे संख्या में हैं, वैसे मनुष्य भी दिखाई देते हैं। और ये जनसंख्या वृद्धि में कैसे लगातार बढ़ोतरी हो रहा है, इसमें रुकावट कैसे हो, किस तरीके आदमी शिक्षित बने, क्या कारण है जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ये सब जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉक्टर मनोज तिवारी जी, जो परिवार कल्याण केंद्र घिवी से हैं, आपसे मुलाकात हो रही है। डॉक्टर साहब, आपको रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जनसंख्या वृद्धि की बात आती है, तो जनसंख्या वृद्धि के क्या कुछ कारण समझ में आता है डॉक्टर साहब?
3: कि जनसंख्या वृद्धि में जैसे 2021 के अनुसार विश्व की जनसंख्या 790 करोड़ थी
2: अच्छा जी।
3: और भारत की जनसंख्या 139 करोड़ थी,
2: हम्म,
3: जिसमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। भारत
2: जी
3: का मतलब सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है
2: अच्छा जी।
3: और दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है।
2: हम्म, तो ये जो एक जनसंख्या जो ये बढ़ रही है लगातार, हम लोग देखने को मिलता है कि अपने इर्द गिर्द की बात अगर की जाए तो अपने ही क्षेत्र में पहले क्या जनसंख्या की स्थिति थी और आज कितना वृद्धि हो गई, यहाँ तक कि सड़कों पर लोहे चलने में आज गाड़ी मोटर की बात आ जाती है, वही चौड़ाई है रोड का, वही जो है कि क्षेत्रफल है जमीनों का, लेकिन उसी में जो है कि लोग अमा नहीं पा रहे हैं, अट नहीं पा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है इसका, जनसंख्या वृद्धि का?
3: जैसे जनसंख्या वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण हैं, प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न की उपलब्धता,
2: जी
3: तो अब हमारे देश में जो है प्रचुर मात्रा

0: में खाद्यान्न उपलब्ध है, क्योंकि अनेक जो है जैविक जैसे कृत्रिम खाद का प्रयोग करके उसको
1: जी
0: बढ़ा के जैसे ज्यादा मात्रा में उसको उत्पन्न किया जा रहा है, जिससे उसके पौष्टिकता में कमी आती जा रही है,
1: जी जी जी
0: लेकिन अनाज जो है
1: अनाज
0: प्रचुर मात्रा में
1: जीने के लिए मतलब
0: जीने के
1: काफी
0: लिए
1: है।
0: हाँ काफी है,
1: जी,
0: और मृत्यु दर में कमी आई है।
1: अच्छा,
0: दूसरा कारण यह है कि मृत्यु दर में कमी आई है, क्योंकि पहले महामारी वगैरह होती थी,
1: हाँ,
0: हैजा, प्लेग, अनेक तरह की
1: जी,
0: संक्रामक बीमारियां जो है होती थी, जिससे कि गांव के गांव लोग खत्म हो
1: जी,
0: जाते थे,
1: और भूख से भी मर जाते
0: भूख से
1: थे
0: मर
1: बहुत सारे
0: जाते
1: लोग।
0: थे। अब उसमें कमी आई है।
1: जी,
0: और तीसरा है कम आयु में विवाह, कम आयु में विवाह कर दे रहे हैं।
1: तो उससे भी जो है कि अब जल्दी से बच्चे पैदा होने लग रहे हैं
0: हाँ, जल्दी से
1: और अधिक देर तक जो है कि संख्या बढ़ रही है।
0: हाँ।
1: सही बात।
0: फिर जो है अशिक्षा,
1: जी
0: शिक्षा की कमी है कि जानते नहीं है कि क्या अंतराल होना चाहिए, और शिक्षा में कमी होने के कारण जो है
1: अंधाधुंध मतलब बच्चे
0: हाँ।
1: का जन्म देना।
0: और हमारे देश में जो है कम आयु में लैंगिक परिपक्वता हो जा रही है, यानी पहले ही लोग
1: मेच्योर हो जा रहे
0: मैच्योर
1: हैं।
0: हो जा रहे
1: जी
0: हैं, जिसके वजह से पहले ही संतान उत्पत्ति हो रही है, और धीरे धीरे उसमें जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है।
1: जी,
0: और ये भी है कि सामाजिक रीति रिवाज है कि नहीं हुआ संतान तो लोग
1: हाँ
0: तरह तरह के बातें करेंगे
1: जी,
0: उनके बारे
1: जैसे
0: में।
1: लड़के की बात हो गए।
0: जैसे लड़का हो गया तो मतलब लड़की ही लड़की अगर हो गई तो चाहेंगे कि हमें लड़का हो, भले ही उसमें कई बच्चे हो जाएं।
1: जी, मैंने लड़का की प्रतीक्षा में जो है कि कई गुना बच्चे होते जा रहे हैं लड़कियां, और धीरे धीरे जो है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जी, तो ये जनसंख्या वृद्धि से कुछ हानियां भी तो हैं डॉक्टर साहब।
0: जी, जनसंख्या वृद्धि से देखिए, जनसंख्या वृद्धि होगी तो खाद्यान्न की समस्या होगी,
1: जी,
0: भुखमरी की स्थिति आएगी,
1: जी,
0: लोगों को पूरा प्रचुर मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिल पाएगा। फिर जो है कपड़े एवं आवास की कमी होगी।
1: हाँ बिल्कुल भाई, उसमें जो है कि बहुत जनसंख्या रहेगा तो
0: कपड़ा
1: कपड़े
0: भी, हाँ कपड़ा नहीं होगा।
1: अभिभावक जैसे हैं, अब उनको चूंकि बच्चों को देना पहनाना है, खिलाना पिलाना है, उतने पर्याप्त मात्रा में मान लीजिए नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो कहाँ से देंगे। और जहाँ घर बनाने की बात है तो महंगाई तो चरम सीमा पर चल ही रहा है, अब घर कहाँ से बनाएगा, लोग आवास में भी दिखते आएगी। सही बात है जी।
0: पीने के पानी में कमी आएगी,
1: तो पानी तो खरीदाने लगा डॉक्टर साहब,
0: अब पानी खरीद रहे हैं।
1: हाँ, अब जी यहाँ पर हम लोग के झरने चला करते थे, और जो है उसमें पानी जो है कि ऐसी चुवाड़ी खोद करके आदमी पर्याप्त मात्रा में शीतल जल निकाल करके पीता था। आज की स्थिति है कि जो है बोतल लेके आदमी घूम रहा है।
0: हाँ, तो उसका कारण है वायु, जल, मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। वायु हमारा प्रदूषित हो गया,
1: जी,
0: जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है।
1: जी,
0: जल में जो है हम तरह तरह के जो है अवशिष्ट जो है पानी में डाल रहे हैं, कितनी नदियां जो कारखाने कल कारखाने हैं उनका जो है अवशिष्ट जो है पदार्थ जो है उसमें जा रहे हैं, केमिकल्स कितने जा रहे हैं नदियों में।
1: तो अच्छा, नदियों के जल स्तर चूंकि कम हो गया है,
0: कम,
1: अब पहले चूंकि बहुत ज्यादा थे तो थोड़ा मोड़ा अगर कुछ उसमें डाल भी दिया जाए तो बहकर चल जाता था, पता नहीं चलता था। और आज की स्थिति है कि जो है कि वे पानी की मात्रा बहुत कम है, और उसमें जो भी अवशिष्ट पदार्थ डाले जा रहे हैं ज्यादा, और जो है कि सब यहीं पर प्रदूषित कर दे रहा है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब।
0: अब मृदा प्रदूषण में वृद्धि होगी,
1: हाँ माटी में तो बीमारी हो ही रहा है, अभी तो रासायनिक भी खाद,
0: रासायनिक खाद डाल रहे हैं,
1: जी,
0: जैविक खाद का प्रयोग कम होते जा रहा है,
1: जी,
0: लोग जो है प्राकृतिक चीजों से संसाधनों का प्रयोग कम कर रहे हैं।
1: मतलब जनसंख्या वृद्धि से ये सारी हानियां हैं, और क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? जिसे
0: संक्रामक रोग फैलने की अधिकता हो जाएगी, अधिक जनसंख्या रहेगी तो अधिक ऑक्सीजन की कमी होगी, और भी तरह तरह के बैक्टीरिया वृद्धि होगी उसमें, कि मतलब ये संक्रामक रोग फैलेंगे
1: और पास पास लोग रहेगा तो जल्दी एक दूसरे से फैलेगा। वैसे दूर दूर लोग रहा करते थे तो जो है कि एक से दूसरे तक जाने में समय लगता था, लेकिन अब चूंकि जनसंख्या ज्यादा रहने पर बिल्कुल सही बात है।
0: बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि और ऐसे भी देख रहे हैं कि अपने देश में एक पद निकलेगा तो उसमें कम से कम हजारों लोग आवेदन करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसके लिए महामारी है, एक पे हजार,
1: जी,
0: और नौकरी मिलेगी नहीं।
1: हाँ,
0: तो
1: जनसंख्या कम रहता तो जो है कि उसमें
0: आसानी से नौकरी मिल जाती,
1: नौकरी मिल जाती,
0: आवास नहीं होगी,
1: जी,
0: पूरा रहने का व्यवस्था नहीं होगा,
1: जी।
0: फिर जो है शिक्षा भी सही ढंग से उनको नहीं दी जा सकती,
1: नहीं दी जा सकती। जैसे मान लीजिए चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं दर्शक, तो इसमें स्वाभाविक सी बात है कि एक बच्चे के तो पुराने में दिक्कत हो रहा है, हो जाएगा।

0: अब जब इस प्रकार से समस्याएं आएंगी, महंगाई है, तो निश्चित रूप से पांच बच्चों का पालन पोषण, चार बच्चों का पालन पोषण संभव नहीं है, शिक्षा नहीं दी जा सकती, शिक्षा भी महंगाई होगी है
1: और प्राकृतिक स्रोतों में कमी होगी।
0: जी जी,
1: जल का दोहन करेंगे हम, प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करेंगे,
0: ऐसे भी पेड़ पौधे कम,
1: ऐसे भी पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं, जबकि एक मनुष्य को
0: जी जी
1: को जीने के लिए 10 पेड़ कम से कम होने चाहिए जो ऑक्सीजन को दें उसको।
0: जी जी, इसीलिए तो कहा गया कि 3/4 वन हो और 1/4 अगर जो है कि गांव हो तो आदमी का संतुलन सही बन सकता है, मतलब प्रकृति का। लेकिन आज तो देखा जा रहा है कि पेड़ों का अंधाधुंध कटाई, और उसमें यही लोग सोच रहा है कि जनसंख्या ज्यादा हो जाने की वजह से एक बीघा और जमीन रहता तो जंगल काट करके उसमें लोग रहने लग रहा है,
1: कब्जा कर लेना है,
0: कब्जा कर लेना
1: है, जिसके कानूनी रूप से भी उनको प्रताड़ित होना पड़ता है।
0: जी जी जी,
1: और सरकार को भी बाध्य होकर उनको देना
0: पड़ता है
1: क्योंकि वही जनता के आगे वो भी विवश है।
0: जी जी जी,
1: स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा में बाधा पहुँचेगी।
0: हाँ ठीक,
1: क्योंकि उनका सही ढंग से इलाज नहीं हो पाएगा, ज्यादा संख्या रहेगा तो उसका कैसे होगा इलाज, बताइए।
0: बेड फुल रहेंगे, 100 बीमार वाला बात हो जाएगा,
1: 100 बीमार।
0: अब एक तो जो है कि मान लीजिए हॉस्पिटल रहेगा और उसमें जो है कि बेड मान लीजिए 15-20-25-40 तक रहेगा और मरीज आ जाएंगे 100, तो कैसे उस पर हो पाएगा, तो सही इलाज नहीं हो पाएगा, या उससे भी जो है कि
1: प्रदूषित सब चीज खा रहे हैं तो बीमार पड़ेगा,
0: बीमार पड़ने पड़ना है,
1: हवा ना शुद्ध, हवा ना शुद्ध, पानी ना शुद्ध, भोजन,
0: जनसंख्या वृद्धि का
1: ये सब मिलना नहीं है, बेरोजगारी,
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनसंख्या वृद्धि का ये भी हानि है।
1: और बार बार गर्भधारण से महिलाओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, अनेक बीमारियां होंगी, खून की कमी होगी।
0: जी जी जी,
1: खून की कमी तो प्रमुख होना ही होना है
0: भाई, जनसंख्या वृद्धि कराने में तो महिला का योगदान अहम भूमिका है, कि वही उनके बच्चे होंगे, कई बच्चे होंगे तो जो है कि बार बार गर्भधारण करने से तरह तरह की बीमारी, तो उनकी जो है कि शारीरिक स्वास्थ्य प्रभाव पड़ेगा,
1: एकदम प्रभाव पड़ेगा, अनेक तरह की महिला संबंधित बीमारियां होंगी, गायनिक पेशेंट होगी।
0: जी,
1: यातायात परिवहन में बाधा होगा।
0: जी जी,
1: आने जाने में कहीं असुविधा होगी, पता चला कई बच्चे हैं तो उनको अभी पूरा व्यवस्था ला दिए, उनको कैसे मोटरसाइकिल को बैठ के जा रहे हैं, क्या करेंगे।
0: और उसी प्रकार मान लीजिए बस की ही बात है, तो एक बस जा रही है और भीड़ जो है कि ज्यादा हो गया तो आने जाने में दिक्कत होगी,
1: और रहन सहन बदतर होगा। एक ही जगह रह रहे हैं,
0: एक ही जगह रहेंगे, आवास के अभाव आप बता ही दिए पहले कि जहाँ जो है कि ये जनसंख्या वृद्धि होगी तो आवास नहीं रहेंगे, एक आवास में कितने लोग रहेंगे, एक जगह रहने में जो है कि अब कहते भी है कि घड़ा टकराता है तो मनुष्य टकराने लगेंगे तो फिर जो है कि ठीक। और डॉक्टर साहब क्या हो सकता है जो है कि रहन सहन में भी, मतलब अच्छा तो ये बताया डॉक्टर साहब कि ये इतनी बड़ी समस्या आने वाली है, अभी हम लोगों ने जान पाया कि जनसंख्या वृद्धि से इतनी सारी हानियां हैं आपने बताया, इसका नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है?
1: हाँ बिल्कुल है नियंत्रण का उपाय,
0: क्या किया जा सकता है डॉक्टर साहब?
1: जिसे विवाह की आयु में वृद्धि कर दी जाए।
0: अच्छा अच्छा,
1: जब हम जान ही रहे हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए विवाह कर रहे हैं, वही तो प्रमुख वही बात है कि संतान उत्पत्ति करना है, नहीं होगा तो सामाजिक मान्यता है कि उसको तरह तरह के बातें कही जाएंगी, तो विवाह की आयु में कुछ वृद्धि की जाए ताकि जो है वो भी परिपक्व हो जाए, शिक्षित भी हो जाए, इससे कई फायदे होंगे
0: जी,
1: कि
0: जी,
1: उनको शिक्षा भी हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए जो है शिक्षा द्वारा उनको जो है
0: शिक्षा देकर के ही समझाया
1: जा सकता है कि भाई तुम लेट में विवाह करोगे, थोड़ा देर में करोगे तो तुमको संतान देर में होगी, और संतान के बीच में अंतर भी होना चाहिए, तीन साल से पांच साल अगर अंतर रखते हैं
0: जी,
1: तो उसमें गर्भवती मतलब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, उसमें दूरी रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, जच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
0: जी जी, तो ये मतलब इस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है,
1: और जन्म नियंत्रण द्वारा
0: हाँ हाँ मतलब बच्चे में गैप
1: किया जाए, वही जो बात है तीन साल से पांच साल डिफरेंट किया
0: जी,
1: जाए
0: जी, जी,
1: और उसके भी बहुत से उपाय भी आ गए हैं, जैसे कॉपर टी जैसे आगे जो बात है परिवार नियोजन
0: जी जी जी,
1: कॉपर टी कंडोम इत्यादि का प्रयोग करके
0: मतलब इस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है,
1: दूरी रहेगी तो
0: डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा आपने बताने का प्रयास किया, तो चलते चलाते लोगों को क्या कुछ रखना चाहेंगे डॉक्टर साहब?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि अन्य बातें तो जैसे किसी जैसे धन के रूप में आगे बढ़ गया देश या और सब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा
0: जी जी,
1: तब तो ये अच्छी बात है
0: जी जी,
1: लेकिन अगर हम जनसंख्या में अगर आगे बढ़ रहे हैं
0: जी जी,
1: तो ये तो हमारे लिए
0: पिछड़ा

0: होना चाहिए।
1: पीछे हम पीछे जा रहे हैं
0: जी, जी, जी।
1: और अभी तो देखिए 2021 के अनुसार जो है हम दूसरे स्थान पे हैं, लेकिन जो है संभावना व्यक्त की जा रही है
0: जी, जी।
1: कि हम जो है प्रथम स्थान तक पहुंच चुके हैं अगर इसे नियंत्रण नहीं किया गया तो हम जो पीछे बताया कि कितनी समस्याएं पैदा होंगी, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं मिलेगा, चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलेंगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, अन्न जल और वायु मृदा से प्रदूषित हो जाएंगे
0: जी, जी।
1: तो इसके लिए हम एक संभ्रांत नागरिक अगर हैं इस देश के
0: जी,
1: तो जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए हमें
0: सब जागरूक हो
1: और इसके लिए जनसंख्या का सख्त कानून बनाना चाहिए
0: जी जी जी।
1: इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए।
0: तो डॉक्टर साहब आपसे मुलाकात हुई, इतनी अच्छी जानकारी दिया आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जग्गू भैया,
3: भैया
2: देखिए कितना बढ़िया जानकारी के क्रम में जनसंख्या वृद्धि का प्रकृति पर प्रभाव के बारे में डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी भैया से भोला भैया के बातचीत सुनल गेलक।
3: और भैया का जानकारी जब सुनल गल तो भैया के देवल जाए धन्यवाद, लेकिन झूरा झूर नहीं,
2: बिल्कुल
3: उत्तम कुमार भैया के एक मन सायन के साथ
2: एकदम सुनल जाए भैया।
4: आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ, आ,

0: उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: जग्गू भैया
2: भैया
1: अभी मन फिर सुनल गया के अपन उत्तम कुमार उनकर संगतिया के
2: कुछ संदेश भी सुनल गयल।
1: बिल्कुल, और ऐसे में भैया देखा जब हम लोगन खेती किसानी करीला जोन भी हम लोगन के धान गेहूं के खेती होत हुए ओकर अलावा भी हम लोगन के जोन बाकी सब व्यवसाय के रूप में कृषि विविधीकरण अपनावे के चाहिए।
2: ओकर
1: में बागवानी से लेके पशुपालन से लेके मछली पालन मधुमक्खी पालन ए तरह के व्यवसाय अपना करके भैया देखा
2: आमदनी के अपन बढ़ावे के चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: और अब काय आगे कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जाए
1: एकदम भैया। तो इसने में भैया देखा भेंट वार्ता क्रम में सफलता की कहानी वैज्ञानिक और व्यवसायिक तरीके से बकरी पालन के बारे में संदीप कुमार मौर्य भैया से अपन
2: अचल कुमार श्रीवास्तव भैया बातचीत कैले हुआ।
1: बिल्कुल,
2: हमन चुप्पे होवल जा सुनल
1: एकदम सुनल जा भैया।
3: किसान भाई बहनों देखिये हम लोग खेती किसानी से जुड़े रहते हैं और साथ में जो है पशुपालन से भी जुड़े रहते हैं। आज हम लोग के बीच में सोनभद्र जनपद के रावलगंज ब्लॉक के मानपुर गांव से प्रगतिशील किसान और पशुपालक संदीप मौर्य जी मौजूद हैं। संदीप जी, आप अगेती सब्जी के वैज्ञानिक खेती के साथ साथ बकरी पालन के भी सफल मॉडल अपना करके जनबा अपने खेती के आमदनी में नया मिसाल कायम कैले बड़न और मेहनत लगन और आधुनिक सोच के बल पर यहाँ के किसानन खातिर एगो प्रेरणा का स्रोत बन गए बड़न। आवे हम जानल जाए कि किसान भैया उनकर अनुभव संघर्ष और सफलता का कहानी कैसे रहल उनके सुनल जाए उन्हीं की जुबानी। संदीप भैया आपके किसानवाड़ी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत बा। भैया सबसे पहले तो आप ये बतावे कि बकरी पालन का शुरुआत और ओकर प्रेरणा आपके कहाँ से मिलल और कब शुरू कर लेना आपके?
4: किसान भाई देखें जैसे हमन के खेती का काम परंपरागत ढंग से बहुत पहले से होत रहल तो हमन के हन गाय रहलिन और भैंस रहलिन तो दिमाग में ये आयल कि जैसे कहल जला कि गरीबों की गाय बकरी पालन के जैसे शुरुआत कर जला तो कहल जला तो हमन के दिमाग में आयल कि हमन के हन सब्जी के खेती के साथ साथ जौन दलहनी तिलहनी और अनाज के खेती होला तो उसे हमन के भूसा भी हो जाला और चारा भी हो जाला और जौन सोहनी निरवनी का घास हो जाला तो हमन के भैंस गाय रहलिन तो खपत नहीं हो पावत रहल तो उमे हमन के ध्यान में ही चढ़ल कि हमन अगर बकरी पालन कैलवल जाए तो ई सब सारा चीज हमन के हन कम खर्च में और बकरी पालन जो है की और अच्छा से हो जाये तो ऐसे हम लगभग 3 से 4 साल पहले हम अपने यहाँ बकरी पालन का शुरुआत कैली
3: तो एक प्रशिक्षण भी कहीं से ले ले रहे
4: हैं। हाँ, बकरी पालन देखे किसान भाई करे से पहले में ट्रेनिंग का बहुत बड़ी मतलब जरूरत पड़ा। आप लोग पहले ट्रेनिंग कर ले कहीं भी विश्वसनीय संस्था से या फिर से कोई मतलब बड़ा गोट फार्म कहीं बात तो वहाँ भी लोग ट्रेनिंग देवलन तो आप लोग ट्रेनिंग पहले ले लें।
3: शुरुआत में जैसे प्रशिक्षण लेके अलन तो ओकरे बाद शुरुआत जब कैलन तो कैसे शुरुआत भइल और उमिन का दिक्कत का सामना करे के पड़ल आपके?
4: देखे प्रशिक्षण लेले के बाद हम लोग अली तो पहले हम एक बकरी और एक बकरा जो है बर्बरी प्रजाति का हम BHU से लिए ली।
3: अच्छा अच्छा।
4: वहाँ से लेले के बाद हम लगभग 8-10 बकरी जोन अपने गाँव के अगल बगल हमके अदर ब्रीड मिलल तो उन्हन के लिए ली तो उन्हन से हम जो न कि अपने यहाँ क्रॉस करा के बर्बरी और देसी बकरीन का ब्लैक बंगाल का सिरोही का तो क्रॉस करा के अपने यहाँ हम थोड़ा सा बर्बरीन का संख्या बढ़ौली।
3: अच्छा।
4: लगभग वो 2 साल में संख्या हमन का 30-35 हो गल। एमे किसान भाई ध्यान देवे के ई बा कि हमन के जौन छोट बच्चा देवन जौन मतलब जन्मजात बच्चा होलन तो उन्हन के थोड़ा सा अच्छे से देख रेख करे के पड़ेला। ओमे कहे से कि कभी का होला कि ज्यादा दूध पी लेवलन कभी धूप में रह जालन थोड़ा सा अगर लापरवाही भयल तो उन्हन के पोका पुकनी रोग या फिर अन्य बीमारी बहुत जल्दी पकड़ाला तो इमे हमन के काफी ध्यान देवे पड़ाला।
3: अच्छा संदीप भैया, जैसे इस समय आप सरकार द्वारा जो योजना चलत बा वह योजना का लाभ उठा के एमएन कुछ काम करत बने ओकरे बारे में कुछ
4: एमए देखे किसान भाई 1-2 साल पहले से योजना चला था नेशनल लाइव स्टॉक मिशन
3: जो
4: NLM ओकर नाम है जो उनकी भारत सरकार से ये योजना का संचालित है और ये जो योजना है इसमें 50% सब्सिडी आपके मिला ला। आप अपने नजदीकी जो जिला का पशु अस्पताल बा आप जाए के वहां से संपर्क करके योजना ले सकना।
3: अच्छा।
4: ये योजना का लाभ देखें किसान भाई हमू ले ले है और ये काफी बढ़िया योजना है। इनमें आपके 100 बकरी रखे के है 5 बकरा रखे के है। आपका बकरी पालन बदे जो बाउंड्री और सेट का व्यवस्था है लगभग 10 से 12 बिस्सा के खेत में होए के चाहिए जौने में कि आधा वो मतलब बकरीन के रहे का व्यवस्था हुई टीन सेट का घर रही और ओकर हाइट अच्छा खासा रहे के चाहिए गर्मी न लगे और जौन जगह बचा था आप ओके।

0: बाउंड्री के रूप में कर दें उन्हन के खेले कूदे बदे।
1: तो ई जोन आप रहे सहे का जोन व्यवस्था बतौलिन, ई सरकारी योजना में इहो शामिल बा कि ई अलग से अपने तरफ से करे पड़ेला?
0: देखें जोन 100 बकरी और 5 बकरा रखे के जोन योजना हवे, तो इमे का है कि इमे जोन हमन के 20 लाख रुपया का लोन भय रहा, तो इमे 20 लाख के लोन में आपके 10 लाख गवर्नमेंट दही और 10 लाख जोन की हमके अपने से लगावे के है।
1: अच्छा,
0: इमे आपके पूरा घर बनवावे से लेके शेड बनवावे से लेके आपके पूरा शुरू से आखिरी तक आपके हर बकरीन का टीका तक का पैसा और आपके बीमा तक का पैसा सारा यही में सम्मिलित रही
1: सम्मिलित रहेला। तो जैसे रख रखाव के बात अभी करत हूँ संदीप भैया, तो इमेन और कुछ खास तरीके का रख रखाव का व्यवस्था करे के चाहिए कि जैसे चलत बा, यानी जैसे मौसम के हिसाब से कि गर्मी के मौसम में कुछ अलग व्यवस्था, बरसात के मौसम में कुछ अलग, जाड़ा में कुछ अलग, तो इमेन का करे लेना?
0: देखे मतलब जैसे बकरी पालन होत बा तो पहले इन्हन का जो रूम है के हवादार होए के चाहिए, और जैसे मतलब कि मान ले जैसे ठंडी का महीना आ गल तो जवन हवादार जगह बा, खिड़की बा, रोशनदान बा, कहे से भाई ठंड बहुत तेज पड़ला
1: जी जी,
0: तो जवन हमन का खिड़की बा, दरवाजा बा, तो ओके पहले बोरा से ढक देवल जाला ठंडी के महीना में, और उन्हन के अच्छे से मतलब शाम के हर दिन मतलब हल्का पुआल बिछा देवल जाला कि जवन जैसे वो सब मलमूत्र करत हैं, पेशाब करत हैं, तो थोड़ा सा सोख ले, वो हिसाब की व्यवस्था ठंडी में करे पड़ी। और जैसे गर्मी का मौसम आ गल तो आप पूरा खिड़की दरवाजा पूरा एकदम खोल दें, और उसके बाद अगर आपके बाउंड्री में ज्यादा जैसे धूप है तो आप ऊपर नेट का भी प्रयोग कर सकना, आप उसमें पंखा लगा दें, कूलर लगा दें, अब तो नया तरह तरह का फॉगर भी चल दिले बा जो की बढ़िया एकदम ठंडा रखत बा, मतलब मौसम के हिसाब से मतलब एक वातानुकूलित एक जगह होए के चाहिए।
1: जी जी जी, तो इस तरह के रहन सहन के बाद अब आवत है कि चारा व्यवस्था, तो चारा व्यवस्था बदे का अपनावेल विधि, और ओकरे साथ साथ इहो बताइए कि जो साफ सफाई की व्यवस्था होले तो उस साफ सफाई बदे आपका करे?
0: देखे साफ सफाई के बाद बात जैसे आपके पास 100 बकरी हैं तो 100 बकरी हैं तो लगभग आपको जवन भी एरिया रही अंदर का या बाहर का वो दिन भर में एक बार 24 घंटा में जरूर साफ होए के चाहिए।
1: अच्छा।
0: चाहे वो चाहे किसी भी तरह से सफाई हो जाए, सुबह में, दोपहर में, शाम में, तो ज्यादातर सफाई सुबह में करवा देवे के चाहिए। और ओकरे बाद उन्होंने चारा वाली बात बात जोन आप बकरी मतलब स्टॉल फीड करिए ना, अपने यहाँ रख के खेल देखे हम जो बकरी पालन कैले एक कहीं चरावे के नहीं ले जाई जा, तो हम एक सुबह में 10 बजे मतलब गेहूं के भूसा में हल्का पानी मिला के और ओकरे संगे जौ का आटा होगल, गेहूं का आटा होगल, कुछ जैसे दलहनी फसल होगल, और हमें चूनी चोकर मार्केट से होगल, पशु आहार होगल, चाहे जे जितना मतलब बकरी के आवश्यकता बा आप ओके मिला के उन्हन के दें। एक आप सुबह में उन्हन के मतलब गेहूं का भूसा वाला चारा दे दें और एक शाम में दे दें, और ओकरे बाद बीच में कुछ हरा चारा भी बकरियन के बहुत अति आवश्यक है, जौने में आप चरी का प्रयोग करें और नेपियर और हीरा मनी जो घास वाला जौने के भी चरी कहल जाला तो आप ओकर ही प्रयोग करें। कहे से कि बकरियन के हरा चारा देवे से पहले ध्यान दें कि हरा चारा में वह चारा दें जौने में पानी की मात्रा बहुत कम हो। कहे से कि अगर पानी की मात्रा वाला जैसे अगर सब्जी के खेती वाला अगर घास जैसे लेदरी होगल और कई अन्य घास जौने में कि ज्यादा पानी होला तो वो सब अगर दे दीहन तो इन्हन में गीला गोबर करे के शिकायत बढ़ जाए। अगर गीला गोबर शिकायत बढ़ गल ना ही रुकल तो वो मतलब बकरी बीमार बहुत तेजी से जल्दी हो जाले।
1: अच्छा अच्छा, तो एक जो गोबर की बात करत हूँ, बीट की बात करत हूँ, तो एकर भी प्रयोग कर सकेलन के अपने खेती में?
0: हाँ हाँ, आप जैसे बकरी का लेड़ी जो आप प्रतिदिन का अपनी इकट्ठा करत हन, जैसे आपका खुला खेत बात आप वो खेत में डायरेक्ट भी फेंकवा सकलन अपने सब्जी में, अगर आपके खेत में फसल लगल बात एक जगह इकट्ठा कर दे, आप हफ्ता 10 दिन ठंडा हो जाए या फिर उसके बाद अपन खेती में यूज करें, और बकरी के लेड़ी से बढ़िया तो कहल गलवा कि कौनो खादे नहीं बा।
1: खादे नहीं बा, बिल्कुल सही कहत हूँ संदीप भैया। अच्छा, जैसे सारी व्यवस्था आप कर दिले थे, खान पान व्यवस्था अच्छा बा, रहन सहन व्यवस्था अच्छा बा, लेकिन एकरे बावजूद अगर बकरियन सब थोड़ा सा अगर बीमार हो गई लेन तो ओकरे इलाज बदे कैसे का करे के चाहिए?
0: देखें जैसे अगर आप हल्का फुल्का पहले तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले ले हैं तो आप पहले तो अपने से इलाज कर लें, अगर आपके समझ में आवत बात है, अगर आपके समझ में नहीं आवत, अगर बीमारी बढ़त है तो आप अपने नजदीकी जो जिला अस्पताल बा उसे संपर्क करें, वहां से डॉक्टर के बुला के दिखावे, अब तो वैन भी आवले, गाड़ी भी अब तो हर जिला में बाय आपके दरवाजे आई, आपका इलाज करी, और मतलब निःशुल्क इलाज होला लगभग।
1: अच्छा,
0: और इनमें मुख्य रूप से जो आपके बकरी है उनमें आप टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें, इनमें एक टीका जो प्रमुख टीकाकरण है पीपीआर कहल जाला।
1: अच्छा, अच्छा।
0: पेस्ट डेस पेपिटस रूमिनेटस एक नाम पूरा है।
1: अच्छा।
0: पीपीआर का टीका लगाला। आप ये टीका के हर साल लगवावे के चाहिए और टीका जब मतलब फरवरी मार्च के महीने में ही

0: फैमिली का, तो आप एक टीका लगवावे तो आपके जन बकरियन में बीमारी जो ना बहुत कम आई।
1: अच्छा अच्छा, तो एक समय भी निर्धारित रहे कि जैसे अभी आप बतौलन के 3 साल तक रहेला, तो शुरुआत ओकर कहाँ से हुई? बिल्कुल शुरुआत
0: जैसे अगर आपके पीपीआर का लगवावे का है तो कम से कम जौन बकरी का आयु है 3 महीना से ऊपर होए के चाहिए, चाहे कौनो भी टीका लगवावत है। तो ये टीका आपका फरवरी मार्च में लग जाये और मार्च अप्रैल के महीना में आपका FMD का टीका लग जाये, जवन की हमन के गाय और भैंस में भी लगला।
1: और जैसे इवन मुख्य रूप से कौन बीमारी लगे का संभावना होले ज्यादा
0: बकरियन में? देखें मुख्य बीमारी जैसे कि मतलब पोका पुकनी रोग है। अगर आप के मतलब बाड़ा में अगर किसी तरह इन्फेक्शन से पोका पुकनी फैल गल तो आप में कई दवाई आवन मार्केट से आप एक प्रयोग करके ओके जल्दी से जल्दी ठीक करे का प्रयास करें, इनमें लापरवाही न करें।
1: तो संदीप भैया देखा आपके अपने आकाशवाणी के माध्यम से बहुत से पशुपालक भैया लोग सुनत हुए, नयका अगर कोई नया आदमी कोई अगर पशुपालन शुरू करना चाहता है खासतौर से बकरी पालन, तो ओकरे बदले कुछ खास संदेश अगर दे चाहे?
0: देखें किसान भाई लोगों से यह कहब कि आप अच्छे से तैयार होके मन बनाए के बकरी पालन शुरुआत करें, पहले आप ट्रेनिंग ले लें, उसके बाद आप शुरुआत करें। विशेष ध्यान ये दिहन कि आप इकट्ठा ही 150 बकरी कहीं बाहर से न मंगवाई हैं, अपने यहाँ धीरे धीरे बढ़ाइन, या फिर आपके अगर NLM योजना का लाभ लेवे के है तो अपने यहाँ लोकल से ही बकरी इकट्ठा कर ली हैं 30-40 किलोमीटर के एरिया के अंदर से, इनमें आपकी बीमारी कम पकड़ी। अगर आप बाहरी जैसे दिल्ली से होगल, बनारस से होगल, उखरे आगे से आगरा से होगल, अगर बाहर से बकरी मंगाई हैं तो आपके यहाँ सर्वाइव करे में समय लगी, इनमें आपका मृत्यु दर बढ़ सकला, यही बात का ध्यान रखिये।
1: जी तो संदीप भैया देखा आप बकरी पालन से जुड़ल हर पहलू के बहुत ही सरल और सहज भाषा में जनबा आप अपने पशुपालक भैया लोगों के बतौलन, एक बजे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मुराओ भैया,
3: हाँ भैया,
2: सफलता के कहानी में देखा वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीका से बकरी पालन पर जौन है संदीप कुमार मौर्य भैया के जौन अनुभव रहल अचल भैया बातचीत करत रहा,
3: बिल्कुल
2: सुनल गयल गुनल गल, अब आगे का हुई?
3: बिल्कुल भैया, आगे भी जानकारी के क्रम में विश्व जनसंख्या दिवस से गर्ल चाइल्ड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोनभद्र द्वारा आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर की रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुति हुए सचिन कुमार वर्मा के, अब बिल्कुल हम लोग सुनल जाए भैया।
4: प्रस्तुत है विश्व जनसंख्या दिवस और सेव गर्ल चाइल्ड विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग सोनभद्र द्वारा खंड विकास कार्यालय रॉबर्ट्सगंज में आयोजित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट। आज दिनांक 10 जुलाई 2026 को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला जज सचिव श्री राहुल जी, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और बीफार्मा के छात्र छात्राएं वहां उपस्थित रहे, CWC के सदस्य श्री अमित सिंह चंडेल, रेड क्रॉस सोसाइटी सोनभद्र के सदस्य डॉक्टर संजय सिंह और खंड विकास अधिकारी श्री लालजी शुक्ल उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खंड विकास अधिकारी श्री लालजी शुक्ल,
5: हमको लगता है कि एक सफल व्यक्ति बनने के लिए, एक सफल इंसान बनने के लिए आदमी को 3 चीजें बहुत जरूरी है सर, एक स्वास्थ्य, एक शिक्षा और एक सदाचार। स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कि जैसे आज जनसंख्या दिवस पर बोला जा रहा है, जब हमारी जनसंख्या कम होगी तो हमारा शरीर जो होगा वो स्वस्थ होगा। हमको सुविधाएं ज्यादा मिलेगी, जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क होगा स्वस्थ होगा, और जो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा तो हम क्या करेंगे, एक स्वस्थ समाज को पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब एक स्वस्थ समाज पैदा होगा तो हमारे एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण हम लोग नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से हम लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो जाएंगे या देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और रही बात है कि अभी बालिका वाली जो बात आ रही थी, हमको तो लगता है सर भी बैठे हैं, हम लोग कहीं कहीं गांव और शहर दोनों में से किसी न किसी जगह से आए हैं, हम अपने बचपन की बात देखते हैं, आज की बात देखते हैं, हमको जो लगता है कि हम अपने अगल बगल जो देखते हैं वो तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की दुश्मन सबसे ज्यादा कौन होती है, महिलाएं ही होती है।
6: जब घर में लड़की पैदा होती तो हमको लगता ससुर नाराज नहीं।

0: होता होगा, लेकिन सास नाराज होती है, नंदोई नाराज नहीं होता, लेकिन नाराज कौन होती है? ननद। यहां तक कि बाप नाराज नहीं होता है, नाराज कौन होती है? मां। और एक कहावत है, नारी नसो है नारी के रूपा। इसमें सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है, पहले हम लोग अपने बचपन में जो देखते थे, आज जो मैं देख रहा हूं, और सही बात सर ने जो कहा, लड़के से लड़कियां जो है वो बहुत आगे है। और आपसे ये भी बता दें, लड़कियां हमेशा चतुर होती है, इसे होता नहीं लड़के, ऐसा नहीं कह रहा हूं लड़के पूरा पंडित होते हैं, लेकिन लड़कियां चतुर होती है। सर हमने ये देखा, जब यही लड़कियां छोटी होती है, आप लोग इतनी माताएं बहने रहती है, जब लड़कियां छोटी होती है तो बाप की साइड में रहती है कि माँ की साइड में रहती है? क्यों? आप लोगों ने कभी आभास किया? वो ये जानती है कि बाप की चलती है, माँ की नहीं चलती, इसलिए किसकी साइड में रहती है? माँ की साइड में रहती है। वही लड़कियां जब जवान हो जाती है, उनकी शादी हो जाती है, तो ससुर साइड में रहती है, तो अपने पति साइड में रहती है। क्योंकि वो जानती है अगर पति रखेगा या पति मानेगा तो सब मानेगा, नहीं तो कोई। और वही औरतें या वही लड़कियां जब बुढ़ी हो जाती है तो अपने पति की साइड में रहती है, लड़के की साइड में रहती है। तो कितनी चतुर है बताइए, इनको सर समझाने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना सा है। आप लोग महिला हो, आप लोग एक नहीं, जैसे अभी सर ने बताया, एक नहीं, एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो एक घर को जो क्या नाम शिक्षित बनाता है, एक महिला जो शिक्षित होती है तो दो घर को नहीं, तो कुल को शिक्षित बनाती है। मेरे ये कहने का मतलब यह है कि माँ जो होती है वो प्रथम शिक्षिका होती है। अगर वास्तव में शिवाजी पैदा हुए तो माँ का उसमें बहुत बड़ा रोल था, लौकु सूर्य में माता का बहुत रोल था, सीता मैया का। तो आप लोग समझाना बहुत नहीं, आप लोग पहले से ही चतुर रहे हैं, पता चला। वैसे भी हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा आदर दिया जाता रहा, कभी राम सीता नहीं कहा गया, हमेशा सीता राम कहा गया, कभी गणेश लक्ष्मी नहीं कहा गया, हमेशा लक्ष्मी गणेश दिया। और एक बात छोड़िए, नर और नारी में आप देख लीजिए, नर में एक भी मात्रा नहीं है, हवा में तैरते रहते हैं, नारी पर दो दो मात्राएं हैं।
1: अपने उद्बोधन के साथ CWC के सदस्य श्री अमित सिंह चंदेल ने लोगों को गुप्त रूप से अपनी सूचना देने के लिए नंबर उपलब्ध कराया, जिस पर आसानी से हम अपनी व्यथा समाधान के लिए प्राप्त कर सकते हैं और पूरी तरह से हमारी सूचना गुप्त रखी जाती है।
2: आप लोगों को हम अवगत कराना चाहेंगे कि 1098 पर किया हुआ किसी प्रकार का काल कालक के पूर्ण गोपनीयता का शपथ लेता है, किसी भी परिस्थिति में देखिए किसके द्वारा काल की गई है, किसके द्वारा सूचना दी गई है, यह किसी को भी नहीं बताया जाता। तो आप लोग निसंकोच होकर के किसी भी बालक अथवा बालिका, खास करके आज यहाँ पर अगर ये बालिका के संरक्षण की बात है तो किसी भी बालिका की तरह किसी भी तरीके का निशंस होता है, किसी भी तरीके की हिंसा होती है, किसी भी तरीके की समस्या होती है, तो आप निसंकोच होकर के अपने फोन से 1098 पर कॉल करें, उनको सुरक्षा मिलेगी और आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी आंच नहीं आएगी।
1: इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य डॉक्टर संजय सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए किस तरह परिवार नियोजन को अपनाते हुए जनसंख्या पर
3: नियंत्रण। हम लोग बार बार ये पुराने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं बड़ी अग्रा है, महिलाएं बड़ी सबला है, ये सब बीमार चलाते हैं। हर बच्चा अपने आप में बलिष्ठ और मजबूत होता है। आप चिल्लाते क्यों कि मुझे सहायता की जरूरत है? आप गलत रास्ते पर कब जाते हो? आप शिक्षित नहीं होते हैं। जब आपका समाज शिक्षित होता है तो हम क्या बोलते हैं कि यदि एक बच्चा शिक्षित होता है तो एक परिवार होता है, यदि एक बालिका शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होता है। तो बात तो आ गई शिक्षा की, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, और जब शिक्षा की बात आएगी तो भ्रूण हत्या, लिंग जांच, ये सब की बात कहां से आएगी? क्योंकि आपको अपने घर में रहना है, आपके घर में आपकी सास, आपकी जो ओल्ड एज की जो महिलाएं हैं वो पुरातन जमाने की है, वो कहती है मुझे लिंगा जांच करनी है, मुझे देखना है कि बेटा है कि बेटी है। यदि आप पढ़े हो तो उन्हें पढ़ के आधार बढ़ा सकते हो कि माँ जी आप भी तो माँ हो। यदि आपके माता पिता ये सोचे रहे होते तो क्या आप सास से रुक गए, क्या आप माँ के रुक गए घर में रह पाती क्या? पहले की कहानियां कुछ और थी, पहले के जमाने में थे शिक्षित नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है? आप कहते हैं भगवान की देन है, जनसंख्या प्रति भगवान की देन थोड़ी है, किसकी देन है? हमारी आपकी देन है। यदि शिक्षा रहेगा तो शिक्षा से हमें यह पता है कि हमारे आय के साधन क्या है, हम

0: की परवरिश कैसे कर सकते हैं, हम अपने बच्चे की नहीं अपने परिवार की परवरिश कैसे कर सकते हैं और समाज में एक अच्छे स्थान पर से कैसे प्रतिस्थापित कर सकते हैं। हम क्या प्रकृति के स्वामी हैं क्या? हाँ, हम प्रकृति के स्वामी हैं क्या? जोर से बोलिए नहीं। तो हम क्या हैं? हम प्रकृति के अभिन्न अंश मात्र हैं और जो अंश है वो प्रकृति का स्वामी बनने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये संभव है क्या? प्रकृति से हम बढ़ सकते हैं क्या? नो सर, नहीं है ना। तो जब हम प्रकृति से बढ़ के है नहीं तो प्रकृति यह कह रही है कि संसाधन सीमित है, हमें संसाधन सीमित में अपने आप को भी सीमित रख करके एक अच्छी वे ऑफ लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। एक घर में एक पराठा बनता है और पांच भाई बहन है तो दो पराठे में कितने भाग होंगे? कितने भाग होंगे? आधे आधे होंगे ना, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन यदि हम दो भाई बहन हैं तो क्या होगा? एक एक मिलेगा ना। तो हमें एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा मकान, एक अच्छी शिक्षा दे सकती है।
1: नियंत्रण पाया जाए, जागरूक कराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री राहुल जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्हें मुफ्त कानूनी मदद कैसे प्राप्त की जाए इस पर जानकारी दी।
2: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य कार्य है कि निःशुल्क विधिक सहायता और सेवा के संबंध में साक्षरता का प्रचार प्रसार करना और सेवा उपलब्ध कराया जाना। केवल साक्षरता का किसी ने नहीं है, इसका प्रचार प्रसार किया जाना, साथ ही साथ अधिकतम से अधिकतम लोगों को इसका लाभ पहुंचाया, कैसे पहुंचाया जा सके, इसको जमीनी स्तर पर अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ उपलब्ध कराए जाने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कराया जाता है। उससे भी हमारे पास मशीनरी उपलब्ध है, लोग फैंस उपलब्ध है, जैसे पीएलवी उपलब्ध है और आप हमारे यहाँ जो है श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं एलएडीसी जो निःशुल्क सहायता उपलब्ध कराने में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे ही जैसे आप चीफ हैं, आप चीफ के बाद डेप्यूटी असिस्टेंट, इस तरह से तीन लोग कुल मिलाकर के हैं जो कि निःशुल्क जो न्याय है वो प्रदान कराने में न्यायालय के समक्ष आप लोग प्रेरित करते हैं और आपको तरह तरह के जो सुझाव होते हैं जितने भी आवश्यक हो सकते हैं वो आपको उपलब्ध कराते हैं, जिसे जमानत से संबंधित या भाई बहनों में या परिवार में किसी उत्पन्न हो गया उन सबसे संबंधित जो भी प्रकरण आते हैं, आपसी घरेलू विवाद हो उसमें किस तरह से आपको सहयोग दिया सकता है मुकदमा करने में और मुकदमा का डिफेंस करने में, उसके लिए सहायता कराई जाती है, प्रचार प्रसार। और इसी के अलावा प्रो बोनो अधिवक्ता होते हैं, पैनल लॉयर्स का गठन किया गया है और मध्यस्थता के माध्यम से पूरे समझौते के माध्यम से इसका मामलों का निस्तारण कराए जाने के लिए हमारे यहाँ मीडिएटर्स एडवोकेट रखे गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उनके माध्यम से जो है मामलों का निस्तारण करवाया जाता है। हमारे यहाँ एक सुविधा उपलब्ध होती है प्री लिटिगेशन वाली। प्री लिटिगेशन में क्या होता है, जो मुकदमा दाखिल होना है उस समस्या ऐसी होती है जो नॉन कॉम्प्रोमाइज जिसमें सुलह समझौता नहीं, जिसमें सुलह समझौता होने की संभावना होती है, नेगेटिव सुलह समझौता हो सकता है, जैसे मारपीट वाले हो गए या पारिवारिक मुद्दे हो गए और इसी तरीके से चेक से संबंधित मुकदमे हो गए, बैंक से संबंधित मुकदमे हो गए, इसको लेकर क्या कर कोई मुकदमा होता है तो उसमें मुकदमा न करना पड़े, उससे पहले ही मामले का निस्तारण हो सके, इसके लिए प्री लिटिगेशन का हमारे यहाँ विकल्प उपलब्ध है। और उसके लिए करना क्या होता है, आप लोग को आवेदन देना होता है हमारे कार्यालय में आकर के, जो कि जनपद न्यायालय के जो परिसर है उसमें स्थित है एरिया भवन, आप संपर्क कर सकते हैं वहाँ पर आकर के अगर इस तरह की किसी को समस्या है तो।
1: श्रोताओं, खंड विकास कार्यालय सोनभद्र पर आयोजित विश्व जनसंख्या दिवस और सेव गर्ल चाइल्ड पर कार्यक्रम विधिक सेवा प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग द्वारा संपादित कार्यक्रम की रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। स्थल ध्वन्यांकन वाचन और प्रस्तुति सहायिका सुरसरी द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता श्री सचिन वर्मा जी हैं।
3: जग्गू
4: भैया
3: देखा ये रेडियो रिपोर्ट सुना गए और यही बीच में भैया देखा हमारे हाथे में बाजार भाव घोरावल से आगे हुए इंद्रासन भैया भेजले हुए पसेरी में हुए भैया बाँचत है
4: एकदम।
3: बैगन 70 से 80 रुपया पसेरी, मिर्चा 160 से 170 रुपया, बोड़ा 150 से 160, लौकी 60 से 65 रुपया पसेरी, कोहड़ी 45 से 50 रुपया, भिंडी 75 से 80 रुपया पसेरी, नेनुआ

0: 85 से 90 रुपया, करेला 125 से 130 रुपया, धनिया 200 से 215 रुपया, पालक 80 से 85 रुपया पसेरी, चौराई के साग 60 से 65 रुपया, मूली 120 से 125 रुपया पसेरी, परवल 130 से 140, कुंडरू रहले 95 से 100, प्याज 130 से 135, मक्का 90 से 95 रुपया, कटहल 60 से 65 रुपया और नींबू रहले 250 रुपया प्रति सैकड़ा दिया।
1: भैया पार्टी के माध्यम से थाती जवान इंद्रासन भैया भेजले रहे, हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर लीजिए और हमेशा भैया ये अपन अनवरत जवन सहयोग है भैया मंडी का बाजार भाव भेजत रहे ना, भैया के देवल जाए धन्यवाद।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन भैया
0: एकदम भैया उत्तम कुमार उनकर संगतिया भैया के गावल एक मन फेर के साथ देवल जाए।
1: देवल जाए
2: लागे सोना जैसे सगुरो, ओ लागे सोना।

0: जग्गू भैया,
1: भैया
0: देखा कितना बढ़िया मनफेर हम लोगन के उत्तम कुमार उनकर संगतिया भैया के गावल मनफेर सुनल गेला।
1: बिल्कुल, लेकिन भैया घड़ी के सुई इशारा करत अपने कार्यक्रम के समय टल जाए
0: बिल्कुल
1: चलत के पहले एक बात भैया, पेड़ लगावा पेड़ा
0: पेड़ा
1: खा भैया, पर्यावरण के बचावा।
0: एकदम सही कहत हुआ भैया, और ओकरे साथ साथ एक प्रतिज्ञा और लेवे के चाहिए कि धूम्रपान से हम लोगन के दूर रहले के जरूरत हुए,
1: बिल्कुल
0: ताकि नशा नाश के जड़
1: जड़
0: तो
1: भैया
0: घड़ी
1: चला चला के तो सब
0: पंचन
1: पंचन
0: के
1: के
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

0: ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। श्रोताओं, लोकगीत कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं उत्तम कुमार। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के शुरुआत में उत्तम कुमार के स्वर में कहरवा।
1: मुरली की धुन सुनूंगी

श्रोतों, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम है लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे उत्तम कुमार का गाया लोक भजन। कार्यक्रम के आखिर में ये सुनते हैं उत्तम कुमार के स्वर में श्रृंगार गीत।

102.7 पर श्रोताओं शाम के 7:15 हो रहे हैं। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम विवरण का, तो आइए आपको जानकारी दे दें आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करंट अफेयर्स। रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का राग जयजयवंती में गायन। पुराने फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत रात्रि 9:15 पर। रसधारा कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा रात्रि 10:00। सुगम संगीत कार्यक्रम का लुत्फ आप उठा सकेंगे रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा रात्रि 8:15 पर। और मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस आज सुन सकेंगे शाम 7:31 पर। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ। श्रोताओं खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रीति कुमारी पुत्री बैजनाथ चंद्रवंशी निवासी ग्राम असना बांध कचनरवा थाना कोन जनपद सोनभद्र से दिनांक 13 मई 2026 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 18 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल और एक गहरा बदन है। इन्होंने नीले रंग की जींस, गुलाबी रंग की कुर्ती और पैर में हवाई चप्पल पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार राहुल सोनकर पुत्र मिठाई लाल सोनकर निवासी प्रज्ञापुरम कॉलोनी डीएवी स्कूल रॉबर्ट्सगंज थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से दिनांक 23 दिसंबर 2025 से लापता है। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 37 वर्ष, लंबाई 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला, औसत बदन और चेहरा सामान्य है। इन्होंने सफेद रंग का शर्ट, काले रंग की पैंट और पैर में जूता पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के सुहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां का विकास देखकर अभिभूत होकर जाते हैं।
1: आज अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, जो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं, चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है। स्वाभाविक रूप से अयोध्या को पहचान मिलेगी तो बीकापुर को भी, रुधौली को भी, मिल्कीपुर को भी, गोसाईगंज को भी उसका लाभ प्राप्त होगा।
0: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचितागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आज बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक आदर्श मॉडल बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भद्रेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी आगे बढ़ाया जाएगा।
1: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य वन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
0: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती के काम में लगे 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को अब सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ड्यूटी करनी होगी। इसके साथ ही छुट्टियों में भी बदलाव किया गया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद अब दान राशि की गिनती के लिए 13 कर्मचारी शेष बचे हैं। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। इन कर्मचारियों को पुलिस से सत्यापित कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा और बिना जेब वाली विशेष ड्रेस पहनकर काम करना होगा, जिससे दान राशि की निगरानी और पारदर्शिता बनाई जा सके। मामले की जांच कर रही पुलिस की विशेष टीम जांच का दायरा बढ़ाते हुए आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे।

0: उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में ट्रस्ट के पदाधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और नई व्यवस्थाओं की समीक्षा की। श्री मिश्र कल राम कथा संग्रहालय में निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में ट्रस्ट के नव नियुक्त अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की सीबीआई जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। स्थानीय अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट का वितरण और 600 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल कर देश का गौरव बढ़ाएं। प्रदेश भर में कल से संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों समेत अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदय भान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: सारे ब्लॉकों में जो कार्यक्रम है हमारा, इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पे उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्थाएं एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीनस्थ जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश से हो रही जनहानि पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को कल भी बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गाँवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पूर्वी जनपदों में भारी बारिश का ऑरेंज और पश्चिमी जनपदों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगामी 48 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने का अनुमान जताया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती को 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात।

0: कहा प्रदेश में दिख रहा है विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान राशि की गिनती में लगे 23 कर्मचारियों का इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट चढ़ावा प्रकरण से जुड़ी याचिकाओं पर 13 जुलाई को करेगा सुनवाई। प्रदेश में कल से शुरू होगा दस्तक अभियान। संचारी रोग नियंत्रण के लिए घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें करेंगी जागरूक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव के मीटर पर ये
2: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है मिले जुले फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस।

0: जान की कसम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म हम आपके हैं कौन से। गीत के बोल लिखे हैं रविंद्र रावल ने और संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने।
1: The fun.

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो ये फटा है। सुन फटे फटे पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा।
3: हाँ
1: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
5: श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण FM 102.7 पर। कार्यक्रम है सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान को फिल्म फना में। बोल प्रसून जोशी के थे और तर्ज बनाई थी जतिन ललित ने।

अब आइए सुनते हैं अनु मलिक के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा गीत। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म है फिजा।

श्रोताओं, सबरस कार्यक्रम के आखिर में अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म प्लेटफॉर्म में। इसी के साथ हमारा सबरस कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं चंद गजलें। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम का आगाज करते हैं जगजीत सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस प्यारी सी गजल के साथ।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी का उभरा केंद्र है FM 102.7 पर। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजों में फिल्म है लम्हे।

श्रोताओ, कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खलनायक फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में। फिल्म संगीत कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत शिवहरि के संगीत निर्देशन में। आवाजें आशा भोसले और विनोद राठौर की हैं। फिल्म है चांदनी।

ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। पेश है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुगम संगीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण FM 102.7 पर। कार्यक्रम है सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं समीर का लिखा हुआ, अदनान सामी की आवाज में।

जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में ये प्यारी सी प्यारा सा गीत। इसके साथ ही हमारा सुगम संगीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने को है। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे, उसके तुरंत बाद रात्रि 9 बजे सुनिएगा अंग्रेजी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने

0: प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: And then we can sell to further markets as well.
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और

0: अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international zones.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95 रुपए 32 पैसे पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स

0: फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Auckland on final leg of his three-nation tour, receives warm welcome from his New Zealand counterpart Christopher Luxon and Indian community. External Affairs Minister Jayashankar meets his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat, discusses issues of cooperation in trade, investments, connectivity, maritime, technology and defence. Ministers of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal and Dr. L. Murugan review preparations for upcoming monsoon session. Railway approves Kavach deployment on 680 route kilometers of Northern Railway to enhance safety and operational efficiency. In football, Spain to face Belgium in the second quarterfinal of FIFA World Cup tonight. And in Wimbledon tennis, Alexander Zverev of Germany storms into the men's singles final, beating British wildcard Arthur Ferry. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades.

0: श्रोताओं, भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की शुरुआत में अभी आप सुन रहे थे उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में असद भोपाली का लिखा गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी एक सपेरा एक लुटेरा।
1: रोग संचारी रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार को। फिल्म पवित्र पापी में गीत और संगीत प्रेम धवन का है।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में भी आप सुन रहे थे कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, मुकेश की आवाज में फिल्म थी मर्यादा। इसी के साथ हमारा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

श्रोताओं, रसधारा कार्यक्रम की शुरुआत में भी आप सुन रहे थे नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा गीत। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म थे श्रीमान आशिक। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जमाना दीवाना से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। बोल समीर के हैं और तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544527100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

संग्राम। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाजों में। गीत को लिखा था समीर ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने।

0: आंदोलन श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में, बोल समीर के थे और तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स सारेगामा.com से।

श्रोताओं, रसधारा कार्यक्रम के आखिर में भी आप सुन रहे थे कुमार शानू और अलका याग्निक को फिल्म गवाह में दामिनी में। बोल समीर के थे और तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने। इसी के साथ हमारा रसधारा कार्यक्रम अब समाप्त हुआ होता है।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग जयजयवंती में गायन।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग जय जयवंती में गायन। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में यह पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे

0: बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल सुबह 5:59 पर फिर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।